और अगर तुम उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो सुन न सकें, और तुम उन्हें देखते हो कि बज़ाहिर आंखें खोले तुम्हारी तरफ देख रहे हैं मगर फिल वाके कुछ नहीं देखते। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफ इख्तियार करो और नेक काम करने का हुक्म दो और जाहिलों से किनारा कर लो।

ولهم

وضرب لك

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फट कर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। आज पीर है, ज़िलहज की 15 और जून की पहली तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखला ने लाहौर में मुलाकात के दौरान। ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा।

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: This is FM 101.
3: All the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.
4: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
2: This is FM 101.

0: आपके बिजनेसेस के लिए
1: एड.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल एफएम 101।
1: सोचिए जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
2: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ़ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड

0: और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
1: 13 जून, पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।

0: चलो यार।
1: हेलो।
0: हेलो। ओके आई एम सॉरी।
1: इट्स फाइन। आई थिंक

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: This is FM 101.9.

0: Nice.
1: Tune in to One Above FM.

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

Coming up next, 101 News Headlines.

0: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बे फॉर्म, शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
2: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE Power, the ultimate power solution.
3: Humse hai roshan ye jahan.
4: Humse hai.

Q101 Electric. अजी सुने जरा फसाना प्यार का

0: देखिए ड्रामा सीरीज
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.
2: सोचिए जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं. 13 जून, अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में. तेरह जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org. I love FM 101.

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम और वजीर दाखिला ने लाहौर में मुलाकात के दौरान मुल्क में अमन अमान के मजमू सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया है। खारिजा उमूर के लिए यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के मुआवने से पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर में सरमायाकारी और जिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। और जर्मनी की दारुल हुकूमत बर्लिन में सैकड़ों अफगान शहरियों ने तालिबान रेजिम की जापराना पॉलिसियों के खिलाफ एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
1: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
2: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
3: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
4: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
5: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
6: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज़ पर।

0: खतरनाक है।
1: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मनसूबाबंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
2: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
3: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
4: खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: And now you are tuned into
6: FM 101.
7: Music, laughter, and real talk. All waiting for you on Ladies Lounge with your favorite artist, Subia Shafiq.

जी वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स मी जुबिया शफीक, आपका अपना प्रोग्राम जी लेडीज लाउंज। और हम बात कर रहे थे बदलते हुए मौसम के हवाले से कि मौसम जो है वो काफी हद तक बदल चुका, लेकिन ये लास्ट वीक में एक दो दफा जो है ना वो बारिशें जो हुई है ना उन बारिशों ने मौसम को थोड़ा चेंज कर दिया है, ये अच्छा हो गया है। लाहौर में वेदर कदरी अच्छा है, लेकिन जब धूप निकलती है ना तब फिर धूप टकावी निकलती है, फिर लग पते जाते हैं। ऐसी सारी कुछ चीजें चल रही हैं। इसके साथ साथ बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, और बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों की बात करें तो मैं जैसे पहले बात कर रही थी, मैंने कहा बच्चों को होगी गर्मियों की छुट्टियां, और गर्मियों की छुट्टियों का मकसद होता है, जब हम छोटे होते थे ना तो गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो स्टार्ट के जो डेज होते थे फिर हम कहते थे कि यार ये 15-20 दिन जो है ना, अम्मी कहा करती थी कि 15-20 दिन आपने अपना जो होमवर्क होता है, जो आपको स्कूल से वर्क मिलता है वो आपने कर लेना है, और उसके बाद फिर हम नानी के घर चलेंगे। वैसे मेरी नानी का घर हमारे घर के पास था तो वो इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती थी, लेकिन दादू के घर हमारे का दूर था तो हम दादू के घर जाया करते थे कुछ टाइम के लिए, फूफो की तरफ जाया करते थे। तो अभी के बच्चों में भी ये सारी एक्साइटमेंट होती है या नहीं होती, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको एक बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छी एक न्यूज वो ये देनी है कि रेडियो पाकिस्तान FM 101 इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है 16 जून से, जिसमें आप बोलने की स्किल सीख सकेंगे, जिसमें आप माइक पे बोलना सीख सकेंगे, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना सीख सकेंगे, अल्फाज का चुनाव और अल्फाज दूसरों तक कैसे पहुंचाने हैं ये सीख सकेंगे, और अपने फेवरेट आरजेस के साथ भी बैठ सकेंगे, बात कर सकेंगे। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में लाजमी तौर पर शामिल होइए, और इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बताते चलती हूँ कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आप ग्रेजुएट हो या आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, एज आपकी जो लिमिटेशन है वो 28 ईयर ओल्ड हो, यानी कि 28 साल। वैसे मैं अक्सर इनसे पूछती हूँ कि 28 साल से एक दो दिन अगर ऊपर हो तो फिर चल सकेगा, वो कहते हैं कि देख लेंगे। तो FM 101 के ऑफिशियल पेज पे जो है ना वो इसके फॉर्म्स वगैरह हैं जो आप ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं फिलअप करके। अब कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि FM 101 का पेज कौन सा है, तो बहुत से पेज हैं। अगर आप फेसबुक को स्क्रॉल करते हैं तो जिसके 18,000 के करीब करीब है ना सब्सक्राइबर फॉलोअर्स, वो FM 101 का पेज है। ठीक हो गया। अच्छा, आप हमारे साथ शामिल कैसे हो सकते हैं, FM 101 के ऑफिशियल पेज पे जाइएगा, पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाइएगा। यहाँ पे एक गाना लगाने लगे और फिर वापस आऊंगी, आके करूंगी मजीद बातचीत। 04221000101 और डायलिंग नंबर इसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं, और फिर कॉल लूंगी अभी 12 के बाद ऑन एयर कॉल लेना शुरू करूंगी, और आज का टॉपिक भी आपको बताऊंगी लेकिन इस गाने के बाद।

जी वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स मी जुबैर शफीक। और जी हमारे साथ मौजूद थे इजाज साहब, और इजाज साहब कहते हैं कि आपकी भाभी कह रही हैं कि आ गई वो लड़की जो बहुत ज़्यादा खर्चा करवाने की बातें करती है। मैंने कहा ये ठीक है, अच्छा है, गर्मियों की आ गई जनाब छुट्टियाँ, और गर्मियों की छुट्टियों की जहाँ बात करते हैं तो सैर तफरी की भी बात होती है, और सैर तफरी की जहाँ बात करते हैं तो मेरे ख्याल से गर्मियों की छुट्टियों में नॉर्दर्न एरियाज में जाना चाहिए, लेकिन जो सूरत हाल अभी मुल्क की चल रही है ना, वहाँ नॉर्दर्न एरियाज और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। इसलिए मैं आपको कहूँगी जो भी बंदियाँ मुझे सुन रही हैं वो थोड़ा सा हाथ होला रखें, और इधर इधर ही ज़रा अपने इलाके अपने आसपास की जगह थोड़ी एक्सप्लोर कर लें, और वहाँ ही घूमना फिरला कर लें। जो आपने एक हफ्ता कहीं नॉर्दर्न एरियाज के लिए सोचा हुआ था ना कि हमने वहाँ जाना है, वो इधर के कोई 8-10-12 मकामात देख लें कि हमने वहाँ पे जाना है और वहाँ जाके फिर हमने सैर सपाटा करना है। ये देखें इजाज़ साहब, मैंने अब जो है ना वो ज़्यादा खर्चे की बात की, मैंने थोड़े थोड़े खर्चे की बात की है। इसके साथ साथ जो है ना वो क्या होता है कि कुर्बान ईद से पहले मामलात कुछ इस तरह होते हैं कि ख़वातीन ने बहुत सारी, क्योंकि गर्मियां भी एक शुरुआत होती है गर्मियों की, उसके साथ आ जाती है कुर्बान ईद, और फिर वो नाना करते हुए 8-10 ड्रेसेस बन ही जाते हैं कि चलो गर्मियों के ड्रेसेस भी साथ। वो मेरी एक कज़न है, वो कहती है कि यार इस दफ़ा शॉपिंग नहीं करनी, ईद गुजरी उसने कहा नहीं नहीं शॉपिंग नहीं करनी, कल मार्केट गए और मार्केट जाके 20-22 हज़ार के सिर्फ जूते ले आई। तो ये सही है, ये अच्छा है नाना करते हुए। बाज दफ़ा हमको हमें कोई चीज़ पसंद होती है और हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है हमने नहीं खरीदी, और फिर हम कहीं और जाते हैं और वहाँ 2-3 चीज़ें इकट्ठी करके ऐसी खरीद लेते हैं वो उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा होता, पता नहीं क्यों। एनीवेज जी, रिलेशनशिप की थोड़ी सी अगर हम बात करें, ख्वातीन के हवाले से प्रोग्राम है तो ख्वातीन पे भी मैं ये बात, आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा इससे रिलेट करता है कि कुछ बाउंड्रीज होती हैं, हम बाउंड्रीज सेट कर देते हैं अपने रिलेशन के हवाले से, अपने ताल्लुक के हवाले से, जो दूसरों के साथ होता है, अपनी फैमिली के साथ होता है, इन लॉज के साथ होता है, इन लॉज के लोगों के साथ होता है। तो क्या आपने अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई रिश्ता बनाते हैं तो बाउंड्रीज सेट करते हैं? आप कहते हैं कि यार ये मेरी बाउंड्रीज है और इस बाउंड्री लाइन को आपने जो है वो क्रॉस नहीं करना, और इस बाउंड्री लाइन को मैं क्रॉस नहीं करूंगी, या फिर जब आप रिलेशन किस कहीं पे भी बनाती हैं या जो भी आपका रिश्ता होता है उसमें आप ये कहते हैं कि नहीं ठीक है इसको फुलफ़िल करने के लिए अपना 100% देना चाहिए, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है जैसे चल रहा है चलने दो, ये आपने मुझे बताना है। डायलिंग नंबर है हमारा।

जी वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101.5 लाइव स्टूडियो, इट्स मी जुबे शफीक। और आप हमारे साथ जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया उनको बताते चलें कि आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे अपनी पोस्ट अपडेट कर चुकी हूँ, उस पर कॉमेंट करके आपने हमारे साथ शामिल होना है। इसके साथ साथ आप 4471 के जरिए भी शामिल हो सकते हैं और वहाँ जाके आपने क्या करना है, आपने जाना है मोबाइल की राइट ऑप्शन 101 स्पेस नाम पैगाम एंड सेंड कर देना है उसको 4471 पे। 4471 के पैगाम जो हैं वो मुझ तक पहुंच जाएंगे और मैं उनको ऑन एयर शामिल करूंगी। कुछ पैगाम मेरे सामने आपके मौजूद हैं, उनको शामिल करती हूँ। फरहाद हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। मोहम्मद हफीजुर रहमान भक्कर से हैं हमारे साथ, मोहम्मद हफीज हैं जी जनूबी। ओके, ईदगाह जनूबी बकर से। फरहाद मेमन कहते हैं आप फेसबुक पर भी हमारे साथ ही होती हैं, आपकी वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत सी भी अच्छा ठीक हो गया। थैंक यू। दानी बुखारी सैयद हमारे साथ, तुमने बोला ही नहीं ईद मुबारक भी मुझे। अच्छा, तुमने बोला ही नहीं ईद मुबारक भी मुझे, वक्त वालों को तो तस्वीर भी भेजी होगी। ईद मुबारक दानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हमें सुनते हैं दुबई से। अली फरमान हमारे साथ है, वेलकम जी कोट अब्दुल मालिक मोटरवे शेखपुरा रोड लाहौर, कमाल शो। ओके, थैंक यू सो मच। कमल नास कहती हैं जुबिया ईद कैसी गुजरी, आपके साथ ही गुजरी जी, आप थी तो बहुत अच्छी गुजरी ईद। और अच्छा, अक्सर मुझे ये चीज़ होती है कि जब ईद कोई भी त्यौहार, ईद होता है या कोई शादी ब्याह होता है या इस तरह का कोई मामला होता है ना, उसके बाद होता कुछ ऐसे है कि एकदम से बड़ी सैड सी सिचुएशन आ जाती है। कभी कभी मुझे लगता है कि ये मेरे साथ ही होता है, लेकिन अक्सर मुझे ये लगता है कि ये सबके साथ होता होगा। यानी कि आप बहुत ज़्यादा हजूम में हैं, आप कहीं शादी पे गए हैं, आप कहीं फंक्शन पे गए हैं, आप कहीं पार्टी पे गए हैं या फिर आप कहीं पिकनिक पे गए हैं, और उसके बाद का जो एक वो टाइम होता है ना, नेक्स्ट डे जो होता है वो बड़ा अजीब सा होता है। और मुझे लगता है कि ये ईद के बाद के ये जो 2-3 दिन होते हैं ना, क्योंकि ईद से पहले एक एक्साइटमेंट वाला प्रोग्राम होता है, आप एक्साइटेड होते हो कि ईद पे ऐसे करेंगे, जैसे अक्सर चांद रात पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, इसी तरह ईद पे भी बहुत सारी चीज़ों में हम एक्साइटेड होते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे ईद गुजरती है और ईद के गुजरने के साथ वो एक्साइटमेंट थोड़ी लो पे चली जाती है, और नेक्स्ट डे जो होता है ना ईद का, वो मतलब 2 दिन तो कुर्बान ईद की अगर हम बात करें तो दावतों का सिलसिला जारी रहता है और हम गेट टुगेदर चलती रहती है, लेकिन 2-3 दिन बाद ना वो एक अजीब सी कैफियत होती है। ये कैफियत सबके साथ होती है या सिर्फ मेरे साथ होती है, ये आपने मुझे बताना है। और इसके साथ साथ मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे बताएं, ये जो हम करते हैं बाउंड्रीज क्रिएट, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, रिश्तों में बाउंड्रीज रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, मतलब ये लिमिटेशंस है, ये बात तुमने नहीं करनी, अगर की तो रिश्ता खत्म। होता है ना कई कई जगहों पे ऐसा। 0422111001 सानू चंद माया तेरी ठगिया ने मारिया,

जी वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स मी जुबिया शफीक। और बात हम कर रहे हैं थोड़ी सी उन रिश्तों की बाउंड्रीज के बारे में जिसकी वजह से रिश्ता या तो चल नहीं पाता या फिर दोनों के दरमियान कहीं ना कहीं थोड़ी सी चपकलिश रहती है या फिर हेजिटेशन रहती है कि कोई इंसान आपके साथ चल नहीं पाता, रह नहीं पाता। उन बाउंड्रीज के बारे में थोड़ी सी बात करें। कुछ बाउंड्रीज तो ऐसी होती है ना जो सेट कर देनी चाहिए शुरू में, यानी कि अगर आप कहते हो कि यार मुझे झूठ की जो है ना वो बिल्कुल झूठ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे साथ कभी झूठ नहीं बोलना, या आप कहते हो कि गलत बयानी नहीं करना, ये भी एक झूठ की किस्म होती है, लेकिन आप कहते हो कि मेरे साथ जो है वो गलत बयानी नहीं करना, कोई इंसान फिर भी वो करता है, फिर तो रिलेशनशिप में है यार कि मैंने तुम्हें पहले इस चीज़ से मना किया था। या फिर इंसान कहता है कि यार कोई भी बात हो मुझसे क्लियर कर लेना, और फिर जब कोई कभी बात होती है और वो आपसे क्लियर नहीं की जाती या आप पे आपको कह दिया जाता है कि आपने ये बात की है या आपके साथ ये बात हुई है, तो फिर एक अदर मैटर है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी बाउंड्री सेट कर देते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम रिश्तों के दरमियान इतनी सख्ती ले आते हैं कि वो रिलेशन चल ही नहीं पाता। आपके साथ कोई बात करना चाहे भी तो वो बात नहीं कर पाता। सपोज अगर उसे किसी बात का पता चलता है, वो इस डर से बात नहीं कर पाता कि आपसे अगर बात की जाए तो आपको गुस्सा ना आ जाए या आप इस चीज़ से नाराज ना हो जाए। अब एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग अपने दिल का गुबार जो है वो हल्का करने के लिए आपको कहते हैं यार एक बात तुम्हें कहूँ उसका माइंड तो नहीं करोगे। तो ऐसा मुझे लगता है जब भी कभी कोई आपको कहे ना कि एक बात आपको कहूँ जिसका आप माइंड तो नहीं करोगे, तो आपको कहो भाई मैं माइंड करूंगा। अगर तुम्हारे जहन में ये चीज़ है ना कि मैं माइंड कर जाऊंगा, वो बात ऐसी है जिसकी वजह से गुस्सा आ सकता है, तो फिर सोच समझ के बात करो ना। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें लोग मजाक में मजाक का कह के वो बात कर जाते हैं, और बाज़ दफ़ा वो चाहते हुए जानते हुए दूसरे को हर्ट कर जाते हैं। तो ऐसी कुछ लिमिटेशंस रखनी चाहिए कि आपको अगर आपके दो लोगों के दरमियान अगर रिश्ता है तो दो लोगों के दरमियान का रिश्ता जो है वो आपसी चीज़ों में रहना चाहिए। मतलब अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगी है, आपको किसी की कोई आदत बुरी लगती है, तो आप उसे कहें ना, आप जाके दुनिया को ढंडोरा ना पीटे। अगर आपके उसको बताने से वो अपनी उस आदत को ठीक कर लेता है या कर लेती है, तो फिर किसी तीसरे इंसान तक तो वो बात पहुंचने नहीं चाहिए। तो इसी तरह रिश्तों को चलाने के लिए बहुत सारी इस तरह की चीज़ें ज़रूरी होती है जो कि हम नहीं करते। बाज़ दफ़ा हम इतने सख्त हो जाते हैं कि सामने वाला जो है ना वो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाता है, और बाज़ दफ़ा हम इतने नरम हो जाते हैं कि तब भी फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाता है, नहीं सॉरी, बाज़ दफ़ा इतने नरम हो जाते हैं कि फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाता है, और बाज़ दफ़ा इतने सख्त हो जाते हैं कि रिश्ता जो है ना वो देर पर चल ही नहीं सकता। तो मुझे आपने आज बताना है कि रिलेशन को चलाने के लिए, रिश्तों को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, क्या कुछ बाउंड्री लाइन्स होनी चाहिए या फिर बस चलते रहना चाहिए। हमारे साथ साजदा मौजूद थी, साजदा बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हमारे साथ आमना थी, आमना कहती है आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आपने कॉल किया, आमना थैंक यू सो मच। एक अदद सॉन्ग लगा रही हूँ, फिर आके कुछ आपके पैगाम पढ़ूंगी। आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं एफ एम 101 के ऑफिशियल पेज पे जाइएगा, फेसबुक पे जाके आप एफ एम 101 लाहौर को सर्च करेंगे तो आपके सामने पेज आ जाएगा, उस पे जाके कमेंट कीजिएगा। और इसके साथ एक दफा फिर बताती चलूं कि एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान आपके लिए लेकर आया एक इंटर्नशिप प्रोग्राम जो 16 जून से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें शामिल हो के आप क्या कर सकते हैं, बोलने की स्किल सीख सकते हैं, अपनी बात को एक्सप्लेन करना सीख सकते हैं, माइक पे कैसे बोलना है ये सीख सकते हैं, अपने फेवरेट आरजेस के साथ जो है वो बैठ सकते हैं, और इसके साथ साथ बाज़ दफ़ा होता है आपके दिल में बहुत सी बातें होती हैं लेकिन आपको कहना नहीं आ रही होती, तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, वो भी फ्री फ्री फ्री बिल्कुल फ्री। शामिल आपने कैसे होना है इस प्रोग्राम में, एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे इसका फॉर्म जो है वो अपलोड कर दिया गया है, उसको ऑनलाइन आप सबमिट करा सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है कि आप किसी यूनिवर्सिटी के क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों, क्वालिफाइड हों तो भी अच्छा है, लेकिन एज लिमिटेशन जो है वो 28 साल है, यानी कि 28 ईयर,
16 जून से पहले पहले अप्लाई कर दें, पहले आए पहले पाए। तिलक दिन हाय हम, तिलक दिन बम, तिलक दिन माय, तिलक स्टिक अराउंड।

दिन के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम और वजीर दाखिला ने लाहौर में मुलाकात के दौरान मुल्क में अमन अमान के मजमू सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया है। यूरोपीय यूनियन के उमर खारजा की सीनियर नुमाइंदा नायब वजीर आजम के साथ बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मुआवनत से पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर में सरमायाकारी और जिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। और जर्मनी के दारुलहुकूमत बर्लिन में सैकड़ों अफगान शहरियों ने तालिबान रिजीम की जाबराना पॉलिसियों के खिलाफ एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया।

0: अक्षरती बिगाड़ पैदा होता है।
1: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
2: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
3: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
4: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
5: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
6: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
1: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
2: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
3: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
4: Music, laughter, and real talk. All waiting for you on Ladies Lounge with your favorite Archie Subia Shafiq.

0: जी वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स मी ज़ुबिया शफीक, आप सबका प्रोग्राम जी लेडीज लाउंज। और लेडीज लाउंज में आज हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी उन रिश्तों के हवाले से जहां हम बाउंड्री सेट कर देते हैं, जहां हम कुछ ऐसी लाइंस क्रिएट कर देते हैं या लाइंस खींच लेते हैं जिसकी वजह से या तो वो रिश्ता बहुत ज्यादा बाउंड हो जाता है या फिर वो रिश्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है। और बाज़ दफा हम कहते हैं कि यार ये बाउंड्रीज लगानी जो है ना, बाउंड्रीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पहले से ही आगाह कर दिया जाता तो फिर मैं ये काम ना करता या मैं ये काम ना करती। तो ये भी कुछ एक्सप्लेनेशन इस तरह की कुछ लोग देते हैं जब कुछ इस तरह की चीजें हो जाती हैं। इसी तरह की जैसे वो एक कोटेशन है कि बाज़ दफ़ा हम छोटी छोटी चीज़ों पे एक दूसरे के साथ तल्ख कलामियाँ कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे को बहुत सारी बातें कह देते हैं, लेकिन जब गुस्सा ख़त्म होता है तो फिर हम कहते हैं कि नहीं ये गलत हो गया ना। तो ऐसे मामलात में एक छोटी सी लाइन को हमेशा याद रखा करें, वो क्या कहते हैं कि अगर साथ रहना है तो लड़ना कैसा, अगर साथ नहीं रहना तो लड़ना कैसा। जब दोनों सूरतों में रहना अगर नहीं रहना तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है ना, और अगर रहना है फिर भी ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आपकी लड़ाई झगड़ा या आप किसी के साथ कोई इस तरह की बात करके कुछ दिन कुछ टाइम जो है वो ख़राब करती हो तो फिर बाद में जाके आपको ये रिग्रेट होता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था इस एक बात की वजह से। कितना कुछ ऐसा था जो हो सकता था, कितने अच्छा वक्त था जो गुजर सकता था। इसी तरह जब हम ईद की बात करते हैं या किसी भी त्यौहार की बात करते हैं या किसी शादी ब्याह की बात करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे खानदान में कोई ना कोई एक ऐसा रिश्ता जरूर होता है जिसको शादी में मनाना जरूर पड़ता है। आज पहले मतलब शादी है ना तो इनको पहले मनाने जाना पड़ेगा, पूरा खानदान के जो बड़े होते हैं ना वो वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके उनको मनाते हैं और फिर उसके बाद उनको लेकर आते हैं। फिर पूरी शादी में वो दुल्हा दुल्हन के इतने नखरे नहीं होते जितने नखरे उनके उठाए जा रहे होते हैं। ऐसे भी कुछ रिलेशन होते हैं, ऐसे भी कुछ रिश्ते होते हैं, और ऐसे रिश्तों के साथ ना एक वक्त तक तो बंदा एडजस्ट कर जाता है लेकिन एक वक्त के बाद बंदा कहता है यार जितनी जल्दी ये खत्म हो जाए ना इतना ही ठीक है। एनीवेज 04221100101 डायलिंग नंबर। हम अपनी फर्स्ट कॉलर की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पे कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये क्या था, ये मजाक किया है आपने? मुझे किसने कहा था, अबू बकर ने कहा था, नंबर जरा स्लो बताया करें 04221100101। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: अस्सलाम, कैसी
0: हैं? मैं ठीक हूँ, हमारे साथ कौन है?
1: मैं बिस्मा बात कर रही हूँ, बहुत ही बाहर बहुत शोर है घर से बाहर।
0: बिस्मा आजकल स्कूल कॉलेजेस ये यूनिवर्सिटीज ऑफ हैं, स्कूल कॉलेज तो ऑफ हैं हैं आजकल, बिस्मा फुल टाइम लगी हुई है रेडियो के साथ है।
1: हाँ जी
0: हाँ जी, क्या कहेंगी?
1: मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, गुस्से में मैं अभी आई हूँ और लेटी और मैंने ट्यून किया तो आपका शो था,
0: फिर गुस्सा खत्म हुआ कुछ या और आ गया कि ये कहाँ आ गई?
1: नहीं आपकी बात सुन के थोड़ा गुस्सा तो कम हुआ पर अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है।
0: किस बात पे गुस्सा आ रहा है?
1: वो परमिशन की बात थी ना कि आज
0: नहीं मिली फिर
1: आप क्या कर ये सीन है ना, हाँ तो आप पहले ही ले लो। तो फिर मैं मेरी यही तो वजह है, मैं क्यों नहीं परमिशन लेती
0: क्यों
1: हम एंड टाइम पे हम लेते हैं, या एक दिन मैंने सोचा था पहले ही बात करूंगी या उस दिन बात करूंगी 16 जून को जब जाना है सुबह सुबह उठ के नमाज के बाद,
0: ठीक है
1: तो पहले बात करो। भाई जो है वो कहता अच्छा तो तुम

0: आज रेडियो जोकर बनने जा रही हूँ। तुम भी
1: जोकर?
0: तुम वो इतनी फजूल इतनी फजूल फजूल बातें मैंने पहले सुन
1: अच्छा
0: ली।
1: मुझे ये बताओ विस्मा, मुझे ये बताओ विस्मा, क्या परमिशन मिली या परमिशन नहीं मिली?
0: नहीं अभी तो समझ नहीं आ रही, फिर से बात करूंगी। तो ये तो मेरा
1: चलिए
0: दिमाग
1: अल्लाह करे,
0: खराब हो गया, ऊपर से
1: चलिए।
0: बाउंड्रीज की बात कर रही है ना।
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: देखो अब कई लोगों को बता भी देते ना कि हमारे साथ झूठ नहीं बोलना या ये चीज हमारी यहाँ
1: हाँ, मैं झूठ बोल के
0: अगर आपने
1: बहुत अच्छी बात
0: लेनी है ना तो हमारी परमिशन से लेनी है फिर आपको मिल जाएगी। तो वो उसके बावजूद भी उस पर अमल ना करे तो ऐसे लोगों को क्या बंदा झूठियों के हार बनाए या बंदा क्या करे या इनसे बुलाए या ना बुलाए, हो भी अपने घर वाले ही हो उनके भाई ने तो बोला कि चीज मेरी यहाँ पड़ी हुई है। तुम अगर तुमने लेनी है तुम पूछ के ले लो। मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरी चीज मेरी परमिशन ले के आप ही मैं ये ले लूँ तो फिर मैं दे देती। मेरी दिल मेरा बहुत नरम है, मैं तो खुश होती थी चलो उसने मुझसे पूछा है इसको जरूरत है मैं उसके काम आती हूँ। और एक तो चीज पकड़ लेना और उसके बाद फिर वहां पे होना भी ना, मुझे तो पता है ना कि मैंने चीज यहाँ पे रखी है फिर मैं देखती रहती हूँ ढूंढती रहती हूँ कहाँ चलेगी। ऊपर से झूठ बोलना मैंने पकड़ी नहीं, ऊपर से बताना भी ना कि मैंने अब इस्तेमाल करके कहाँ रख दी। तो इन चीजों से इतना गुस्सा आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ अजीब कभी कभी ना हम चुप कर देते हैं ना, मीन्स कि हम सब्र करते हैं हमारी शराफत होती है बर्दाश्त करते हैं। और कई लोग फिर हम पे चिढ़ाई कर देते हैं, मीन्स कि वो कहते हैं भी चुप है तो चुप ही रहे। जब हम बोलते हैं अपने हक के लिए तो वो कहते हैं कि यार ये बोली क्यों है, अब इसकी क्यों जुबान चल रही है। तो ये चीज अब मैं और मेरी बहन है वो उसकी मैं चीज को हार बताऊ ना तो वो इतनी आंसू उठा देती है। सारे मम्मा पापा कहते हैं छोटे छोटे तुमने उसकी चीज को पकड़ा ही क्यों, और जब मैं वो मेरी चीजें पकड़ती है और मैं चुप रहती हूँ तो वो उनको पता ही नहीं।
1: नाश्ता आज नाश्ते में क्या खाया था?
0: आज नाश्ते में भी कुछ नहीं खाया कि
1: कमरे तो नहीं खाए
0: कर रहे कि मैं क्या खाऊं। और एक मिनट वो डॉक्टर भाई कह रहे थे ना कि हम आपको बोलना सिखाएंगे।
1: आपको तो पहले ही आता है बहुत बोलना, आपसे तो वो सीखेंगे।
0: मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहना, मैंने कहा अगर मैं ये कह दूं अपने घर वालों को कि हमने वहाँ जा रहे ट्रेनिंग के लिए और वो हमें बोलना सिखाएंगे तो वो मरने के बाद ही मुझे परमिशन दे दे। वो पहले कह रहे तुम चुप करो तुम चुप रहना सीखो खामोशी करो।
1: चलिए अल्लाह करे विस्मा आपको परमिशन मिल जाए इंशाल्लाह, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अभी कुछ दिन हैं, 15 दिन अभी बाकी हैं, कोई नहीं मिल जाएगी, कोशिश जारी रखो। कंसिस्टेंसी जरूरी है।
0: फायदा होगा तुम उधर जाओगी तो क्या
1: फायदा होने के, बहुत फायदे हैं भाई, बहुत फायदे हैं। मैं कहना बहुत चले विस्मा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस पे बात करते हैं हम, थैंक यू कॉल करने के लिए।
0: सुन रही हूँ आपको।
1: ओके अच्छा एक बहुत अच्छी बात जो बिस्मा की मुझे लगी जो उसने की, रिश्तों की बात अगर वो कर रहे हैं हम तो वो जहाँ उसने बहुत सारी बातें की वहाँ उसने एक बात की, कहती हैं कि कहते हैं कि हमसे परमिशन लेकर हर चीज़ की जाए। तो जब आपसे परमिशन ली जाए तो फिर आपको बच्चे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए कि उसकी ख्वाहिश क्या है। ऐसे ही जब एग्जाम्स होते हैं ना अक्सर मैट्रिक के बाद बच्चे फ्री होते हैं तो मैं कहती हूँ कि बच्चे से पूछें कि उसकी क्या राय है। बाज़ दफ़ा होता है कि हम कुछ और सोच रहे होते हैं उसके लिए, उसके यकीनन पेरेंट्स को ज़्यादा फिक्र होती है ब्राइट फ्यूचर की, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका ब्राइट फ्यूचर सिर्फ डॉक्टर बनने में है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इंजीनियर बनने में है। आप उसकी ख्वाहिश भी देखें कि वो क्या चाह रहा है। अगर तो वो जो चीज़ चाह रहा है, हो सकता है वो आर्ट्स में बहुत अच्छा हो, वो आर्ट्स के सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो और आप उसको लेकर जा रहे हैं बायो की तरफ, आप उसको लेकर जा रहे हैं केमिस्ट्री की तरफ और केमिस्ट्री उसकी बिल्कुल लो है, वीक है। यानी कि एक बच्चा 40 मार्क्स लेकर जो है ना वो केमिस्ट्री में पास हुआ है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो FSC के बाद केमिस्ट बन जाएगा? आप उसको जो है वो आगे फर्दर केमिस्ट्री की स्टडी के लिए लेकर जाएंगे। इसी तरह जिस बच्चे की जो फिजिक्स है वो बहुत अच्छी है, जिस बच्चे की मैथमेटिकली वो बहुत अच्छा है, उसकी मैथ बहुत अच्छी है, तो आप उसको मेडिकल का स्टूडेंट कैसे? हमारे फैमिली में ही एक बच्चा है, उसकी मैथ बहुत अच्छी है लेकिन वो उनकी भाभी की तरफ देखे, क्योंकि भाभी डॉक्टर हैं तो फिर उन्होंने कहा कि जी ये भी डॉक्टर बनेगा। उसके 4 साल वेस्ट करवाए उन्होंने और 4 साल बाद जाके फिर उनको इंजीनियरिंग करवाई, यानी कि उनको प्री इंजीनियरिंग करवाई और उसके बाद अब वो अपनी फर्दर स्टडी की तरफ जा रहा है। तो इस तरह की थोड़े से चीज़ें जो हैं वो पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए कि जब आपसे बच्चा कोई भी बात कह रहा है या करने की कोशिश कर रहा है या समझाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर बाज़ दफा हम कहते हैं नहीं भाई, हम स्ट्रिक्ट है अपने फैसले पे, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, इससे ज्यादा एक लफ्ज भी नहीं। तो इन चीजों को थोड़ा सा गौर करना चाहिए। अमरजा चौधरी साहब हमारे साथ हैं जी, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इसके साथ मौजूद हैं जी बहुत सारे, आपने सलाम भेजे, आपके सलाम उन तमाम तक पहुंच गए, कहते हैं वाओ पॉपुलर रेडियो शो। ओके थैंक यू सो मच। एक और कॉल की तरफ बढ़ती हैं और फिर हम एक सॉन्ग लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम
1: जी। वालेकुम अस्सलाम। अमरजा चौधरी साहब इतना शोर,
2: वो ड्यूटी पे बंदा होता है फिर आपको कॉलें भी करनी पड़ती है, क्या करें, इतनी जिंदगी हजार दुख।
1: ईद कैसी गुजरी आपकी
2: रजा साहब? ईद इतनी जबरदस्त गुजरी है कि गर्मी से बंदा क्या कहते पसीने से शराबोर हो गए।
1: गर्मी कौन है, फिर नमकीन गोश्त खाया?
2: नहीं गोश्त में बहुत पहले दिन से खाया, बाद से उसके बाद मैंने हाथ खड़े कर लिए।
1: अच्छा जी, पहले दिन इतना खा लिया?
2: नहीं इतना नहीं खाता, मेरी खुराक भी बहुत ज्यादा काम है।
1: अच्छा जी,
2: तो उसके एक टेम्परेचर 46 था ईद के दिन।
1: ओहो,
2: तो इतने ज्यादा टेम्परेचर था तो फिर क्या खाना है।
1: अच्छा रजा साहब मुझे ये बताएं कि रिश्तों में जैसे हम बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं, तो बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए
2: रिश्तों में, क्या पाबंदी लगानी चाहिए, क्या करनी चाहिए?
1: हाँ पाबंद कर देते हैं हम अक्सर, पाबंदी लगा देते हैं।
2: ना ना ना, मेरा मानना यह है कि अगर रिश्ते बचाने हैं ना तो रिश्ते को फ्री एंड दे,
1: ठीक है?
2: जब किसी को अपन लिमिट में रखेंगे ना, लिमिट में,
1: हाँ।
2: तो सख्ती करेंगे तो रिजल्ट सही नहीं आएगा, ठीक है? अगर रिश्ता किसी बंदे से आपने जोड़ा है, वो आपका मिता है, आपके वो अंडर में जैसे आ गया, क्या आप इसके अंडर में आप उनकी बातें मानेंगे जो आपके ऊपर सख्ती करेंगे? जैसे हम बच्चे को भी सख्ती करते हैं कि बेटा नमाज पढ़ने जा रहा है, ठीक है, क्या हम भी पढ़ते हैं, हम भी उस चीज के पाबंद है?
1: बिल्कुल।
2: तो मेरा मानना ये है कि किसी को छोड़ दे फिर अन कर दे, रिश्ता हो कारोबार हो चीज, अगर तुम्हारा है वो जाएगा नहीं कहीं, मेरा मानना ये है।
1: डन हो गया, डन हो गया।
2: जिसने जाना है ना तो जितना मर्जी पाबंद कर ले,
1: वो रुकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं, बिल्कुल
2: रुकेगा नहीं। मैंने मेरी जिंदगी का एक मतलब आप क्या बताएं, आप खवातीन है तो क्या बताएं, ये जिसके ऊपर ज्यादा पाबंद करेगा वो ही आपको धोखा देगा।
1: बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह।
2: गोश्त कितना पड़ा अभी?
1: वाह वही प्यार है।
2: मेहरबानी, वो तुम्हारा वो ना वो एक मिसाल है ना कि एक रजा चौधरी का एक दोस्त था, उसने ना कुर्बानी की, तो ना वो ख्वाब में देख रहा है कि उसके सबके बकरे ना जन्नत में, उसका बकरा था ना वो एक नुक्कड़ में बैठा, उसने पूछा तू क्यों नहीं खेलता, सवा खेडा मेरी तो हड़ी बेच के पड़ी, 3 महीने हो गए खाओगे तो मैं खेला, तो ये ऐसा ना हो कि वो आपका बकरा उधर लुक जाए।
1: अच्छा
2: मेरी बात में एक शौक है, क्या तुझे माफ किया लगा देंगे मेहरबानी?
1: मैंने तो नहीं करना माफ,
2: ना करे कोई और तो करेगा।
1: ओके हो गया जी।

0: जी वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इसमें ज़ुबैर शफीक। 12:21 हो चुके हैं और आज हम बात कर रहे हैं रिश्तों में जो हम एक लाइन खींच देते हैं, रिश्तों में हम बाउंड कर देते हैं, रिश्तों में हम बाउंड्रीज बना लेते हैं, ये होनी चाहिए या नहीं। 04221100101 अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, हमारे साथ कौन, कहाँ से?
1: वादा कॉलोनी गुड्डू जिला कश्मीर से मोहम्मद हनीफ शाह।
0: मोहम्मद हनीफ शाह, मुझे ये बताइएगा कि रिश्तों में ये जो हम बाउंड्रीज सेट कर देते हैं होनी चाहिए या नहीं?
1: नहीं
0: नहीं,
1: क्योंकि मैं शाद का तभी आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जो हाथों की उंगलियां हैं ठीक है, इसके नाखून बड़े हो जाते हैं, हम नाखून काट देते हैं लेकिन उंगलियां नहीं करते।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो हमें चाहिए हम गलत फहमी को दूर कर दें लेकिन रिश्ते टूटने से बचाएं, रिश्ते से रिश्तों में कोई पाबंदी ना करें।
0: ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया हनीफ शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल।
1: रिश्तों को मजबूत रखें और अपने रिश्ते टूटने से बचाएं।
0: ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू जी।
1: सुनने वालों को सलाम, अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़। और कहते हैं कि रिश्तों को टूटने से बचाए जिस हद तक कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आजकल की जनरेशन जी को कौन समझाए, कहते हैं चलना है चलो, नहीं चलना तो अल्लाह हाफिज़। कोई जरूरत नहीं है माफियों तलाफियों की, कोई जरूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन की, और अगर कोई इंसान आपको एक्सप्लेनेशन देता है ना, फिर समझे वो वाकई ही आपके साथ रहना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम सलाम जोई और शफीक साहब
0: जी, कौन हमारे साथ, कहां से?
2: अख्तर, लाहौर से।
0: अख्तर साहब क्या कहिएगा?
2: बस बाजी बहुत दुआ सर, ईद मुबारक हो।
0: ईद मुबारक। आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा।
2: क्यों, ज्यादा क्यों है? मैं बहुत दूर खड़ा हूँ।
0: अच्छा, पता नहीं हो ज्यादा क्यों है, पूछते हैं उससे।
2: अच्छा रे बाजी, ना रिश्ते हम खुद खराब करते हैं, कोई बीमार हो गया हम तब नहीं जाते रिश्तेदारों के पास,
0: ठीक है,
2: किसी को चोट लग गई हम जब नहीं जाते, लेकिन हम मेरी अपनी गलती है।
0: अच्छा जी, ठीक हो गया।
2: हम मजबूत बना के रखे ना रिश्ते, इत्तेफाक से बोले, इखलाक से बोले, प्यार मोहब्बत से जाए, उनको ईद ईद के तौर पे मिलने जाए, लेकिन हम जाते ही नहीं कहीं।
0: अच्छी बात,
2: रिश्तों के जरिए टूट जाते हैं रिश्ते।
0: ठीक हो गया, ठीक हो गया। और कुछ कहेंगे?
2: ये गीत एक सुना दो, कितनी मगरूर है तुम्हारी आंखें ढूंढ के नहीं सुनाओ।
0: ठीक हो गया, मैं लगा देती हूँ अभी, वैसे मैं एक गाना लगाने लगी हूँ थोड़ा सा आपके।
2: लगा देना, बहुत बाजी बहुत दुआ सर, इंशाल्लाह शामिल हुआ करेंगे सर।
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ अख्तर राजपूत साहब थे बेदिया रोड से। अभी ये जो मैं गाना लगाने लगी हूँ ना, होपफुली ये गाना आप तमाम को बहुत पसंद आने वाला है, और आप मुझे कॉल करके कहेंगे, मैसेज करके कहेंगे कि क्या गाना लगा दिया आपने। दिस इज फॉर यू, जो सुनना चाहते हैं नूर जहां को, मैं इतनी मेरा दिल भर जानी। हाय हाय, थोड़ा सा ओल्ड गोल्ड होना चाहिए ना, कभी कभी अच्छा लगता है ये फ्लेवर भी। ज्वाइन कीजिएगा हमें 04221100101 के थ्रू, मैसेज कीजिएगा 4471 पे, कमेंट्स कीजिएगा FM 101 के ऑफिशियल पेज पे जाइएगा, पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पर कॉमेंट करके हमारे साथ शामिल होइएगा, ये गाना एंजॉय कीजिएगा।

0: Music, laughter, and real talk. All waiting for you on Ladies Lounge with your favorite artist, Subia Shafiq.
1: जी वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 लाहौर स्टूडियोज में जुबैर शफीक, आपका अपना प्रोग्राम जो लेडीज लाउंज, और लेडीज लाउंज में आप हम बात कर रहे हैं रिश्तों में मौजूद बाउंड्रीज की, रिश्तों में मौजूद उन तलखियों की जो हम खुद क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि सामने वाला तो हमारे साथ चलना ही नहीं चाहता था। मैंने तो पहले दिन तो पता सी कि तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते, और फिर भी मैंने तुम्हारे साथ चलने का फैसला किया। लोग कहते हैं मैंने तुम्हारी कश्ती में पहले दिन से सुराख देखा था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे साथ चलने का फैसला किया क्योंकि मुझे लगता था मोहब्बत इंसान को बदल देती है। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
1: वालेकुम अस्सलाम, हमारे साथ कौन कहां से?
2: रमजान अनवर गुजर मार्टन लाहौर से। नाम ही काफी याद किया है, ना आवाज सुनी ना हाथ मिलाया, ना मयसर उसकी दीद हुई। ना आवाज सुनी ना हाथ मिलाया, ना मयसर उसकी दीद हुई। अब तुम ही बताओ, आप ही बताओ डॉक्टर जुबिया, ये क्यामत थी के ईद हुई?
1: क्यामत ही हुई जी, क्यामत ही है।
2: बहुत ही दुआओं के साथ आवाज़ पाकिस्तान नेशनल रेडियो स्टेशन हिट एफएम 101 के सभी सुनने वाले अजीम समातों का रमजान गुजर। गुड आफ्टरनून पाकिस्तान, मेरी जान कहता है फन और इंफॉर्मेशन के सब रंग डॉक्टर जुबिया शफीक से पाकिस्तान खुश आमदीद कहता हूँ।
1: क्या कहिएगा रमजान साहब के रिश्तों में ये जो हम बाउंड्रीज रख देते हैं, हम कुछ कह देते हैं कि भाई ये चीजें करनी है ये चीजें नहीं करनी, इस तरह की चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
2: बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए।
1: अच्छा।
2: बाउंड्री होगी तो इंसान का वजूद बरकरार रहेगा। अब हम 101 के लाइव स्टूडियो में जब कॉल करते हैं तो इसकी पॉलिसी के मुताबिक कॉल करते हैं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक पॉलिसी और एक बाउंड्री के अंदर रह के बात करनी होगी। अगर मैं अपने बच्चे के साथ बात करता हूँ वो उसकी भी लिमिट है, अगर मैं अपने स्टार के साथ बात करता हूँ उसकी भी लिमिट है, अगर मैं अपने माँ बाप से बात करता हूँ वो भी एक लिमिट है, अगर मेरे से कोई छोटा मेरे से बात करता है उसकी भी एक लिमिट है, और वो अगर लिमिट खत्म हो जाए तो फिर नुकसान ही नुकसान।
1: बहुत अच्छी बात की रमजान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, थैंक यू सो मच।
2: और वैसे भी कहते हैं ना हर चीज अपनी हद में ही सोनी लगती है, और हद से जब बढ़ जाए तो फिर नुकसान ही होता है। तो टाइम कम मुकाबला सख्त, और जाते जाते फरीब बाजी को और नीला बाजी को और रियाज भट्टी साहब को और आपके सुनने वाले अजीम समातों को और मैडम खतीजा मुराद साहबा को सलूट, कामयाब शो पेश करने पर आपको आपकी विनिंग टीम को अल्लाह हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद,
1: थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, दानी बुहारी हमें सुन रही हैं, एक गाना कह रहे हैं आप। दानी मैं वो सॉन्ग ढूंढती हूँ, नेट थोड़ा सा चूंकि स्लो है इस वजह से मैं सॉन्ग वो लगा रही हूँ जो मेरे पास मौजूद है, लेकिन आई विल ट्राई कि वो सॉन्ग लगाया जाए आपके लिए, थैंक यू सो मच। कुछ पैगाम आपके मेरे सामने मौजूद, उनको शामिल करूंगी। मुजम्मिल नजीर कहते हैं आपने मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ा बाजी? कौन सा मैसेज किया मुजम्मिल आपने जो मैंने नहीं पढ़ा? मैं देख लेती हूँ, मेरी नजर से नहीं गुजरा होगा इसलिए नहीं पढ़ा। अच्छा, इमरान चौधरी साहब कहते हैं लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल देना हमेशा नफरत या हसद की वजह से नहीं होता, बाज़ औक़ात ये सिर्फ सोच के फर्क की वजह से होता है। कुछ लोग वफादारी से महरूम होते हैं, कुछ सिर्फ अपना मतलब निकालने वाले होते हैं, कुछ आपकी हिम्मत खत्म कर देते हैं, और कुछ दोगले होते हैं। हा हा, सबसे वैसे मुश्किल लोग जो होते हैं ना वो वाले होते हैं, ये जो आपने लास्ट में कहा है ना वो आपके सामने आपके होते हैं, सामने वाले के सामने सामने के होते हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही होती हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम 101 के सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से हंसता मुस्कुराता हुआ अस्सलाम वालेकुम जुबिया शफीक, कैसी हो
1: आप? अल्हम्दुलिल्लाह शमीमा, आप सुनाइएगा कैसी हैं?
3: अल्लाह का शुक्र।
1: ईद कैसी गुजरी आपकी?
3: ईद बहुत अच्छी गुजरी।
1: नमकीन गोश्त खाया फिर आपने?
3: खाया बस दरमियाना,
1: चखिया चखिया है,
3: क्योंकि वो कहते हैं ना पेट भी अपना और गोश्त भी अपना।
1: बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है।
3: तो घर में ईद मेरी गुजरी पूरा दिन,
1: ठीक है,
3: इतने दिन भी 3 दिन ईद के घर में ही।
1: अच्छा,
3: हाँ जी, मेहमानों के साथ आना जाना रहा।
1: वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ जी,
3: बहुत अच्छी ईद गुजरी।
1: अच्छा, क्या कहिएगा शमीमा पी की ये जो रिश्तों में हम बाउंड्रीज सेट कर देते हैं, करनी चाहिए या नहीं?
3: नहीं करनी चाहिए।
1: दूध बनानी चाहिए?
3: नहीं नहीं नहीं बनानी चाहिए, इसलिए कि अगर दिलों में नफरत कदूरते आ जाए ना तो ये बढ़ती चली जाती है, छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी बातें बन जाती हो जाती हैं, तो इसलिए कदूरतों को नफरतों को दिलों में ना पैदा होने ही नहीं देना चाहिए, नहीं बिल्कुल भी करनी। अगर कोई छोटी मोटी बात हो भी जाए आपस में रिश्तेदारों को रिश्तेदारों में, उसको जितनी जल्दी हो सके जितनी जल्दी उसको खत्म
4: क्लियर कर लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच शमीम आपकी, बहुत शुक्रिया आपका।
3: हाँ जी तो ये जल्दी का प्ले कर दें।
4: ओके हो गया मैं गाना लगा देती हूँ।
3: जहाँ जहाँ तक मेरी और आपकी आवाज आ रही सबको दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह
4: हाफिज। अच्छा जी कहती हैं कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी एम इजाज अली हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, वेलकम खुशामदीद, बहुत शुक्रिया शमसी रेडियो लिसनर की तरफ से आप हमें सुन रहे हैं, थैंक यू जी। मुजम्मिल हमें कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है, मुजम्मिल खान बीबी पाक दामन लाहौर से, आपका शो बहुत नाइस है, एक सॉन्ग ऑफ बिलाल सईद मिस अंडरस्टैंड ओ बड़ा दुखी सॉन्ग जी, जाते हुए कोशिश करूंगी लगा दूं वरना मैं दुखी दुखी हो जाऊंगी, इसलिए अभी ये सॉन्ग एंजॉय करें और फिर हम वापस आते हैं। 0422111000 हमारा डायलिंग नंबर है, इसके साथ साथ आप कमेंट्स के जरिए शामिल हो सकते हैं, FM 101 के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पे कमेंट करेंगे। समझ आई

0: जी वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स मी जुबिया शफीक। 04221100101 अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, मैं मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहा हूँ लाहौर से।
0: जी सलमान साहब, कैसे हैं आप?
1: हाँ जी, प्रोग्राम आपका सुन रहे हैं, बड़ा जबरदस्त। आपको और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और गुज़िश्ता ईद मुबारक।
0: वालेकुम अस्सलाम। और क्या कहिएगा सलमान साहब कि रिश्तों में ये जो हम पाबंद कर देते हैं,
1: मैं सुनता रहता हूँ, मेरे हिसाब से ना कि छोटा सा एक फार्मूला है, आप अपने से बड़ों की इज्जत करें और छोटों से प्यार करें।
0: ठीक हो गया,
1: बड़ों की इज्जत करें और छोटों से। बाकी कुछ लोग माशरे में बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें इज्जत का नहीं पता होता, उनसे फिर किनारा कर लेना चाहिए, क्योंकि वो उनको नहीं समझ आती। वो बहुत लोग ऐसे थे, जब आप जितना मर्जी नरमी से बात करें उनके लहजे में सख्ती रहती है, तो फिर ऐसे लोगों से किनारा कर लेना चाहिए।
0: ठीक है,
1: अच्छे लोग भी हैं दुनिया में ज्यादा, आप उनसे मिले, प्यार मोहब्बत से रहें, इखलास से बात करें।
0: ठीक है, ठीक है, ओके हो गया, बहुत शुक्रिया सर।
1: आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त। और ये आप 1 बजे तक होते हैं या 2 बजे तक?
0: जी जी, 1 बजे तक, 1 बजे तक।
1: अच्छा, ये और ये पीर वाले दिन ही आती है?
0: हर पीर वाले दिन जी, पीर को 11 से।
1: बहुत मेहरबानी,
0: बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।
1: अगले पीर को भी करूंगा
0: इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सर, थैंक यू। अच्छा जी, तो बात हम जहाँ कर रहे हैं ना रिश्तों में पाबंद करने के हवाले से या रिश्तों में पाबंदियाँ लगाने के हवाले से, एक अलहदा थोड़ा सा सवाल ये हो जाता है, लेकिन खैर हम इसको भी मिक्स थोड़ा सा कर देते हैं कि रिश्तों में पाबंद अगर हम किसी को कर देते हैं तो फिर भी मुझे लगता है कि कोई ये ज़्यादा ज़रूरी है कोई दिल से आपकी बात माने, कोई आपके साथ चले, या फिर ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको पाबंद कर दो, वो आपके डर से आपके साथ जो है वो आपकी बात माने, आपका साथ निभाए, तो इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 04221100101 अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन हमारे साथ, कहाँ से?
2: जी मैं साइमा से बात कर रही हूँ लाहौर से।
0: साइमा कैसी हैं आप?
2: जी शुक्र अल्लाह का, आपको आज फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ।
0: तो फिर आइंदा से इरादा तो नहीं किया कि आइंदा नहीं सुनना?
2: बहुत शौक से, इतनी काफी ऐसे थे ना, कोशिश थी मेरी आपको, मैंने हैप्पी न्यू ईयर पे देखा था जब यहाँ पे FM 101 लाहौर पे जो आपकी सब लोग देखे थे मैंने, तो मुझे अच्छा लगा था मैं सबको सुनूं, कुछ ऐसी कंडीशन। लेकिन मैंने आज अचानक मुझे याद आया, मेरे को इतने, मैं मंडे से कोशिश कर रही हूँ, पीछे देखा भी आप मंडे को आप आते हो, तो फिर मैंने कहा जरूर अचानक याद आ गया, आज मंडे है, काफी मंडे से मैंने कोशिश की है कि आपको सुनूंगी जरूर ना, तो माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है। और मैं ये सोच रही थी आपसे जाना चाह रही थी कि प्लेलिस्ट बहुत जबरदस्त
0: है ना,
2: आप खुद मैनेज कर रहे हो या कि आपको प्लेलिस्ट मिलती है?
0: नहीं नहीं, हम खुद मैनेज करते हैं ये। अच्छा मुझे साइमा ये बताइएगा कि रिश्तों में पाबंदियां लगानी चाहिए या रिश्तों में बाउंड्रीज क्रिएट कर देनी चाहिए या नहीं?
2: जब बाउंड्रीज क्रिएट होती है ना तो इरिटेशन भी आ जाती है, एग्रेसिव भी रिश्ते हो जाते हैं, और उनकी लिमिट जो है वो खत्म भी हो जाती है, वो फिर आउट ऑफ लिमिट जाके भी रिलेशन से वो क्लैश में आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं सोसाइटी में, घर में एक इश्यूज खड़े हो जाते हैं और सब लोग डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, और जहाँ पे बाउंड्रीज नहीं होती है वहाँ पे इत्तेफाक भी होता है, मोहब्बत भी होती है, यकीन भी होता है, असल चीज तो टेस्ट होती है। अब जो बिस्मा बात करी थी ना, तो मैं टीचर भी हूँ, बच्चों को पढ़ाया मैंने, तो मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मुझसे डिस्कस करते थे,
0: ठीक है,
2: और फ्रेंड्स भी करती रही हैं जो घर में परेशान होते हैं पेरेंट्स के दबाव से,
0: ठीक है,
2: चाचू ने ये कर कहा, ये नहीं करना, ताया अबू ये कह रहे हैं, तो वो फिर ना पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है उन लोगों की,
0: बहुत
2: मेंटली तौर पर अपसेट हो जाते हैं, फिर वो हर तरफ ना वो परेशान फिरते हैं, यानी उनकी लाइफ जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर पाते।
0: तो दोनों सूरतों में समझने की जरूरत है
2: जी, बिल्कुल, इन बड़ों को जो है,
0: बड़ों को
2: समझने, आप जेंजी की बात करते हो तो जेंजी जो है वो बड़ों के ही साथ चल रहे हैं, मैंने जो अपने अकेडमी में देखा बच्चों को, जो पेरेंट्स कह रहे हैं वही उन्हें करना पड़ता है, जो वो नहीं करना चाहते वो भी वो करवा रहे होते हैं उनसे, अजीब सी कैफियत उनकी दिमाग की होती बेचारों की ना, तो समझ नहीं पा रहे थे हमें कैसे अपना रास्ता बनाना है, फिर उनकी खुशियां भी कम होने लग जाती हैं, फिर वो परेशान हो के कुछ
0: डिप्रेशन एंग्जायटी में चले जाते हैं,
2: एंग्जायटी मिस वो कुछ इश्यूज में भी चले जाते हैं, बुरे बच्चों से दोस्ती, बुरे लोगों के पास जाना, फिर वो इधर उधर मूव करते हैं, को मोहब्बत हमसे करे, को हमें बताए रास्ता हम कैसे निकले, पेरेंट्स की है ना ड्यूटी कि अपने बच्चों को अपनी कस्टडी में रखे, ट्रस्ट रखें, बहनें बहनों का साथ दें, भाई भाइयों का, बड़े जो है उनको ऐसी तो लचक आनी चाहिए ना कि मेरे बच्चे बच्ची का राइट है ये चीज,
0: बिल्कुल ऐसी है,
2: हक है ये लाइफ पार्ट। बाउंड्रीज हो लेकिन बुराई के लिए बाउंड्रीज है ना, अच्छी चीज के लिए बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए,
0: नहीं होनी चाहिए,
2: वेल एंड गुड होना चाहिए उनको, कि वो उनको फुली दें कि ये आपका हक है और आप इसको यूज करो। बच्चे इतना
0: जी जी करें बात,
2: बच्चे बहुत खुश होते हैं इन चीजों से ना। अब मेरे ट्यूशन में जब मैंने चीजें की है, मैंने उनकी मदद की, माओं से कहा या उनकी फैमिली मेंबर से डिस्कस की, तो उनका हल हुआ। तो मैं कहती हूँ जल्दी बहुत अच्छे हैं बच्चे।
0: अच्छा जी,
2: जो भी आ रहा है सिलसिला इस टाइम पे, बाकी टॉपिक आपने बहुत अच्छा रखा है। हाँ जी, आप भी बताइए थोड़ा सा।
0: चलिए, बहुत शुक्रिया साइमा, थैंक यू सो मच।
2: बात की बहुत खुशी आपसे मिलकर बात करके,
0: थैंक यू जी, थैंक यू,
2: वेल एंड गुड, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑलवेज।
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। साइमा जी हमारे साथ बहुत अच्छी बात की उन्होंने, उन्होंने कहा कि अगर आप बाउंड्रीज में रखते हो ना चीजें, आप घर में ये माहौल इतना ज्यादा तंग कर देते हो, इतना कंजस्टेड कर देते हो, तो फिर बच्चा बाहर निकलने की कोशिश करेगा। खैर टॉपिक में एक और सोच के एक चीज रखी थी मैंने, लेकिन वो एक और साइड पे निकल गया, लेकिन ये अच्छी साइड है। जब हम घर में माहौल को उस तरह का क्रिएट करेंगे ना जिसमें आप रिलैक्स होंगे, आपका बच्चा आपके साथ हर तरह की बात कर सकेगा, उसे पता होगा, जब उसे घर से तरबियत उस तरह की मिलेगी ना, उसे घर से अच्छाई बुराई का पता चलेगा, उसे पता चलेगा यार ये बात अगर मैं करूं तो मेरी इस बात को अगर ठीक है तो उसको माना जाएगा, तो फिर वो कहीं बाहर कुछ कोई दोस्त यार या कोई इस तरह के रिश्ते नहीं ढूंढेगा। अक्सर आपने देखा है बहनों के दरमियान बड़ा इत्तफाक होता है, बड़ा सलूक होता है, वो कहती हैं हम आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं, हम बहनें ही बेस्ट फ्रेंड हैं, हमारी कोई और फ्रेंड नहीं है। इसका मकसद ये होता है कि आप अपने घरों में ही माहौल इस तरह का क्रिएट कर देते हैं, आप अपने घर में ही इतना फ्रीली माहौल रख देते हैं जिसमें आपका बच्चा जो है वो अपने आप को कहीं पर दबा हुआ फील नहीं करता, वो ये फील नहीं करता कि मुझे घर से निकल के कहीं बाहर जाना पड़ेगा या कहीं बाहर जाना चाहिए। लेकिन जब आप घरों में माहौल इस तरह का बना देंगे ना, जैसे अभी एक कॉलर की उन्होंने बिस्मा की बात की कि बिस्मा आपसे इजाजत, ठीक है कुछ हदूद हम कर देते हैं कि यार ये हमारे फ्लाम को नहीं पसंद, हम ना कहते हैं लोग क्या कहेंगे, तो मैं वहां पे एक फॉर्मूला फिट करती हूँ कि लोग कभी राजी नहीं हो सकते जिंदगी में। जो लोग आपको पॉइंट आउट करते हैं, आपको पता है कि आपकी डायरेक्शन ठीक है, आपको पता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है, फिर आपको कोई भी कुछ कहे ना, मेरा नहीं ख्याल है कि फिर आपको जो है वो उससे रुकना चाहिए, आपको वो चीज करनी चाहिए। हाँ, इसमें मैं ये बात भी जरूर कहूंगी कि आपको अपने पेरेंट्स से हट के चीजें नहीं करनी चाहिए, उनसे उनके अगेंस्ट जाके चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके चीजें करते हो ना फिर चीजें खराब होती हैं। आपको अपने पेरेंट्स को अपने लूप में लेना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए, और डेफिनेटली एट द एंड वो समझ जाते हैं। जब आप उसको उनको तरीके से किसी बात को समझाते हो ना तो फिर वो समझ जाते हैं, लेकिन तरीका होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और कंसिस्टेंसी के साथ आप चीजें जब लेकर चलते हो, आप करते हो, तो वो चीजें हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: वालेकुम अस्सलाम,
0: कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी,
3: बड़ी खुशी है मुबारक हो आपको।
0: वहाँ शुक्रिया फरी जी, आप सुनाइए कैसी, खूब गोश्त वोश्त खाए फिर आपने?
3: ना इतना नहीं खाया, थोड़ा ही खाया तो फिर भी ना गला खराब हो गया। ये सब्जी में
0: बोतलें कम पीनी थी ना, ये जो आपने चटनियाँ शटनियाँ बनाई है ना,
3: थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, सब्जी डालेंगे ना फिर बहुत खाएंगे।
0: ओके हो गया, ओके हो गया। क्या कहिए अगर फरी जी मुझे ये बताएं कि रिश्तों में ये पाबंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
3: पाबंद नहीं करना चाहिए, बाउंड्री बनाए, कच्ची बाउंड्री बनानी चाहिए ताकि लेवल पे बराबर
0: रही। बहुत अच्छी बात,
3: जो रिश्ता है ना रिश्ता भी कायम रहे, तो थोड़ा दूसरे को महसूस भी नहीं होना चाहिए कि ये ना अनाम है या जिद्दबाजी में आगे हुए हैं। जिद्दबाजी को खत्म कर दे तो रिश्ता बराबर का चलेगा।
0: अच्छी बात।
3: तो ये हमारे जो आरजे डॉग्स है ना, तो उनके लिए बहुत सारी फ्लूट बराबर।
0: नहीं आज भी कहे वो आपके जो बड़े आरजे है ना, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा।
3: याद था कुछ ऐसी हो गई, दौलत की बात किया तो दौलत में नाम भूल गया। तो उनके लिए फ्लूट वाला सलाम, पूरी वैनो बन की ना मैनेजमेंट के लिए सलाम।
0: बहुत शुक्रिया जी,
3: मुबारक
0: हो, ईद मुबारक जी, ईद मुबारक। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता, दिस इज फॉर यू। ज्वाइन करी थी हमें 0422111001, बात कर रहे हैं हम रिश्तों में बाउंड्रीज बनाना, किस हद तक ठीक है, किस हद तक ठीक नहीं है, बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, रिश्ते क्या आसानी से चल सकते हैं पाबंद करके, पाबंदियां लगानी चाहिए या फिर कहना चाहिए मुझे तुम पे एतबार है, एतबार की जो डोर होती है ना, ये लाइन कह देना ना मुझे तुम पे एतबार है, अगले को पाबंद कर देता है। यकीन मानिए वो कुछ भी नहीं कर पाता, वो आपके अगेंस्ट जा ही नहीं पाता, वो आपसे कोई किसी किस्म का डिच करा ही नहीं पाता। अगर वो करवाएगा ना, अगर वो इंसान है, अगर वो करवाएगा ना, तो फिर वो हमेशा सोचेगा जरूर, यार ये इंसान मुझ पे कितना एतबार करता है और मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा तो एक ही फार्मूला है, क्या है बताऊंगी, लेकिन ये गाना सुने जरा, वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक, दिस इज फॉर यू, स्टिक अराउंड।

0: क्या ख्याल है, साथ में एक कॉलर हैं, वो देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: कंवल क्या कहिएगा, रिश्तों में पाबंद करना चाहिए, बाउंड्री सेट करनी चाहिए या नहीं?
1: नहीं, बिल्कुल भी रिश्तों में बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। हमारा साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं ना, चाहे वो फोन के हैं, चाहे वो दोस्ती के हैं, चाहे वो एहसास के हैं, उनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए।
0: ठीक है।
1: और हमें दूसरे रिश्तों से तो ये बात है कि किसी से ना बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। उनको हमेशा फ्री हैंड रखें और आप अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाएं, कोई भी है, और उनको ना उन पे छोड़ दें।
0: ठीक है।
1: अगर वो आपके साथ चलना चाहती है ना, तो मोस्ट वेलकम, आप उनका साथ दें। अगर वो नहीं चलना चाहते, तो फिर आप उनको उनके हाल पे छोड़ दें। इसी से हमारे रिश्ते जो है ना, वो मजबूत भी होते हैं।
0: बहुत शुक्रिया कंवल, बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा शुक्र आपका प्रोग्राम है। मेरी तरफ से तमाम लिसनर्स और मेरे शक्ति ग्रुप वालों को बहुत बहुत सलाम।
0: पहुँच गया जी, पहुँच गया।

0: अस्सलाम वालेकुम जी।
1: अस्सलाम वालेकुम दिव्या जी।
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन हमारे साथ, कहाँ से?
1: हमक वाली लड़की आ गई
0: है। हमना आ गई, हमना जी। हमना क्या कहेंगी?
1: आपने कहा था ना आना है, तो मैं 12 बजे की कॉल मिला रही हूँ, यकीन माने लास्ट कॉल।
0: चले मिल गई आपकी कॉल।
1: हमक वाली लड़की, मैंने कहा लीजिए आपने मेरा नाम रख लिया।
0: अच्छा हम ना, मुझे ये बताओ, रिश्तों में बाउंड्रीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
1: नहीं होनी चाहिए, मैं तो ये कहती
0: हूँ। ओके, ठीक हो गया।
1: तो अब मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आपको कॉल करूंगी यार मेरी।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
1: मैंने अब आना है, मुझे दूसरी आपने कहा था कि तुमने आना है।
0: चलिए डन हो गया हम ना, थैंक यू।
1: अब मेरी फ्रेंड सुन रही है आपको जर्मनी से।
0: अच्छा जी।
1: कहती है मेरी फ्रेंड, कहती है तुम्हारी कॉल नहीं लग रही। नहीं लग जाएगी,
0: लग गई, उसे कहो लग गई फिर। चलो हम ना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।

अच्छा जी, हम रिश्तों की बात कर रहे थे, कुछ आपके पैगामात हैं उनको मैं शामिल करूंगी और फिर उसके बाद कंक्लूड करेंगे इस टॉपिक को। नजीर गुलसु हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। अकबर खान, थैंक यू सो मच।

0: तो जनाब हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप में आप जो बाउंड्रीज क्रिएट कर देते हैं वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और मिला जुला जो है ना वो जवाब था हर तरफ से। बहुत सारे कॉलर्स ने कहा कि आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं करनी चाहिए इन फ्रंट ऑफ माई साइड। एक लास्ट कॉलर मैं ले रही हूँ और इसके बाद आपसे अलविदा कहते चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम।
0: कौन हमारे साथ, कहाँ से, जल्दी जल्दी बोलिएगा।
1: कौन है जनाब?
0: चलो सर, जब आपको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ तो फिर आपने कॉल क्यों की है। एनीवेज जी, आपको ये कहूंगी, हमेशा मैं एक बात कहा करती हूँ कि आपके जो अल्फाज होते हैं ना, आपके अल्फाज का जो चुनाव होता है आपकी तरबियत की अकासी करता है। इसलिए जब आप अल्फाज बोलते हैं ना, उनको बोलने से पहले सोचा करें। खैर, रिश्तों में बाउंड्रीज होनी चाहिए, कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए ताकि सामने वाले इंसान को पता चल सके कि आप कैसे हैं। लेकिन उन बाउंड्रीज को इतना स्ट्रिक्टली अपने साथ मेंटेन नहीं करना चाहिए कि अगला उस तक पहुंच ही ना सके। उस तक पहुंचने के लिए रास्ता भी बताना चाहिए कि ये रास्ता है, और माफी का सिलसिला हमेशा रखना चाहिए रिश्तों में। हमेशा रिश्तों में माफ करने का एक जो वो जज्बा है ना, वो रखना चाहिए। दिल को इतना फराख रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि दरवाजा बंद हुआ है तो बस ताला लगा के चाबी फेंक दे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गुंजाइश छोड़नी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए अपने, मुझे दुआ में याद रखते हैं। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए फी अमानल्लाह।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: दिस इज FM।
2: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
3: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है।
4: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
5: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
6: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
7: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
8: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्प लाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: Wired Radio. Today's best music. U101. Electric.
1: Smile and dial. 111-111-FM.

0: दिन के 2 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, जी रेडियो पाकिस्तान है, शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और यूरोपीय यूनियन की उमूर खारिजा की सीनियर नुमाइंदे ने इस्लामाबाद में एक मुलाकात में बाहमी मफाद पर मबनी शराकत दारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की मुआवनत से पाकिस्तान के आटो सेक्टर में सरमायाकारी और जिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। भारत के गैरकानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के दौरान रवा साल के पहले 5 माह में 16 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा एक रोज़ा बैन अवी क्रिकेट मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। यूरोपीय यूनियन की उमूर खारजा की सीनियर नुमाइंदा काजा कालास ने आज इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा मोहम्मद इसहाक डार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात की मजबूत पेशरफ को सराहते हुए बाहमी मफाद पर मबनी शराकत दारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। आखिरी कॉलर कौन
1: साहब, क्या हाल है? मैं अदरीस बोल रहा हूं लाहौर सब्जोजार।
0: जी जी, अदरीस कितो लाहौर तो?
1: लाहौर सब्जोजार
0: तो। जी अदरीस की कब हो गए?
1: माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम।
0: बड़ी मेहरबानी।
1: लीला जी कह रहे सला कि कुड़ी उड़दी उड़दी जावे।
0: हां,
1: ते मैं कहवांगे लीला जी उड़दे उड़दे जाओ ते उड़दे उड़दे आओ, जे जे केक मांगदे पे ने उन्होंने केक पहुंचाओ। सारे अपने शिष्य शामिल कराओ।
0: बहुत शुक्रिया अदरीस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
1: बहुत अच्छा प्रोग्राम साहब ने मेरे साहब ने। एक मिनट मेरी बेटी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦਾ।
0: ਲੋ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ
1: ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਬਸ।
0: वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, क्या नाम है आपका? ओके ओके, अल्लाह हाफिज। लो जनाब, प्रोग्राम अपने इख्तिताम नु पहुंचिया। जान लगे फिर मैं तुहानू एक बार दसांगा कि आरजे ब्रॉडकास्टिंग इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जिहड़ा है ओ 101 एफएम तो शुरू किया जा रहा है, जिहदी आखिरी तारीख 16 जून है। तो उम्र जिहड़ी है 18 तो 28 साल तक। अगर तुम रेडियो उत्ते बोलना सीखना चाहते जे, जुबान के उतार चढ़ाव देखना चाहते जे, सीखना चाहते जे, और लफ्जा के जरिए दूसरे तक अपनी गल बेहतर तरीके कम्यूनीकेट करना चाहते जे, होर सारा कुछ सीखना चाहते जे, ब्रॉडकास्टिंग सीखना चाहते जे, तो इस इंटर्नशिप का हिस्सा बन सकते जे बगैर किसी फीस तो। इस वास्ते फॉलो करोगे FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के पेज न, और साढ़े रेडियो के नाल मुंसलिक हो सकोगे ट्रेनिंग प्रोग्राम के रजिस्टर्ड करवा लो अपने आप। अगले प्रोग्राम तक मैं इजाजत दो, और जोड़े लोग साढ़े दोस्त हो साढ़े शरीक बन जाए उन्होंने तो दूर हो जाना ही बेहतर है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम फिर मुलाकात होगी। दोवे च याद रखना, और मैं भी तुम दोवे च याद रखने की कोशिश करा। कोशिश इस वास्ते तुम भी कोशिश करना कि कोशिश अक्सर कामयाब होंगे ने। मैं इजाजत दो अगले प्रोग्राम तक, रब रखा।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: to FM 101. Abale bale o shower shower. Shukriya.
1: This is FM 101. This is FM 101.
2: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.
3: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
4: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
5: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
6: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
7: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
8: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
9: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
3: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
4: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
5: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
6: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
7: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने,
5: माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
6: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल एफएम 101।
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: This is FM 101.
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है।
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: सुनते रहिए FM 101.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: दिस इज FM 101।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
4: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है।
5: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
6: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
7: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंभे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
8: कुंभे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
9: खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: सुनते रहिए FM 101।
10: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: This is FM 101.
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: सुनते रहिए FM 101.
9: अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने सेहत के शोबे में जारी इस्लाहात की तारीफ की है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने अपने ताल्लुकात को बाहमी तौर पर मुफीद शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का इरादा किया है। गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने 2026 के पहले 5 माह में रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों में 16 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी क्रिकेट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच कल लाहौर में खेला जाएगा।
10: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
11: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: KE Power, the ultimate power solution.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
3: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
4: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
5: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
6: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
7: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
8: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
9: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
10: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
9: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
10: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: दिस इज FM 101।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक। One above FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: सुनते रहिए FM 101 101

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: अजी सुने जरा फसाना प्यार का,

0: गल सुने इत्थे बै
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: वेलकम टू
1: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीदें सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। एई पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
2: हमसे है रोशन।

ऑलराइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और मैं बात कर रही थी कि ऑफिशियली जी ईद के बाद आज पहला मंडे है और क्या ही कोइंसिडेंस है कि जी हमने बहुत सारे काम पेंडिंग रखे होते हैं तो आज आप लोगों के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है क्योंकि आज यकम भी है और आज मंडे भी है। तो जो काम करने हैं अभी से शुरू कर दें, आज ही शुरू कर दें और फिर ताकि आपको दोबारा ये एक्सक्यूज करने का मौका ना मिले कि जी अब कोई और मंडे आएगा, कोई और यकम आएगी क्योंकि जी ऑलरेडी हम अगर देखें तो हम 2026 के छठे महीने में, यानी कि आधा साल गुजर गया। तो कम ऑन, अभी आप लोगों के पास मौका है और इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो अभी कुछ टाइम बाकी है, मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है, अभी से आप लोग अपनी लिस्ट निकाल लें और देखें कि किस किस चीज़ को अभी तक आपने एज एन एक्सक्यूज साइड पर रखा हुआ था और अब वो काम करने का टाइम जो है वो आ चुका है। और जी इसके साथ साथ आप लोग जो हैं वो क्योंकि ईद भी इंजॉय करके आए हैं, बहुत सारे लोग मुझ समेत इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी अभी सुबह जो है वो वापस लाहौर पहुंची हूँ, तो बहुत सारे लोग गलियात गए हुए थे, बहुत सारे लोग नॉर्दर्न साइड्स पर गए हुए थे और इंतहा का रश था जी। और जब मैं वापस आ रही थी तो मैंने ये नोट किया कि और बहुत सारे लोग जो है वो जा रहे थे और ईद इंजॉय कर रहे हैं, आफ्टर ईद इंजॉय कर रहे हैं, खासकर छुट्टियाँ जो है समर वेकेशंस जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। एनीवेज जी, मौसम लाहौर में तो ऐसे ही है लेकिन बाहर जो है वो गलियात में मौसम बहुत खूबसूरत है। सो इंजॉय करें लेकिन उसके साथ साथ जो है वो ख्याल रखें कि आप जब भी जा रहे हैं आप अपनी सेफ्टी इंश्योर करके जाएं, आप अपनी एकोमोडेशन जो है वो इंश्योर करके जाएं क्योंकि जितना रश है उस लिहाज से जो है वो आपको कोई ना कोई मसला इस तरह का लना करें आ सकता है। तो इसलिए जो है वो कोशिश करें कि पहले से जो है वो अपनी बुकिंग्स वगैरह करा के जाएं। और इस बार ही मैंने बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस किया, आप लोगों को पता है कि मुझे थोड़ा सा एडवेंचर का शौक़ है, तो मैंने इस बारी जो है ना आप समझे कि हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज़ किया मैंने, ट्रेन्स भी यूज़ की, मैंने बसेस भी यूज़ की। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सारी स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट एनीवेज जी, अगर आप लोगों का भी प्लान है जाने का और अभी आप प्लान करें या आप हुआ हैं तो आप लोग भी अपनी स्टोरी में से शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल जी, आप लोग डायल कर सकते हैं हमारा नंबर विच इज़ 0421111 और इसके साथ साथ फेसबुक पर भी कमेंट कर सकते हैं, fizz.com/FM101 लाहौर के पेज पर आपने जाना है जी, पोस्ट अपडेट है, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अभी जब मैं बात कर रही थी ना मंडे वाली कि मंडे भी है और फर्स्ट भी है तो जो काम रहते हैं ना वो कर सकते हैं आप, तो अभी ऑफ द एयर हमारे साथ एहसन खान मौजूद थे और उन्होंने कहा कि नहीं जी हमारे तो 5 महीने तो गुजर गए हैं ठीक है, लेकिन हमारा वो मंडे आज नहीं है क्योंकि ईद के बाद ऑफिशियली मंडे ना, वो वाला मंडे जिससे हमने सारे काम शुरू करने जी, वो मंडे इनका अभी नहीं है क्योंकि इन्होंने बताया कि इनकी फैमिली में एक शादी है और वो शादी भी क्लोज कज़न्स में है। सो उस शादी के बाद जो है जो मंडे आएगा, यानी जो नेक्स्ट मंडे होगा जून का सेकेंड मंडे होगा, वो इनका ऑफिशियली वो मंडे होगा कि जिस मंडे से ये अब काम शुरू करेंगे, या वो जो मंडे जिसका इंतजार हो रहा है ना, वो ईद के बाद शादी के बाद वो वाला मंडे है। एनीवेज जी, ठीक है जी। और वैसे भी जिस इस तरह की फैमिली की जो शादियाँ होती हैं और स्पेशली जो कज़न्स की शादियाँ होती हैं ना, उसमें आपको बड़ी अपनाइत से फील हो रही होती है, आपको ये वाला वो नहीं होता कि हम तो अदर साइड को जानते नहीं हैं, तो एक रौनक होती है, एक मज़ा आता है और जिम्मेदारियाँ भी जो है वो बढ़ जाती हैं, आपकी ड्यूटीज़ भी बढ़ जाती है। कोई काम आप लड़की वाली साइड के कर रहे होते हैं, कोई काम आप लड़के वाली साइड के कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों साइड पर आप ही की फैमिली है।

महाराज जी, आप लोगों के क्या प्लान्स हैं इस समर वेकेशंस के? खास तौर पे मैं उन पेरेंट्स को इस टाइम पे, जैसे कहते हैं ना, उन पेरेंट्स को हिट कर रही हूँ इस टाइम पे जिनके बच्चे जो हैं वो, उनको छुट्टियाँ हो गई है, और क्या आप लोग घूम फिर आए हैं या घूम फिरने का इरादा है? और अगर हो गया है, अगर कर लिया आप लोगों ने ट्रिप कर ली है और कर आए हैं ईद पर, आप लोग जो है वो अच्छे खासा इन्जॉय कर आए हैं, तो वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप प्लान कर रहे हैं तो कहाँ का प्लान कर रहे हैं ये भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जी एक और ट्रैक के जाने बढ़ते हैं। ट्रैक के बाद हमें कुछ कमर्शियल्स ब्रेक के जाने जाना है, लेकिन लेकिन लेकिन बातें बहुत सारी हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: This is FM 101.

जी, वेलकम बैक वंस अगेन रेडियो पाकिस्तान एफएम 101.11 स्टूडियो से. आप सुन रहे हैं आज हमदा खान को, मेरा आपका साथ रहेगा ठीक ठीक ठीक जी 8 बजे तक एंड 6:34 PM ऑन द टाइम. हम बात कर रहे थे ईद की, और ईद की जब मैं बात कर रही थी तो अभी ऑफ द एयर हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद थे हमारे. और ईद से वैसे मुझे एक बात और भी याद आई है. आप लोगों को पता है कि टाइमिंग्स चेंज हो गई हैं. जो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ था वो ख़त्म हो गया, जिसको मैंने आपने बहुत इन्जॉय किया, जो ईद की शॉपिंग में हमने बहुत यूटिलाइज़ किया, खानों में यूटिलाइज़ किया, वो टाइमिंग्स जो है वो जी आज से चेंज हो रही हैं. और ठीक 8 बजे जी बाज़ार और मार्केट्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे. सो हरी अप, अगर आप लोगों ने कुछ लेना है सो ले लें जल्दी से. और जी इसके साथ साथ मैं बता रही थी कि हमारे पास ऑफ द एयर एक हमारे बहुत अच्छे कॉलर नईम हमारे साथ मौजूद थे, और मैंने इनसे पूछा कि ईद कैसी रही, तो इन्होंने कहा कि बड़ी बोरिंग रही. मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो कहते हैं कि मैं पूरी ईद में आपके शो का इंतज़ार करता रहा, और आपने कहा कि आपको SMS नहीं मिलते तो मैंने फेसबुक आईडी भी बना ली कि ताकि मैं कमेंट्स कर सकूँ. सो थैंक यू सो मच. आप जैसे जो है वो हमारे इतने स्वीट और इतने अच्छे और इतने डेडिकेटेड लिसनर्स होते हैं ना, जो कि हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह से रीच आउट कर सकें और प्रोग्राम को सुन सकें. सो बहुत शुक्रिया आपका. और इसके साथ साथ इन्होंने मुझे एक बड़ी मज़े की, जैसे कहते हैं ना वो क्या कहूँ मैं, अब एक टारगेट किया मुझे और मुझे कहा कि देखें एक दिन मैं RJ बन जाऊँगा और मैं आपके साथ बैठ के जो है ना यहाँ पे शो करूँगा. सो जी एनीवेज, मुझे आपकी बात से जो है वो एक बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है. और ये सब उन लोगों के लिए जो ऐसे कहते हैं कि उन्होंने RJ बनना है और जिनको शौक है और जिनको अपनी आवाज़ पर यकीन है. सो रेडियो पाकिस्तान आप लोगों के लिए जो है वो बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक शानदार मौका है आपके लिए कि अगर आपको लगता है आपकी आवाज़ अच्छी है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल के दौर में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करते हैं. आपको लगता है आपकी आवाज़ अच्छी है, आपको इनकरेजमेंट चाहिए, आपको कोई बताए, कोई सिखाए, और इसके साथ साथ आपको प्रॉपरली एक एक्सपीरियंस मिले. जो आप लोग हमसे पूछते हैं ना कि आप लोग RJ कैसे बने और आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, हम एक ड्राइविंग सीट पर बैठे होते हैं और ये ड्राइविंग सीट हैंडल करना इट्स एन आर्ट. सो बेसिकली आप लोगों के लिए एक शानदार मौका है जो रेडियो पाकिस्तान लाहौर लेकर आ रहा है. और बहुत ही कम टाइम रह गया जी आपका कि आप एनरोल कर सकते हैं इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में. और 12 जून इसकी डेडलाइन है, जबकि 16 जून से जो है वो क्लासेस का आगाज़ हो रहा है और 2 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम है जी. तो जल्दी जल्दी करें जी, जल्दी जल्दी इनरोल करें और इस शानदार मौके का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से और इंडस्ट्री के टॉप आर्टिस्ट से सीखने का मौका आपको फिर कभी नहीं मिलेगा. ओके जी, मैं वंस अगेन अनाउंस कर दूं कि लास्ट डेट टू इनरोल टू अप्लाई आपके पास 12 जून है और 16 जून से जो है वो बाकायदा इंटर्नशिप का आगाज़ हो जाएगा. सो हरी अब जी, 2 महीने की इंटर्नशिप है और इस इंटर्नशिप में आप बहुत कुछ सीखेंगे कि कैसे एक RJ बना जाता है, ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं. सो इन सब चीज़ों पर अपनी ग्रिप के लिए, और अगर आपको कोई एक बंदा जो है वो कहता है कि आपकी आवाज़ अच्छी है लेकिन अभी आप डाउटफुल हैं, या आपको आपकी आवाज़ अच्छी है लेकिन आपको कोई पुश नहीं कर रहा, कोई इनकरेज नहीं कर रहा, कोई ट्रेनिंग नहीं है, सो दिस इज़ योर चांस. आप अप्लाई कर सकते हैं और रेडियो पाकिस्तान की इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं.

और राइट, जिसके साथ साथ क्योंकि ईद गुजरी है और मुझे पता है कि हम सबके जो है वो घरों में कहीं ना कहीं जो है वो हमने इतना गोश्त खा लिया ना कि अब वो समझ नहीं आ रही होती अम्मियों को, और अब वो कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी चीज़ के साथ मिक्सअप करके जो है वो आपको गोश्त खिला दें, और किसी ना किसी तरह से जो है ना अब कुछ वेरिएशन लेकर आए उस गोश्त के साथ। सो एनीवेज जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा कोशिश करें कि अगर आपने ईद के दिनों में गोश्त को कंज्यूम कर लिया तो अब आप थोड़ा सा दालों और सब्जियों की तरफ आ जाएँ ताकि आपकी सेहत जो है वो ठीक रहे, क्योंकि इतनी गर्मी में इतना ज़्यादा गोश्त खाना या इतने मसाले खाना या इतना ऑयली और स्पाइसी खाना खाना जो है ये भी ठीक नहीं है, और इसकी वजह से जो है वो तबीयत ख़राब हो सकती है। बल्कि पिछले दिनों ईद के दिनों में काफ़ी लाहौरी जो है वो इस चीज़ से अफेक्ट भी हुए हैं। सो अपनी सेहत का ख्याल रखें, और अगर आपको फिर भी दिल कर रहा है कि गोश्त खाना आपने, सो आप जो है वो किसी और चीज़ के साथ मिक्स करके, जैसे कोई सब्ज़ी होगी, कोई दाल वगैरह होगी, उसके साथ कंज्यूम करके जो है वो आप खा सकते हैं। बट एनीवेज, मैं आपको एक बात बताऊँ, इस ईद के बाद जो है ना जो मज़ा आपको फिर दाल चावल और इस तरह की चीज़ें खाने का आता है ना, वो वैसे नहीं आता, वो ईद से पहले नहीं आपको फील हो रहा था, जो बाद में आपको उसकी इम्पॉर्टेंस और कदर पता लगती है ना कि कितने मज़े के होते हैं दाल चावल और कितने मज़े की होती है सब्ज़ी, वो आपको ईद के बाद पता चलती है जब आप गोश्त खा के तंग आ जाते हैं। एनीवेज जी, एक और ट्रैक है, और इस ट्रैक की रिक्वेस्ट की थी नईम ने, सो दिस वन इज़ फॉर यू।

ऑलराइट हम बात कर रहे थे कि ईद गुजर गई है और ईद के बाद ऑफिशियली पहला मंडे है। इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को अपडेट किया कि टाइमिंग्स जो है वो चेंज हो गए हैं, गवर्नमेंट की जानिब से जो रिलीफ दिया गया था आज वो ख़त्म हो गया और आज ठीक 8 बजे जो है वो शॉप्स बाज़ार बंद हो जाएंगे। सो उससे पहले पहले आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा भाग दौड़ करें और जो भी आपको लेना है वो ले लें। और इसके साथ साथ जी मैं बात कर रही थी कि जो गोश्त है अब वो खाने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि अगर हमने इतना गोश्त खा लिया अब जो है वो थोड़ा सा चेंज करें और कोशिश करें कि थोड़ा सा अपने आप को वापस जो है दाल रोटी सब्ज़ी इस तरफ लेकर आएँ। और अभी हमारे साथ ऑफ द एयर मौजूद थे अब्दुल हमीद साहब, तो उन्होंने कहा कि अभी आप बात कर रही थी ना दाल चावल की, तो हमारे घर में भी मसर चावल बन रहे हैं। तो मैंने कहा वाह मसर चावल की क्या बात है जी, मसर चावल मुझे ऐसा लगता है कि जी दाल चावल की कैटेगरी में जो है ना जो टॉप पे है ना किंग वो मसर चावल है, क्योंकि मसर चावल का कोई कोई कोई कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप दाल चावल में पूछेंगे ना कि कौन सी वाली दाल, तो दाल इज मसर। सो एनीवेज जी, अगर आप लोग के पास भी कोई इस तरह की है, आप लोग ने कुछ एक्टिविटी की है, ईद इंजॉय की है और आपके पास कोई स्टोरीज हैं, कोई आप गलियात गए हैं, कहीं घूमने फिरने जाना है, कहीं हो आए हैं, तो वो भी स्टोरीज आप लोग शेयर कर सकते हैं 4221111 पर। और इसके साथ साथ होता है ना कि हम ईद पर भी जैसे दावतें कर रहे होते हैं, अभी एहसन खान ने शादी का जिक्र किया, सो दो तरह के लोग होते हैं, मैं हमेशा नोट करती हूँ इस चीज़ को कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनको कोई इनविटेशन आए ना तो वो उसकी तैयारी में लग जाते हैं और उनको एंजाइटी होने लग जाती है कि बस हमने टाइम से पहुँचना है, टाइम से तैयार हो जाए, शादी पे जाना है, किसी दावत पे जाना है। जैसे अभी ईद की दावतें थी और यकीनन सब ने किसी ना किसी की घर दावत पे गए होंगे, कोई आपके घर आए होगा दावत पे। तो होता क्या है कि जी दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो हमारा वो एक देसी एक ट्रेडिशन है ना हमारा देसी जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम है हमारा, वो ये है कि जी हमेशा जो है ना 2 घंटे लेट जाओ कोई भी इनवाइट कर रहा है, कोई भी शादी है तो 2 घंटे लेट जाओ कि जी अभी किसने आना है, अभी कौन आया होगा। वो एक हमारा एक वो बन गया ना कि जी लेट जाना है ताकि बाकी सब आए हों, ये ना हम सबसे पहले चले जाएँ। तो कुछ इसके बरक्स कुछ लोग होते हैं जो अपोजिट साइड पे होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी टाइम से जा रहे हैं, और वो इतने टाइम के पाबंद होते हैं कि उसको उसकी टेंशन लेके बैठे होते हैं, तैयारी करके बैठे होते हैं। सो दो कैटेगरीज हैं, आप लोग किस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि कोई इनविटेशन आया तो जल्दी तैयार होकर टाइम से जाना है या फिर यूजुअल टाइम के मुताबिक जी 2 घंटे लेट ही जाना है। हालांकि मैं बताऊं क्योंकि अब जिस तरह से हमारे बचपन में होती थी शादियां कि सारी सारी रात बारात आ रही है और वेटिंग में, अब तो 10 बजे हॉल्स की टाइम में फिक्स टाइमिंग्स हैं, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैंने नोट किया है कि वो अपने टाइम का जो लेट स्टैंडर्ड टाइम है ना देसी स्टैंडर्ड लेट टाइम में 2 घंटे लेट जाना, वो अभी भी उसी चीज़ पर चल रहे होते हैं कि उस तरफ खाना चल रहा होगा या उस तरफ रुखसती चल रही होगी या उस तरफ लाइटें बंद हो रही हैं, वो अभी एंटर हो रहे होंगे और उनको फिर उस पर कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती। सो दे आर लाइक यू टू ऑफ इट। और मुझे याद है कि हमारी फैमिली में भी एक जो फैमिली है वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में ऐसे ही हैं कि वो हमेशा जो है ना जब इवेंट बिल्कुल एंड हो रहा होगा ना या तो फिर सब तंग आ जाए उनका वेट करके या फिर बिल्कुल एंड पे जब इवेंट होगा ना दे जस्ट एंटर दैट टाइम और वो उस टाइम पे आएंगे और ये उनका मामूल है, सब एडजस्ट हो गए उनके साथ ना कि इन्होंने लेट ही आना है, कोई फ़ायदा नहीं इंतज़ार करने का।

और जी आपका शुमार किस कैटेगरी में होता है? वो कैटेगरी जो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना एक्साइटेड हो जाते हैं और तैयारी में लग जाते हैं और कोशिश करते हैं कि टाइम से पहले जो है ना पहुंच जाए किसी भी इवेंट पे, किसी भी दावत पर, किसी भी इनविटेशन पे, या फिर आपका शुमार उनमें है कि देखी जाएगी अभी कौन सा किसी ने आना है। थोड़ा सा सुकून से चलते हैं, थोड़ा सा आराम से चलते हैं, और ये मैं पॉजिटिव सेंस में कह रही हूँ, मैं कोई नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही, ये तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ। लेकिन जहाँ पर आपको पता है कि जहाँ पर लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ पर टाइमिंग स्ट्रिक्ट फॉलो हो रही हैं, वहाँ पर थोड़ा सा देख लिया करें। जैसे शादी हॉल्स हैं वहाँ पर टाइमिंग्स फॉलो हो रही होती है, शादी के इवेंट्स में टाइमिंग्स फॉलो हो रही होती है, तो वहाँ पर जो है वो कोशिश करें के बाकियों का भी ख्याल करें। और राइट जी, इसके साथ साथ हमने ईद पे बात कर ली, हमने जो है वो खानों पे बात कर ली, हमने बात कर ली मार्केट के टाइम्स की, और हमने बात कर ली कि अगर आपको कोई इनविटेशन आता है तो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। जी ये कैटेगरी आपने ज़रूर मुझे बतानी है कि आप किस कैटेगरी में। मैं आपको बताऊँ, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे एक्साइटमेंट होती है, स्पेशली अगर ऐसी जगह है ना जहाँ पर आपका जाने का एक्चुअली दिल है और जहाँ पर आपकी बॉन्डिंग है और जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, तो मैं वो इंसान हूँ जिसको नींद नहीं आएगी, जो इतनी तैयारी करके बैठ जाएगी कि उसको नींद नहीं आ रही। और जैसे ट्रिप पे जाना होता है ना, तो एक्साइटमेंट होती है, बचपन में बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, सारी रात नींद नहीं आती थी, और जब ट्रिप पे जाने का टाइम आता था ना, उस टाइम पापा इतने थक जाते थे जाग जाग के। सो एनीवेज जी, मेरा तो शुमार उन लोगों में होता था, आपका किन में होता है, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं जी? वो वाली कैटेगरी जो कहते हैं कि यार देखी जाएगी, थोड़ा सा लेट चलते हैं, 2 घंटे लेट चलते हैं, अभी कौन सा किसी ने आ रहा है, सो देसी स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं, या जल्दी जाने वालों में से जो एक्साइटेड वंस होते हैं उनमें से हैं।

0: this music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: This is FM 101.
2: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
3: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
4: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
5: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
6: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
7: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
8: खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: carefully, okay?
1: Okay.

0: Coming up.
1: इस 7 बजे है. अस्सलाम वालेकुम. ये रेडियो पाकिस्तान है. हुमैरा राना से खबरें सुनिए. अहम खबरों का खुलासा. वज़ीर-ए-आज़म ने सेहत के शोबे में जारी इस्लाहात की तारीफ की है. पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने अपने ताल्लुकात को बाहमी तौर पर मुफीद शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का इआदा किया है. बाद अज़ हज पहली परवाज 370 हुजाज को लेकर आज इस्लामाबाद के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंची. और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी क्रिकेट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच कल लाहौर में खेला जाएगा.
2: This is FM 101.1.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर. पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद. अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ. AE Power से अपने घर में रोशनी ले आओ. AE Power, the ultimate power solution.
6: हमसे है रोशन ये जहां.
7: हमसे है

0: JE Power, the ultimate power solution.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
3: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
4: There's music and then there's magic. One above FM 101.
3: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।

All right. Welcome back once again, Radio Pakistan, FM 101 के लाइव ऑन लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं आज हमना खान को, मेरा आपका साथ रहेगा ठीक जी 8 बजे तक. 7:06 हो गए हैं जी. आप लोगों की कॉल्स भी आ रही हैं 0421111 पर, उसके साथ साथ आप लोग के कुछ कमेंट्स भी शामिल कर लेते हैं. और राइट जी, सबसे पहले हमारे साथ तो रमज़ान गुजर हैं और ईद पर शो क्यों नहीं किया उससे नाराज़ है. मैंने बताया तो आप लोगों, मैं ईद पर घूमने फिरने गई थी. मैं जी गलियादगी भी थी, इस वजह से मैं शो नहीं कर सकी, बड़ी माजरत है. और इसके साथ साथ जी रजा चौधरी कह रहे हैं जी छोटी छोटी कॉल्स लें, सुन लें जी आप लोग सब छोटी छोटी कॉल्स में बात किया करें ताकि बाकियों को भी मौका मिले. प्लीज़ इस चीज़ को कंसीडर करें सीरियसली, क्योंकि फिर बाद में सब आके मुझसे गिला कर रहे होते हैं कि जी हमारी कॉल नहीं ली, हमारी कॉल अटेंड नहीं की आपने, आप ज़्यादा कॉल्स नहीं लेती. आप लोग छोटी छोटी बात किया करें जी, ऑफर कॉल्स में भी, और अभी लाइव कॉल्स का सिलसिला भी हम शुरू करने लगे तो उस पर भी कोशिश करें कि बस टू द पॉइंट जो है वो बात हो और बाकियों को मौका मिल सके. और है जी एजाज अली हमारे साथ मौजूद हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने का. और इसके साथ साथ मनाजिर महमूद हमारे साथ मौजूद है, सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो जी. और कतर से हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जी. शफाकत अली खान हमारे साथ मौजूद हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका भी. और राइट जी, इसके साथ साथ नई बलोच हमारे साथ मौजूद है, सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, गुज़श्ता ईद मुबारक जी आपको भी. और कहते हैं जी हमेशा की तरह प्रोग्राम इज़ टू गुड, बहुत शुक्रिया जी पसंद करने का. और इसके साथ साथ जी और कौन कौन हमारे साथ मौजूद है, नज़ीर खोसो हमारे साथ. और राइट जी, इसके साथ साथ नई बलोच हमारे साथ मौजूद है, सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, गुज़श्ता ईद मुबारक जी आपको भी. और कहते हैं जी हमेशा की तरह प्रोग्राम इज़ टू गुड, बहुत शुक्रिया जी पसंद करने का.

0: अमल कर लिया हमने। हाँ जी, ईद और ईद की दावतों से मुझे याद आया कि जब भी हम किसी इनविटेशन हमें आता है किसी भी इवेंट का, किसी भी दावत का, तो हम दो तरह के लोग होते हैं। हम लोगों में से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी अभी कौन आया होगा, अभी किसने आना है, तो चलो थोड़ा लेट जाते हैं, वो जो दो घंटे लेट जाने वाले लोग होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इतने एक्साइटेड होते हैं, कि वो टाइमली जो है वो पहुँचते हैं इवेंट पर और इवेंट के लिए एक्साइटेड होते हैं, उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। सो मैं तो उनमें से हूँ जो कि एक्साइटेड होती हूँ, स्पेशली वहाँ जहाँ पर आपको पता है आपकी पसंदीदा जगह होती है ना, कुछ इवेंट्स के लिए आप बहुत एक्साइटेड होते हैं। सो आई एम वन ऑफ देम। और अगर आप लोगों का शुमार भी इन दोनों किसी कैटेगरीज में होता है तो आप लोग ज़रूर शेयर कर सकते हैं, आप लोग डायल कर सकते हैं नंबर विच इज़ 4221111। और इसके साथ साथ आप लोग फेसबुक पर जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, facebook.com/fo11lahore के पेज पर अपने जाने जी पोस्ट अपडेट है, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और इसके साथ साथ शेयर भी आप कर सकते हैं। और जी हमारे साथ ऑफ द एयर मौजूद थे उस्मान साहब, और उस्मान साहब ने कहा कि अगर आप मेरी कैरियर वाइज, मेरे प्रोफेशन वाइज पूछेंगी तो मैं बहुत टाइमली जो है वो अपने इवेंट्स पे पहुंचता हूँ, क्योंकि ये नाथखुआ हैं तो ये जहाँ भी इनको बुलाया जाता है ये टाइम से पहले पहुँचते हैं कहते हैं। उसके अलावा अगर आप शादी वगैरह की बात कर रही हैं तो वहाँ पे भी जो ये है टाइम से पहले पहुँचते हैं। और अभी इन्होंने रिसेंट एक शादी का मुझे जो है वो वाक्य सुनाया जहाँ पर ये लोग पहुँच गए थे, लेकिन कहते हैं कि जी 1 से 1.5 घंटा हमें शादी हॉल को बस देखना पड़ा। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ, आप इतना पहले पहुंच गए थे कि 1.5 घंटा ही पहले पहुंच गए, इतनी डेडिकेशन का। तो कहते नहीं जी जिनका पहले इवेंट था उनका इवेंट जो है वो इतना लेट हो गया कि उन्होंने कुछ एक्सटेंडेड टाइम मांगा होगा, जिस वजह से इनका इवेंट जो है वो लेट हो गया। तो ये वही वाली बात है जो मैं कह रही थी कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, ख़ासतौर पर शादियों पे हम ये बहुत देखते हैं कि अभी भी लोगों को जब पता है कि हॉल्स की टाइमिंग फ़िक्स्ड हैं, इवेंट्स की टाइमिंग फ़िक्स्ड हैं, फिर भी वो इतना लेट आते हैं कि फिर उसके बाद जिनकी तरफ से इवेंट होता है या तो वो शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि उनको चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, उनको एक्स्ट्रा टाइम मांगना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और उनको जो है वो चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और जी लाइव कॉल्स की जाने बढ़ते हैं क्योंकि आप लोग बहुत देर से जो है वो कॉल्स कर रहे हैं, सो लाइव कॉल्स की तरफ चलते जी। लेट्स सी पहले कॉलर कौन होते हैं हमारे साथ। देयर वी गो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं
1: जी? मोहतरमा नईम बलोच लाहौर से बात कर रहा
0: हूं। वाह वाह वाह, ये देखिए ये खुशकिस्मती होती है आपकी कि आपके ऑफर कॉल भी मिल जाए और ऑनर भी मिल जाए।
1: मैंने छू मंत्र किया आपको पता है?
0: अच्छा, वो कैसे किया आपने, ये आपने सबको बता देना टोट का।
1: नहीं मैं सबको नहीं बताऊंगा।
0: अच्छा चलिए ठीक है।
1: आपको और आपकी पूरी फैमिली को फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ईद गुजर चुकी है बहुत बहुत मुबारक, और इवन दैट के जितने भी लिसनर्स हैं हमारे 101 के उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो।
0: बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक।
1: टॉपिक पे ये कहूँगा कि मेरी आदत है कोई भी फंक्शन हो मैं तकरीबन जो टाइम दिया गया उससे 5-10 मिनट पहले ही जाता हूँ।
0: अच्छा, इसका तो आपको भी एंजाइटी होती है पहले पहुँचने वाली।
1: वो एक तो ये है ना कि कुछ हमारे जो फैमिली के फंक्शन होते हैं उनका तो पता ही होता है ना कि फंक्शन का टाइम क्या है और फंक्शन स्टार्ट कितने बजे होना है, उसी हिसाब से बंदा जाता है। अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसपे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो उस फंक्शन पे मैं 5-10 मिनट पहले जाना पसंद करता हूँ।
0: ठीक है, अच्छी बात है।
1: आई वांट टू सिंग अ सॉन्ग फॉर यू।
0: ठीक है जी, पाकिस्तानी गाना गाएगा और प्लीज थोड़ा टाइम लीजिएगा ताकि बाकी को भी टाइम मिले।
1: ओके नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, बादल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे

0: और जी थैंक यू सो मच, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ नईम आपकी और सच अ लवली सॉन्ग और वाकई आवाज़ बहुत बहुत बहुत अच्छी आवाज़ थी। और जी बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल करने का। इसके अलावा जी और राइट हम कुछ और कमेंट्स भी शामिल करते हैं। रजा चौधरी कहते जी अपने जहनी आराम के लिए हर चीज़ को मुख्तसर करना सीखें, अल्फाज एहसास ख्वाहिशात और लोग, मगर चाय का कप हमेशा बड़ा रखें। यकीन माने चाय इज़ समथिंग जिससे मैं कहती हूँ कि एक नेमत है, और स्पेशली जो चाय लवर्स है ना। अब मैं आपको बताऊँ, अभी मैं क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं वकेशन्स पे गई हुई थी और मैं गलियात गई हुई थी और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैंने मिस की वो खुले दूध की चाय थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी इतनी कम थी कि लिटरली मैं तरस गई। और आज जब मैंने घर आके घर की चाय पी तो मैं वो जैसे कहते हैं ना सुकून मिला। सो एक अच्छी चाय बहुत मैटर करती है, तो चाय का कप जो है ना हमेशा बड़ा रखें। और क्योंकि वो कहते हैं जी क्योंकि ये सब अल्फाज जो हैं वो चाय में बिस्किट की तरह होते हैं, सो चाय का कप बड़ा रखें। और राइट जी चाय पे फोकस करें। रियाज भट्टी मेरे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जी आपका भी ज्वाइन करने का। इसके साथ साथ जी और कौन कौन मौजूद हैं, साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। एक और कॉलर की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो वाला शिकवा खम हो जाए, कम हो जाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम एना अस्सलाम वालेकुम बानो बानी के सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से हंसता मुस्कुराता हुआ अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप?
0: वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नाम बताने की जरूरत
0: नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं।
1: मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक्स के नहीं जरूरत नाम बताने।
0: जी जी
1: हाँ जी। और आपको गुजरी हुई ईद मुबारक।
0: बहुत शुक्रिया आपको भी। जी जी जी बिल्कुल पुरानी नहीं है कुछ, एक तो ईद लंबी हो गई हमारी, हफ्ता इतवार भी साथ मिल गया ना, तो जरा अभी नई नहीं लग रही है
1: क्योंकि ये पूरा महीना ईद का ही चलता रहा।
0: हाँ।
1: मुहर्रम आ रहे हैं
0: जी, आगे मुहर्रम आ रहे हैं।
1: तो ये जो गाना अभी भाई ने गाया, यकीन करो कि मेरा इतना फेवरेट ये गाना, कई बार मैं इस गाने की फरमाइश कर चुकी हूँ।
0: अच्छा,
1: जहांजेब की आवाज है मेरा।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अहमद जहांजेब साहब
1: बहुत मुझे फेवरेट, मेरा पसंदीदा गाना है।
0: बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत गाना है और उन्होंने भी बहुत खूबसूरत गाया।
1: बिल्कुल, एक एक लफ्ज, एक एक मिसरा जो है ना दिल को छू लेने वाला।
0: वाह वाह, बिल्कुल ऐसे।
1: तो अगर यही गाना आप प्ले कर दें
0: जरूर जरूर,
1: ये मेरे लिए ईद का गिफ्ट।
0: चले जी फिर, आपको ईद का तोहफा हम जरूर देते हैं, आप फिक्र न करें।
1: ठीक है, ये बहुत बड़ा गिफ्ट मेरे लिए तोहफा ईद का होगा।
0: अरे वाह अरे वाह, ये तो आपने बड़ी छोटी सी चीज मांगी है
1: जी।
0: मैंने कहा ये तो आपने बड़ी छोटी सी चीज मांगी है, लेकिन अच्छी बात यह कि आप छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती हैं।
1: क्योंकि छोटी चीज मांगो तो वो तो मिल जाती है, थोड़ी हो सकता है ना मिले।
0: हाँ ठीक है, मतलब आप उस रिस्क पे नहीं जाते कि इनकार हो जाए।
1: नहीं नहीं बिल्कुल
0: ठीक है।
1: तो यहाँ तक मेरी और आपकी आवाज आ रही, सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी, अल्लाह हाफिज। शमीम आपकी हमारे साथ मौजूद थी जी, और इन्होंने भी ट्रैक की बहुत तारीफ किया, और यकीनन बहुत अच्छा ट्रैक, बहुत खूबसूरत, और बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने जो है जैसे कहते हैं ना हक अदा करना, तो नहीं आपने हक अदा किया। ऑलराइट जी, दिस वन इज़ फॉर एवरीवन। एवरीवन मैं इसलिए कहूँगी कि जिस जिस को ये ट्रैक पसंद है और जिस जिस को अहमद जहांजेब की आवाज़ पसंद है, उन सब के लिए ये ट्रैक।

0: वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत आवाज और बहुत मजा आया सुन के.
1: थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीक आपका प्रोग्राम होगा ना?
0: जी जी इंशाल्लाह.
1: बहुत शुक्रिया.

ट्रैक एंजॉय करते हैं।

0: सवाल का जवाब तो मेरा रह ही गया
1: जी जी
0: मैं हंसी वाली बड़ी मजेदार था आपको मैं ये कहानी क्योंकि मैं एक शादी टाइम की मैंने डिफेंस में हम लोग मैं और मेरे मियाँ हम गए शादी में दो लोग
1: ठीक है
0: लेकिन मैं तैयार होने में देर नहीं करती बहुत जल्दी करती मेरे मियाँ पता क्या कहते हैं आपको तो एक दिन पहले तैयार होने को कहा जाए तो फिर तैयार होती
1: ये क्या बात है आप कह रही हैं आप जल्दी तैयार हो जाती हैं मियाँ आपकी कह रहे हैं एक दिन पहले कहा जाए
0: हाँ जी हाँ जी तो हुआ ये कि एक शादी पे हम लोग जब गए हैं तो उन्होंने ना शादी हॉल में नहीं था
1: अच्छा।
0: उन्होंने पार्क में किया हुआ था इंतजाम
1: ठीक है
0: तो जब हम लोग पहुंचे ना वहाँ पर कुर्सियां लगी हुई थी पार्क में तो देखा क्या कि सामने जो है ना दूल्हे के अब्बा साहब बैठे कुर्सी के ऊपर
1: ठीक है
0: कोई बराती या कोई कोई ने बरात जानी थी लड़के की बरात
1: ठीक है
0: तो वो दूल्हे के अब्बा देख के हमें हंसने लगे हम उनको देख के हंसने लगे ये कहने का मतलब ये कि इतनी जल्दी हम लोग चले गए कि काफी देर के बाद बारात जो ना फिर गई जिधर जानी थी
1: ठीक है मतलब आप सेहराबंदी पे गए थे
0: जी जी बिल्कुल
1: ठीक है ठीक है
0: मैंने कहा सवाल का जवाब मैंने
1: दिया अच्छा नहीं वैसे आपकी कॉल के बाद मैं भी सोच रही थी कि सवाल पे तो बात ही हुई
0: पता गाने की खुशी में खुशी के मारे जो ना मैं भूल गई
1: चले कोई बात नहीं जी
0: करने का बहुत बहुत शुक्रिया
1: वेलकम
0: उस भाई को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम जिन्होंने गुनगुनाया था
1: बिल्कुल ठीक है अल्लाह हाफिज़ जी अल्लाह हाफिज़ जी शमीम आप हमारे साथ मौजूद थे और वंस अगेन जी सवाल का जवाब देने के लिए वापस आई थी अच्छा जी इसके साथ साथ जल्दी जल्दी कमेंट्स भी शामिल कर लेते हैं फरहाद मेमन हमारे साथ मौजूद है मनाजिर महमूद हमारे साथ मौजूद है जी और हमदुल्ला मला खेल हमारे साथ मौजूद है जी कोयटा से वेलकम टू द शो जी कोयटा में कैसी सर्दी है ये भी बताएं ना क्योंकि मैं तो अभी जब गई हूँ तो मुझे तो बड़ा अच्छा वेदर मिला यकीन माने इट्स लाइक विंटर्स और मतलब अच्छी खासी ठंड थी जी गलियात में और मज़ा आया मतलब आप इतनी गर्मी के बाद जब आप जाते हैं ना गलियात और पीछे से आपको फ़ोन आता है लाहौर में तो बड़ी बारिश होगी है ओले पड़ गए हैं और यहाँ पे भी जो है वो गलियात वाला मौसम हुआ है तो फिर आप कहते हैं अच्छा चले कोई बात नहीं बट एनीवेज जी वहाँ पर भी बहुत अच्छा मौसम था और जी एक और कॉलर शामिल कर लेते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो जी जी आप ऑन एयर हैं
2: क्या है आपका
1: मैं बिल्कुल ठीक ठाक कौन कहाँ से बात कर रहे हैं हेलो
2: मैं वहाँ से लाहौर से बात कर रहा हूँ
1: नाम क्या है नाम तो बताएं
2: नाम क्या रखा है नाम कुछ भी नहीं रखा है
1: अच्छा जी गुमनाम ही ठीक है
2: हाँ गुमनाम
1: ठीक है जी क्या कहना चाहेंगे
2: कुछ भी नहीं शो अच्छा जा रहा है और क्या
1: ठीक है
2: तो और कोई और आपकी ईद कैसी रही
1: मेरी ईद बिल्कुल बहुत अच्छी रही आपकी कैसी रही
2: मेरी ईद के दो दिन पहला और तीसरा दिन तो मेरा ड्यूटी पे था
1: अच्छा पहला भी ड्यूटी पे था
2: लेकिन हाँ जी पहला दिन भी ड्यूटी पे था
1: अच्छा
2: हमने फुल सर्व किया अपने शहरियों को सिटीजंस को
1: अच्छा चलिए अच्छी बात है माशाल्लाह तो दूसरा दिन आपने बीच में अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया
2: नहीं वो अपने साथ
1: अच्छा अपने साथ स्पेंड किया है चलिए ये भी बड़ा जरूरी होता है कि आप अपने आप को टाइम दें
2: अपनी फैमिली में खुद ही हां अपनी फैमिली खुद ही हूं
1: अच्छा
2: खुद ही अटेंडेंट किया
1: ठीक है जी बहुत अच्छी बात है अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जी
2: पूछिए जो आप पूछना चाह रही
1: जी मैं टॉपिक की तरफ आना चाह रही थी कि आप
2: जी बिल्कुल टॉपिक आपका बहुत अच्छा होता है ग्रेट यू आर ग्रेट आपको बहुत अच्छे जबरदस्त किस्म के टॉपिक होते
1: हैं अच्छा बहुत शुक्रिया जी टॉपिक का जवाब भी दे दें
2: मुझे भूल ही गया आपको कॉल करने में लगा मैं मुझे इतना याद रहा कि टॉपिक था
1: इसका मतलब ये झूठी तारीफ थी है ना, झूठी तारीफ थी ना
2: वो, असल में नहीं नहीं वो असल में कॉल करते करते करते मेरी उंगलियां घिस गई
1: हैं। हाय अल्लाह, चलो जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की। टॉपिक ये था कि आप का शुमार किन लोगों में होता है जो लेट पहुंचते हैं किसी भी इवेंट पे, किसी भी दावत पे, या जिनकी कोशिश होती है लेट ही जाया जाए, या जिनकी कोशिश होती है टाइम से जाया जाए। अभी आपने तारीफ की है टॉपिक की, अभी आपने कहा जी टॉपिक बड़ा अच्छा है, ये अब मुझे पता चल गया।
2: मुझे असल में ना मुझे बचपन में आपने इसलिए डाल दिया, मुझे अरसा ही हो गया किसी खुशी की सेलिब्रेशन।
1: अच्छा अच्छा,
2: ये आप टॉपिक ऐसे रखती ना कि जॉब में आप लेट होते हो कि नहीं होता, फिर मैं आपको तरीके से देता।
1: चले जी, आप आपके लिए मोल्ड कर देते हैं, ठीक है, आपके लिए टॉपिक मोल्ड कर देते हैं।
2: मुझे याद ही नहीं है कि मैं कभी किसी खुशी की सेलिब्रेशन में गया हूँ,
1: ठीक है,
2: सच पूछे,
1: ठीक है,
2: याद ही नहीं है, मेरे दिमाग ही कहीं गुम हो जाता है। इस वजह से मैं शशो पांडे में उसको जवाब दूं तो दूं क्या।
1: चले, कोई मसला नहीं,
2: मुश्किल
1: कोई मसला नहीं, यकीनन आपके लिए मुश्किल होगा, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं,
2: मुश्किल,
1: ठीक है जी।
2: हाँ, अगर जॉब के बारे में पूछती है तो मैं वो बताने के लिए।
1: जी जी, बता दे, बस ब्रीफ सा बताइएगा ताकि बाकियों को भी मौका मिल सके।
2: हाँ बिल्कुल, ब्रीफ सा, ज्यादा नहीं। मेरी जो प्रीवियस जॉब थी उसमें मैं एक घंटा पहले पहुंचता था,
1: राइट,
2: और डेढ़ घंटा मेरा जो रिकॉर्ड रहा वो डेढ़ घंटा पहले, जो टाइम था उससे डेढ़ घंटा पहले,
1: ठीक है। और ये आप अपनी खुशी से जाते थे डेढ़ घंटा पहले, या आपको कहा जाता था?
2: नहीं नहीं, अपनी खुशी से।
1: अच्छा,
2: आराम से।
1: अच्छा, वाह जी वाह, ये डेडिकेशन।
2: कभी लेट नहीं हुआ,
1: वाह,
2: 7 साल में कभी लेट,
1: वाह। और कोई 5-10 मिनट पहले नहीं, डेढ़ घंटा पहले।
2: हाँ जी,
1: चले जी, बड़ी अच्छी बात है जी, डेडिकेटेड पर्सन है आप।
2: हाँ जी बिल्कुल, ऐसे अपनी कमिटमेंट जो होती है ना, जोक सा पार्ट, बहुत ज्यादा जोक्स हो गए, इंसान को कभी ना डेट नहीं होना चाहिए, खैर जहाँ पे आपकी कमिटमेंट हो ना, बिकॉज वो जो है ना फिर आप अच्छे काउंट में होते हो। और दूसरा ये कि बाकी फंक्शंस की बात रही, फंक्शन में अगर मैं रियलिटी बताऊँ तो आई हैव टू रिलाई ऑन समवन टू टेक मी ऑन दीज फंक्शंस, दैट्स व्हाई आई हैव नो सन सच मेमोरीज इन माय पास्ट, सो दैट्स व्हाई आई कांट रिप्लाई।
1: ठीक है, कोई इशू नहीं
2: दिस टॉपिक, बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम दैट आई हैव बिकम अ पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ गुड ओकेजन इन माय फैमिली और यू कैन से व्हाटएवर यू कैन से, बट आई ऑलवेज ट्राई टू बी ऑन टाइम व्हाटएवर वेदर इट इज अ फंक्शन रिलेटेड टू अ हैप्पीनेस और व्हाटएवर, आई ऑलवेज ट्राई टू बी ऑन टाइम, बिकॉज मैं लेट होने का कोई इसमें कोई जवाब ही नहीं पाता।
1: ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है।
2: आप टाइम से जाओ एंड टाइम से वापस आओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, टाइम से जाएंगे तो टाइम से वापस आएंगे। ठीक है जी, ओके जी, बहुत शुक्रिया जी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट जी, गुमनाम हमारे साथ मौजूद थे, नाम तो नहीं बताया, बट दिस इज वेरी ट्रू कि जी अगर आप टाइम से जाएंगे तो टाइम से वापस आएंगे। और जी इसके साथ साथ कुछ मैच का जिक्र कर लेते हैं, बड़ा एक्साइटिंग मैच चल रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, और इस मैच में पाकिस्तान ने लीड ली है 1-0 से, और ये मैच जो है वो खेला जाएगा, अब इसका सेकंड मैच जो है वो कल खेला जाएगा। पहला मैच जो था वो हफ्ते वाले दिन यानी 30 मई को खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने लीड ली थी और 5 विकेटों से ये मैच अपने नाम किया था, जबकि अभी सेकेंड मैच जो है वो होने जा रहा है कल यानी 4:30 बजे लाहौर में, और फिर उसके बाद तीसरा ODI मैच, वनडे मैच है ये पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, वो खेला जाएगा 4 जून यानी जुमेरात को ठीक 4:30 बजे।

0: और जी आप लोग की लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी है, एक और कॉलर है हमारे साथ जी, कोशिश है कि जल्दी जल्दी कॉल्स ली जाएं और आप लोग थोड़ा सा शॉर्ट अगर बात करेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे तो बाकी को भी मौका मिल सकेगा। प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर ज़रूर जो है वो इस पर नज़र रखें और जैसे कहते हैं ना, इस पर थोड़ा सा अपना फोकस करें कि आपने कितनी बात करनी है और कितना टाइम जो है वो आप ऑन एयर रहना चाहते हैं, तो इस पर कोशिश करें कि जितना लिमिटेड आपका टाइम होगा उतना ही बाकी को मौका मिलेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट जी, कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है, बट एनीवेज जी आप लोग दोबारा डायल कर सकते हैं 04211111 पर। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन है, कहां से बात कर रहे हैं?
1: मुझे रमजान अनवर गुजर कहते हैं, नाम ही काफी है, नाम तो सुना होगा, मॉडल टाउन लाहौर से, लेकिन इस टाइम ऑन ड्यूटी हूँ। अर्ज किया है जिसके आ जाने से आ जाती है 101 पे बहार, जिसके आ जाने से आ जाती है 101 पे बहार, और जिसके आ जाने से बढ़ जाती है 101 की शान। आ गई हम, आ गई और छा गई हम सब की क्यूट फैबुलस और सो प्रीटी आरजे मैम हमना खान, बहुत सी दुआओं के साथ रेडियो 1 हिट FM 101 आवाज़ पाकिस्तान के सभी दोस्तों को रमजान गुजर अदा। उसके बाद गुड इवनिंग 101 कहता है मिजाज ग्रामी मैम, कैसे आप, कैसी हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं?
1: मैं हमेशा की तरह खूबसूरत हूँ और मैं ड्यूटी पर हूँ और मैं मैम आपका शो नहीं सुन रहा, लास्ट शो मैंने आपका बहुत इंतजार किया, ईद पर भी आपका बहुत ज्यादा इंतजार किया और आप नहीं आई, जो जो कि ये की वजह ये है कि हमारी खुशियां 101 के साथ है, हमारी खुशियां आपके साथ है, तो आपको आना चाहिए था, आपको ईद के शो पर आना चाहिए था, आपने ना शो भी नहीं किया, तो मैंने तो ये शिकवा और गिला और चार शो मैंने मैं नहीं आ सका, तो मुझे ये था मेरी हाजिरी के मेरा जिक्र से नाम न कर दे, और ये ना कोई कभी रमजान गुजर भी कोई कालम था, ये तो 22-24 साल कहता है मैं सुन रहा हूँ, तो ये तो कोई आ ही नहीं रहा, और आपके शो में आना मेरे लिए बैठे इफ्तिखार है, वो कहता है रैंकिंग ऊपर वाले लेवल की हो जाती है आपके शो में आने।
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, और बाकी एक अरसे के बाद आपसे आज बात हो रही है।
1: बिल्कुल ऐसा ही, और मैं यकीन करें मैं ऑन ड्यूटी उस्ताद जी से 10 मिनट लिए, मैंने कहा यकीन करें मैम आए आए तो हद हो गई, मैं 24-22 साल से कालम ला रहा हूँ, 40 मिनट के बाद आपके बैल गई, ये एक बैल गई जो आपने चुकी, यकीन करें मुझे अब नए शो में मैंने 2 फोन से आपके शो में ट्राई करनी, आपके शो का लेवल हाई हो गया।
0: नहीं जी, नहीं जी, मैं यकीन माने मेरी कोशिश उतनी ही है कि मैं आप लोगों की कॉल्स लूं, आपके साथ और बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे गिले शिकवे कर रहे हैं, जो लाइन में लगे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कैसे मैनेज करूं।
1: बिल्कुल ऐसा ही है, एक तो हमारी FM सिस्टर आती है जर्मनी से, हाँ उसका नामी इसमें ग्रामी भी आप जैसा ही हम ना खाएंगे वो भी,
0: ठीक है,
1: और वो यकीन करे उस पर इतना तरस आता है, वो कहती है अगर मेरी काल ना मिले तो मैं रोती रहती हूँ, मैं रोती रहती हूँ अगले शो तक रोती रहती हूँ, मेहरबानी वो हर शो बन बन के काल करती है, तमाम लिसनर से गुजारिश करूंगा कि उसको लाजमी मौका दें, उसकी बात सुने, क्योंकि वो हम सब पे आ गए उसकी मोहम्मद 101 के साथ,
0: ठीक है।
1: और टॉपिक के वाले से बता दें आज टॉपिक कौन सा चल रहा है आप?
0: जी जी, टॉपिक ये है कि अगर आपको कोई इनविटेशन आता है ना, जैसे शादी का हो गया, कोई दावत का हो गया, तो आप लेट जाने वालों में से या जल्दी जाने वालों में से?
1: वो कराके जाने वालों में,
0: अल्लाह
1: पूरी कोशिश करता हूँ, जंड लावा ऐसी लावा,
0: अच्छा
1: मैं बच्चों को भी कहता हूँ, 6 बच्चों को भी, ताड़ी मेहरबानी, जो मैं नहीं ना खवा सके अजे इथो खा लिया, ये तो सारे मेरे साथ लड़ते हैं, पापा जी अज तो नहीं खाना है,
0: अल्लाह माफ कर। अच्छा मैं मैं भूल गई थी ये वाली कैटेगरी शामिल करना टॉपिक में।
1: यकीन करो मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ आप भी खाओ मेरी तरह, ज्यादा खाओ, क्योंकि शादी और खुशी कभी कभी आती है, और ये मौके ये फ्लेवर ये डिशेज कभी कभी मिलने को मिलती है, खाने को मिलती है,
0: इसका आपको बड़े होके पता चलेगा पापा ऐसे क्यों कहते हैं, ठीक है जी।
1: आपका शो मैं सुन तो नहीं रहा, लेकिन उम्मीद है और यकीन है कि हमेशा की तरह टॉप लेवल का है। आप आती है बाहर आती है यकीन 101 की रौनक है। आप
0: बहुत शुक्रिया,
1: आपका इकबाल बुलंद करे, अल्लाह पाक आपको दीन दुनिया की आसानी नसीब करे। आप हमारी मैम है। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
0: ऑलराइट जी, रमजान अनवर गुजर हमारे साथ मौजूद थे, और इसके साथ साथ जी कुछ और कमेंट्स फेसबुक के, रसा चौधरी भी लाइन में लगे हुए हैं जी, कॉल्स कर रहे हैं लेकिन कॉल नहीं मिल पा रही। मुझे वाकई इंतज़ार है कि आपकी भी कॉल मिल जाए, कुछ ही मिनट्स बाकी हैं जी। नईम बलोच कहते हैं जी आपने अप्रिशिएट किया, बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल अप्रिशिएट करना बनता था। और इसके साथ साथ जलील हमारे साथ मौजूद है, सलाम कहते हैं। रहीम यार खान से हमारे साथ मौजूद है जी, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने का। ऑलराइट जी, इसके साथ साथ और कुछ कमेंट्स हैं आप लोगों के, तो वो भी शामिल कर लेते हैं। कोशिश करेंगे एक दो और लाइव कॉल्स भी शामिल कर लें, लेकिन अभी चलते हैं जी एक और ट्रैक के जाने। और लेट्स सी जी नेक्स्ट ट्रैक हमारे पास कौन सा है क्यों में, दिस इज़ इट।

0: जी एक और कॉलर है हमारे साथ, लेट्स सी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं जी?
1: जी मोहम्मद शहजाद शाहबाग से बात कर रहा हूँ।
0: जी शहजाद साहब, कैसे हैं आप?
1: आपकी दुआएं माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और आपको गुस्सा। ईद मुबारक जी।
0: आपको भी ईद मुबारक।
1: हाँ जी, तो जो आपका मौजूद टॉपिक है ना, ये देखे जो हम तो जो ना हम नहीं लेट करते, जहाँ पे जाना हो ना।
0: अच्छा,
1: ये खवातीन लेट करते। तो अच्छा। जगह ना हमने बरात के साथ जाना था गुजराले,
0: ठीक है,
1: तो वो पार्लर में चल गई, तो वो अभी आ रही हूँ अभी आ रही हूँ अभी।
0: अच्छा।
1: वो टाइम काफी कर दिया, तो वो तो फिर बरात लेके चल गए। तो मेरे पास आई तो मैं क्या अब तैयार हुई, वो तो चल गए। कहना ये क्या हुआ, ये तो बहुत ऐसा नहीं हो रहा था ये था। तो मैं क्या अब तो ये जो आपने पैसे लगाए है ना आपने मुंह पे, आओ आप मुंह धोले जा के। वो तो चल गए बरात।
0: बाकी बरात चली गई।
1: चले गए, यकीन माने, और उन्होंने इंतजार ही बहुत किया आगे, हाल का चैन था। तो वो कह रहे इतनी देर में पहुंच रहे, हमने भी तो हाल तो बंद हो जाएगा ना।
0: हाँ।
1: तो इसलिए वो लेट हो गए। ये हम तो लेट नहीं करते, हमने तो मुआ सुआ चल भाई चंगी चंगी की तो तैयार।
0: वही कहते ना, बंदों की क्या तैयारी होती है। कपड़े पहन लो, जूते पहन लो, मुंह हाथ धो लो।
1: ये जो पार्लर है ना, ये बहुत लेट करा
0: दे। सारा काम खराब किया इन्होंने पार्लर वालों ने।
1: तो माशाल्लाह बहुत अच्छा, माशाल्लाह आपका शो होता है जी।
0: बहुत शुक्रिया जी,
1: दिल में जो खुशियाँ आ जाती है आपको सुन के जी।
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
1: मेरी तरफ से उस्ताद जीरा है मेरा भाई, बहुत प्यारा मेरा भाई है और मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, तो उसको मेरा सलाम है। आप सबको मेरा सलाम, दिली प्यार मोहब्बत से, जितने भी आते आते सबको मैं दिल से सलूट करता हूँ।
0: बहुत शुक्रिया जी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
1: अल्लाह
0: जी, बिल्कुल जी, ये जो बॉलर वाले हैं ना, ये लेट करा देते हैं खवातीन को, खवातीन का कसूर नहीं होता। बट मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि वाकई मतलब देखें, सोचें आप जरा, इमेजिन करें, मैं तो इमेजिन कर रही थी कि बारात वाकई चली गई और आप सोचे तैयार हो क्या पा रहे हैं और बारात चली गई, और बारात भी दूसरे शहर की है, सेम सिटी की हो ना तो बंदा मैनेज कर लेता किसी तरह से, लेकिन दूसरे सिटी की हो तो कैसे मैनेज करेंगे आप। और जी एक और कॉलर हमारे साथ, लेट्स सी कौन कौन से हैं जी। 04211001011 पर लास्ट कॉलर में भी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। और जी लास्ट कॉलर नहीं हुए। लास्ट कॉलर ड्रॉप हो गए, सो वंस अगेन विल सी कि कौन से हमारे लास्ट कॉलर होते हैं हमारे साथ। लेट्स सी जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, लास्ट कॉलर मोहम्मद अनीस। क्या
0: ओए होए होए होए, कैसे हमारे लास्ट कॉलर?
2: अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, आप सुनाएं। देखें मैं माजरत के साथ ये कहना चाहूंगा, एक तो हमें कुछ लोग सुन भी नहीं रो ले रहे होते लेकिन घंटा घंटा लगा देते हैं, तो दूसरों को कैसा मौका मिले। मशुरा तो दे देते हैं कि भाई दूसरों को मौका दें, जब आप खुद घंटा लगाएंगे तो दूसरों को टाइम कैसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल।
2: जो सुनते हैं वो जल्दी जल्दी फारिग हो जाते हैं,
0: ठीक है, वो उनको पता होता है उन्होंने टू द पॉइंट बात करनी है।
2: हाँ बस पहली बात तो ये कि हमारे पास यहाँ पे तूफान आया था, बहुत
0: कहाँ पे?
2: हाँ गुडू वादा कॉलोनी, गुडू कश्मीर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आया
2: मतलब? हाँ बस 5:30 बजे शुरू हुआ, कुछ भी नहीं छोड़ा, ना कोई दरख्त को छोड़े, ना कोई दुकान का शटर छोड़ा, इतना नुकसान हो गया।
0: अल्लाह
2: खैर करेगा, अभी तक लोग बनाने में लगे, फिर मैंने आपका शो लेट सुना
0: जी, जी
2: जमीन के बाद सुना।
0: अच्छा,
2: दूसरी मरतबा जब आप कह रही थी ना कि अभी जमीन दूसरी मरतबा ये सवाल का जवाब दे, उस टाइम से मैं शो सुन रहा हूँ, शो बहुत अच्छा है। वैसे
0: आप जाने
2: वाले में से टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, सुबह से भी आखिरी कॉलर उन्हों टाइम टाइम
0: जी जी।
2: बाकी रही बात ये जल्दी जाने, मैं खुद जितनी मरतबा भी गया हूँ ना तो जल्दी पहुँचा हूँ, बाकी फैमिली के साथ अल्लाह माफ करे।
0: ये तो मर्दों की शिकायत का मुझे वो लग रहा है। मौका मिल गया
2: फैमिली के साथ, वाकई में लेट हो गया मैं। एक मरतबा मैंने 2 सीटें बुक कराई,
0: अच्छा,
2: तो गाड़ी निकल गई लेकिन फैमिली तैयार नहीं हुई।
0: ओए होए।
2: फिर उसके बाद जब खुद जाते हैं तो मैं 10-15 मिनट पहले पहुंच जाता हूं ताकि अगला इंतजार ना करे।
0: ठीक है
2: जी,
0: ठीक है,
2: जल्दी जाने वालों में से, बाकी फैमिली के साथ लेट हो जाती है, तैयारी भी कुछ इस तरह की होती है ना।
0: हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल, खवातीन की तैयारी पे जो है ना इस टाइम फुल शिकायतों का मोड ऑन है। ठीक है,
2: किसी का अपना हिसाब किताब है ना, ठीक है कभी कभी इतना जल्दी होती है तो मुंह धो के भी चले जाते हैं, लेकिन तो मुंह धो के नहीं जा सकते।
0: ठीक है जी, ठीक है जी,
2: सुनने वालों को सलाम,
0: वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़ जी। और राइट जी, ये तो मुझे अभी इस टाइम लग रहा है कि मेरा शो जो है ना, ख़ासकर मर्द हजरात के लिए जो है ना, वो अपनी ख़वातीन की, जो घर की ख़वातीन है ना, उनका शिकायत सेंटर बना हुआ है कि कितने इवेंट्स इन्होंने मिस किए हैं, ये कितने इवेंट्स में ये इतना लेट पहुँचे सिर्फ ख़वातीन की तैयारी की वजह से। बट एनीवेज जी, मैंने तो आप लोगों का पर्सनल पूछा था, यहाँ पर जो है वो ख़वातीन की तैयारी पर जो है ना, वो बड़े गिले शिकवे हुए हैं। बट एनीवेज जी, हमारे लास्ट कॉलर थे ये, और इसके साथ साथ वंस अगेन मैं रेडियो पाकिस्तान के शानदार मौके का जिक्र करना चाहती हूँ, जो सभी उन लोगों के लिए जो आवाज़ को पसंद करते हैं, जिनका आवाज़ से लगाव है और जिनको लगता है कि उनकी अपनी आवाज़ बहुत अच्छी है, जो आरजे बनना चाहते हैं, जिनको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करना है, तो ये आप सबके लिए मौका है कि आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, जो 2 महीने की इंटर्नशिप है और इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई इज़ 12th June। 12 जून को आखिरी तारीख है और 16 जून से क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा। और मीडिया इंडस्ट्री के या ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री की बात करें तो टॉप आर्टिस्ट से, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, उनसे सीखने का आपको मौका मिलेगा। सो ज़रूर इसका पार्ट बने अगर आपको लगता है कि आप में टैलेंट है, आप सीखना चाहते हैं और आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं स्टूडियो का, और इसके साथ साथ जिससे हम यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करते हैं, किस तरह से एक आरजे एक ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है और किस तरह से वो चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, ये सारा कुछ अगर आप सीखना चाहते हैं, सो बी अ पार्ट ऑफ दिस इंटर्नशिप, और इस इंटर्नशिप में ज़रूर ज़रूर ज़रूर जो है वो इनरोल करें, जल्दी जल्दी इनरोल करें।

और हर जी बहुत शुक्रिया आप सबका जिन लोगों ने शो को एंजॉय किया, शो में कॉल्स किए, और उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो कॉल्स करते रहे लेकिन कॉल्स नहीं मिले मुझे। यकीनन अगर आप मेरी साइड से देखें तो मुझे भी उतना ही अफसोस है कि आप लोगों की कॉल्स क्यों नहीं मिली, और मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि मैं कॉल्स आप लोग की अटेंड कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ले सकूँ। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का जो लोग अभी तक कॉल्स कर रहे हैं, अभी तक लाइट ब्लिंक कर रही है, और इसके साथ साथ जिन लोगों की कॉल्स मिल गई उनका भी बहुत शुक्रिया। और जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे मुलाकात होगी। और टाइम नोट कर लें प्लीज़ जी, 6 से 8 आई विल बी देयर इंशाल्लाह। और बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपनी। आज हमदा खान को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101।
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून, अल्शफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
2: शुक्रिया, आपने
1: FM 101 ट्यून किया। 13 जून, पीसी होटल लाहौर आइए और दें अल्शफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
0: सुनते रहिए FM 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहाँ हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अल्शफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
3: सुनते रहिए FM 101।
4: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
5: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
6: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
7: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
8: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
9: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
10: खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
3: सुनते रहिए FM 101।
2: 13 जून PC होटल लाहौर आइए और दें अल्शफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: सुनते रहिए FM 101।
11: पाकिस्तान दी अजीम तिब्बी इलाजगाह दवाखाना प्रोफेसर सुलेमान वालों तुहाडी मेजबान साइमा तुहाडी खिदमत विच सलाम ते पुरखलूस दुआवां दा हदिया पेश करदी है। उम्मीद करती कि साडा प्रोग्राम तुहाडे ते तुहाडी पूरी फैमिली वास्ते सेहत भरी जिंदगी दा सबब बन रहे होणगे। मेरे सोहणे भैण भराओ, साइमा तुहाडी सेहतमंदी ते पुरसकून जिंदगी दी दुआ करदी है। लेकिन रब ना करे जे तुसी शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ां दा दर्द या अमराज दे बाजपन दा शिकार हो ते तुहाडी बीमारी किसे भी इलाज तो ठीक नहीं हुई ते वक्त जाया ना करो ते फौरन ही पाकिस्तान दे मन्ने तने ते बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता तबीब जनाब प्रोफेसर सुलेमान साहब नूं जाती तौर ते मिलो। साडा पता ते फोन नंबर नोट कर लो। सुलेमान दवाखाना रजिस्टर्ड, पुल फ्लाईओवर बिल मुकाबिल मीनारे पाकिस्तान, मेन रावी रोड लाहौर। फोन नंबर 042-377-2760 यानी 042-377-2710। मोबाइल नंबर है 0300-414-2608 यानी 0300-414-2608। ਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ suleiman.dawakhana@gmail.com। ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਿੱਬੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਨਾਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਬਕ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡੀ ਆਫ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤਬੀਬ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਅਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ।
12: ਸਹਿਮਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ।
11: ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਲੇ ਪੇ ਦੈਲਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ
12: ਜੀ,
11: ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫਲਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਸਾਮਿਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਬਲਾ।
12: ਸਹਿਮਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬਲਾ ਹੈ।
11: ਵਾਕਈ
12: ਸਹਿਮਾ ਜੀ, ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਰਾਸੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਰਦਬੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
11: ਅੱਛਾ,
12: ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
11: ਬਿਲਕੁਲ
12: ਸਹਿਮਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2.2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਨ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ 1000ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
11: ਅੱਛਾ,
12: ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਸਲਨ ਖਸਰਾ, ਚੀਚਕ, ਲਾਕੜਾ ਕਾਕੜਾ, ਕੰਨ ਪੇੜੇ, ਵਰਮੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਮਾ ਜੀ, ਬਸ ਜਰਾਸੀਮ ਮੁਤਹਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਸ ਗੈਰ ਮੁਤਹਰਕ।
11: ਅੱਛਾ,
12: ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
11: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ,
12: ਯਾਨੀ 1 ਜਰਾਸੀਮ ਤੋਂ 2 ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
11: ਓਏ ਹੋਏ,
12: ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 4 ਤੋਂ 8 ਅਤੇ 8 ਤੋਂ 16 ਹੋ ਕੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
11: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ,
12: ਲਿਹਾਜ਼ਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਜਰਾਸੀਮ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਜਰਾਸੀਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ।
11: ਓਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਲਖ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੌਤ ਛੇੜ ਬੈਠੀ ਹਾਂ।
12: ਹਾਂਜੀ,
11: ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖੌਫਨਾਕ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ
12: ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ।
11: ਓਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਲਖ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੌਤ ਛੇੜ ਬੈਠੀ ਹਾਂ।
12: ਹਾਂਜੀ,
11: ਮੈਨੂੰ ਕੀ

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है।
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मनसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने हांगज़ू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और चीन के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमती यादाश्तों को जल्द माहिदों और मुश्तरका मनसूबों में तब्दील करने की हिदायत की है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने मुश्तरका मफाद के तमाम शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है।
1: This is FM 101.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: किया।
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है।
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: सुनते रहिए FM 101 101।

0: आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
1: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
2: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
3: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
4: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
5: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
6: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
7: सुनते रहिए FM 101 101।

guys.

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.
2: सुनते रहिए FM 101 101।

0: रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने हांगसू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और चीन के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमती यादाश्तों को जल्द माहिदों और मुश्तरका मनसूबों में तब्दील करने की हिदायत की है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने मुश्तरका मफाद के तमाम शोबों में तालुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगु में खित्ते की तारातरीन सूरतेहाल पर तबादले ख्याल किया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 एकरोज़ा बैन अल-अक़वामी क्रिकेट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच कल लाहौर में खेला जाएगा।
1: Hey, we'll be back after this short commercial break.
2: This is FM 101.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: this music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: बिग रेडियो, बिग स्टाइल, FM 101. Big Radio, Big Style. Please, FM 101. Big Radio, Big Style. Please, FM 101.

0: This is FM 101.
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक, वन अबव एफएम 101।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है।
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: This is FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

सुनते रहिए FM 101 101।

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

एसएमएस की ऑप्शन में जाओ, वहां पर लिखो 101 एक स्पेस दो, अपना मैसेज नाम शेयर के नाम लिखकर 4471 पर अपने तमाम एसएमएस मैसेज आप हमें सेंड करोगे। इसके अलावा जी तीसरा तरीका ये कि फेसबुक पे हमारा ऑफिशियल फैन पे ज्वाइन करो, www.facebook.com/fm101channelpakistan, जहां पर आपको अभी के शो वाली पोस्ट जो है वो नजर आएगी के 12 to 2 AM आपका मेरा साथ लेगा एफएम 101 इंटरनेशनल में। वहाँ पर अपने कमेंट्स और फीडबैक जरूर दीजिएगा, और खास तौर पे हमारे वो दोस्त जो कि पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, आप फेसबुक के थ्रू इजीली प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो।

एनीवेज ये प्रोग्राम में क्या होने जा रहा है, कुछ ही देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे एक मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हमेशा की तरह आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, उसका फीडबैक आप हमें दोगे। इसके अलावा बहुत सारी गॉसिप्स जो है हम इधर उधर की आपके साथ लगाते रहते हैं, जो इर्द गिर्द हमारे बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं उनको हम डिस्कस करते रहते हैं। और साथ साथ आपसे मैं कहता हूँ कि कोई भी बात आपके दिल में है, चाहे कोई खुशी की बात है, सीरियस बात है, कोई प्रॉब्लम में हो, कुछ सोचों में गुम हो, कंफ्यूज हो, कुछ भी एनीथिंग, आप हमें लिख के भेज सकते हो 4471 पर, और साथ फेसबुक पे उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। और अभी प्रोग्राम में फर्स्ट ट्रैक मैं प्ले कर रहा हूँ, और फर्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यू किया हुआ है बिलाल सईद की आवाज़ में, ट्रैक इजाज़त। सो ट्रैक को इंजॉय कीजिएगा, और अगर आपका दिल करा है चाय पीने को, कॉफ़ी पीने को, ग्रीन टी पीने को, जल्दी से जाए बना के लाइए और एंजॉय कीजिए। मेरा नाम है सैन रजा, आपको मेरा साथ है, ठीक रात के 2 बजे तक जाना आपने कहीं नहीं, क्योंकि हम वापस आएंगे इस ट्रैक के बाद।

get a good look at it. Alright, listeners, welcome back to FM Morum International. में बिलाल सईद की बात में आप ट्रैक सुने थे. सबसे पहले आपको बता दूं आज के प्रोग्राम में क्या आपसे पूछने जा रहा हूं. बड़ा सिंपल सा सवाल है. आपने मुझे बताना है कि क्या बात आपको सबसे ज्यादा सुनने को मिलती है अपने इर्द गिर्द से या अपने फैमिली मेंबर से. क्या बात आपको सबसे ज्यादा आपसे रिलेटेड जो है वो सुनने को मिलती है. ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है कि इर्द गिर्द से या आपके फैमिली से आपको आपसे रिलेटेड जो है सबसे ज्यादा क्या बात सुनने को मिलती है. तो आप SMS सेंड करोगे 101 स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम लिखकर 4471 पर, साथ www.facebook.com/FM101channel पाकिस्तान पर. 12:40 के बाद आपकी लाइव कॉल जो है हम प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे. कोशिश जरूर करते हैं हम, वो आपको बताइए क्यों कोशिश करते हैं.

0: अच्छा जी, अभी पिछले दिनों ईद पर 3 मूवीज जो है वो पाकिस्तानी रिलीज हुई हैं, जिनको देखने के लिए काफी लोग जो है सिनेमाज में गए, और अपना फीडबैक जो है, अपने रिव्यूज जो है वो टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ज़ॉम्बी फिल्म जो है वो रिलीज हुई, जो कि एक्शन, जिसके बारे में कहा था एक्शन भी है, कॉमेडी भी है और साथ हॉरर भी है कुछ हद तक, जिसमें फ़ाद मुस्तफ़ा, महविश हयात, फिर डोरी खान, फिर आई थिंक मोहसिन भी हैं, फिर बाबर अली भी हैं, जावेद शेख भी हैं, बहुत बड़ी कास्ट है। तो खैर, अभी तक इसका जो आप कह सकते हैं फीडबैक जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा भी है, और कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि स्टोरी जो है वो उसकी समझ नहीं आई, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं एटलीस्ट पाकिस्तान में एक डिफरेंट मूवी जो है वो बनी है, तो हम उसे देखने गए हैं, तो एफर्ट जो है वो बहुत अच्छी थी। सो अभी तक बॉक्स ऑफिस पे इसका मतलब अच्छा रिकॉर्ड भी जा रहा है। उसके अलावा जी, लव दी सॉन्ग फरहान सईद की मूवी जो है वो रिलीज़ हुई, और जिसका अभी तक बहुत ही अच्छा कोई फीडबैक नहीं है। ये एक्शन रोमांस मूवी है, और फिर साइको मूवी जो है वो मीरा की और शान की, वो रिलीज़ हुई, और उसका अभी लोग देख रहे हैं और अपना फीडबैक दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो 3-4 दिन हुए रिलीज़ हुए इन तीनों मूवीज़ को। सो जो थोड़ा बहुत फीडबैक आया वो मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर कर लूँ।
1: जे देव इजाजत ते सोने ओ दिल तड़े ना वेला दईए, जे देव इजाजत ते सोने ओ दिल तड़े ना।
0: लेकिन मैं एक बार बता दूं कि अभी जहां पे मूवीज की मैं बात कर रहा हूं ना, अभी मूवीज में बहुत कुछ जो है चेंज होने वाला है। अभी मैं ज़ॉम्बी में, मेरे दोस्त हैं डोरी खान जो है, अभी इंशाल्लाह वो अभी लंदन में है, अभी वापस आएंगे तो उनको हम शो में भी बुलाना है, उनकी मेरी कमिटमेंट है। तो मैं काफ़ी सालों से एक बात कर रहा था कि यार जो हीरो है ना, उसको हीरो जो है वो दिखना चाहिए। तो आजकल जिस तरह दुनिया में चल रहा है, मतलब मसल्स बनाए हों और सिक्स पैक बने हों, तो अभी आप देखें, ये मैं वैसे नहीं कह रहा, ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने आपके कितने टीवी के एक्टर्स हैं, फैसल कुरैशी को देख लें, आजकल सिर्फ एक्सरसाइज पर लगे हुए हैं, मोहसिन को देख लें एक्सरसाइज पर लगे हुए हैं, फिर फाज मुस्तफा को देख लें, और बहुत बेतहाशा बाकी लाइन लगी हुई है, सब ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है, ठीक है, सारे जिम में जा रहे हैं, सारे डाइट कर रहे हैं और सारे अपनी अच्छी फिजीक बना रहे हैं उनको देख देख के ना। तो अभी आपको आने वाले सालों में मैं देख रहा हूँ कि बहुत चेंजेस जो है वो नज़र आएंगे, लेकिन एक चेंज बहुत ज़रूरी है जिसके बारे में मैं बात करता रहता हूँ कि हमें न्यू फेसेस चाहिए। अभी मैं रिव्यूज़ जो मूवीज़ के मैं देख रहा था उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बात की गई थी उसमें ये थी कि मैं नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन जर्नली बात कर लेता हूँ कि ये जितनी भी मूवीज़ थी इसमें हमें हर मूवी में पिछले 20-25 साल से वही कुछ गिने चुने फेसेस जो हैं देखने को मिलते हैं। एक रीज़न ये भी है कि लोग जो हैं मूवीज़ कम देखने जाते हैं, तो अगर ये चेंज अगर आ जाए ना एक, तो मेरे ख्याल से हमारी मूवीज़ जिस तरह इस ईद के ऊपर रिलीज़ हुई हैं और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया है देखने की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका रिस्पांस जो है वो डबल भी हो सकता है। न्यू फेसेस हमें चाहिए मूवीज़ के लिए।

0: this could be something magic. You looking real good, and I'm a good look at it. Now spin that body round, let me get a good look at it. Oh, my, baby girl, you got it. No.
1: गला मेरा ऐसा ख़राब हुआ है ना दो तीन दिन से कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, इसके अलावा जी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं रोज़ी शेख, और आपने कहा कि ये बात सुनने को मिलती है कि तुम बोलती बहुत कम हो। आप देखें अभी एक कहाँ गई हमारी ग्लेसर कह रही थी, उन्हें सुनने को मिलता है कि आप बोलती बहुत ज़्यादा है, और अब साथ ही मैसेज आ गया तुम बोलती बहुत कम हो, जब बोलने पर आती हूँ तो पर फिर किसी और को बोलने नहीं देती हूँ। ठीक हो गया, लेकिन ज़्यादातर आप बोलती कम है। तो मुझे एक बात बताएं रोज़ी, कि जब आप कम बोलती हैं और अपने दोस्तों में या फैमिली में बैठी होती हैं तो क्या सोच रही होती हैं कम, जब आप कम बोल रही होती हैं? तो ये बात आपने मुझे लाजमी बतानी है। अच्छा, हम आज भी ने हमारे साथ पार्टिसिपेट करी है, आपने कहा कि मैं बहुत बोलती थी, अब नहीं बोलती, मुझे ऐसा लगने लगा है कि सारी दुनिया मुझसे ज़्यादा समझदार है तो मेरे अल्फाज की कदर ही नहीं है, और अब सिर्फ सुनती हूँ और आपको भी सुनती हूँ, देखें कॉल भी नहीं करती। अच्छा ठीक है, हमारे बहुत सारे लिसनर्स ऐसे होते हैं जो सुनते ही रहते हैं, कई सालों से सुन रहे हैं लेकिन कॉल कभी नहीं करते। अच्छा सच बात बताए ना कि आप बैलेंस नहीं है, ठीक है। आप कह रही हैं कि मैं बोल ना सकूं इसलिए मैं कॉल नहीं करती, आप बैलेंस नहीं होगा इसलिए आप कॉल नहीं करती होंगी। अच्छा खैर मजाक करो। अच्छा साइम रहमान हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं मुल्तान से, थैंक यू सो मच आपने जी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। और मुल्तान से जब भी मैसेज आता है ना, वो भी गर्मियों में, तो मुझे हमारे एक लिस्टनर है वो ज़्यादा आ जाते हैं, वो आमों की पेटी भेजते थे, वो कहते थे बस जाके पिक कर लो। अच्छा असद सरदार हमारे साथ है, आपने कहा कि एक टॉपिक सजेस्ट करता हूँ आपको, ये अच्छा ठीक है, आपने कहा है कि प्रोग्राम करें विलेज से यूनिवर्सिटी तक हॉस्टल लाइफ, विलेज से यूनिवर्सिटी तक हॉस्टल लाइफ, और इसके बाद पेरेंट्स की मर्जी से शादी हो जाना। अच्छा जो मैं समझ सका हूँ आप कहने का मकसद ये है कि जो गांव की लड़कियां जो हैं वो यूनिवर्सिटीज में आती हैं और हॉस्टल में रहती हैं, इसके बारे में आप कहना चाह रहे हैं, थोड़ा प्रॉपर क्वेश्चन बनाए ना, और बाद में पेरेंट्स की मर्जी से शादी हो जा रहा, तो एक प्रॉपर क्वेश्चन बनाए फिर मुझे पूरा क्वेश्चन जो लिख के भेजे। एनीवेज ये बातें आपके साथ चलती रहेंगी, और आपसे मैंने पूछा है कि इर्द गिर्द के लोगों से या अपने फैमिली मेंबर्स से आपको आपके बारे में सबसे ज्यादा क्या बात सुनने को मिलती है। सो 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पे आप पार्टिसिपेट करेंगे, इसके अलावा www.facebook.com/fm101channelpakistan। अभी जी प्रोग्राम एक ट्रैक प्ले करते हैं, नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है मुस्तफा जाहिद की आवाज में, सो ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा। और जो दोस्त हमें सुन रहे हैं मोरे हैविस पे, आपसे हमेशा की तरह एक ही बात कहना चाहेंगे, प्लीज ड्राइव केयरफुली एंड सेफली एंड कीप लिसनिंग।

0: ओके तो गाइस साहब वेलकम बैक टू एफएम वन इंटरनेशनल. मैं आपसे पूछा, मैंने ये कि मुझे बताएं कि आपके इर्द गिर्द के लोग और आपके फैमिली मेंबर्स सबसे ज़्यादा आपको क्या बात कहते हैं आपके बारे में. सो आपके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर साथ www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर. लाइव कॉल्स में अब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं 0511111 एंड 0519202540 पर. और जो लोग जो है मुझे सॉन्ग्स ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ ना कीजिएगा, मेरे प्रोग्राम में सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट जो है पूरी नहीं होती और वो मैसेज भी मैं प्रोग्राम में शामिल जो है वो नहीं करता हूँ, तो फ़ायदा कोई नहीं है. सॉन्ग्स अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद के, आप यूट्यूब पर जा सकते हैं, वहाँ पर बेशुमार आपकी पसंद के सॉन्ग्स जो हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो मेरे से रिक्वेस्ट करने का फ़ायदा कोई भी नहीं है. हाँ, अगर कोई बात करना चाहते हैं आप ज़रूर कर सकते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं ज़रूर कर सकते हैं, कॉल पे आना चाहते हैं, जो सवाल मैंने किया है उसके हवाले से बात करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट जो है वो मेरे प्रोग्राम में नहीं पूरी होती है. अच्छा, अभी पिछले दिनों जो है वो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया रावलपिंडी स्टेडियम में क्रिकेट मैच था जो पाकिस्तान जो है वो जीत गया, और अभी आई थिंक आज जो है वो सेकेंड ओडीआई मैच है. सो लेट्स सी जो है क्या होता है. मैंने देखा तो नहीं वैसे फर्स्ट मैच, मेरे कुछ दोस्त देखने गए हुए थे तो मैंने सिर्फ स्कोर देखा था कि पाकिस्तान जो है वो जीत गया है. चलो जी, अभी तो ऑस्ट्रेलिया की बी टीम आई हुई है और मेन प्लेयर्स उनके हैं भी नहीं है. चलो कोई बात नहीं, मैं लेकिन मेरी अपनी राय, ये मेरी पर्सनल राय है, मैं प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को उस टाइम मानूंगा जब पाकिस्तान से बाहर एशियन विकेट्स के अलावा जो है वो विकेट्स होंगी जहाँ पर आपको खेलना पड़ेगा और वहाँ पर पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है. बाकी इन विकेट्स के ऊपर तो खैर बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं अभी भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मैं देख रहा था, तो मेरे ख्याल से उनका टाइम जो है वो अप हो गया है. और खैर देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में. एनीवेज जी, आप लाइव कॉल में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपकी कॉल जो है अभी हम टाइम टू टाइम प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे. और कुछ मैसेज जो हैं वो गुज़िश्ता ईद मुबारक के हवाले से भी आए हुए हैं, तो थैंक यू सो मच कि आप लोग जो हैं वो मतलब आप तो ईद गुजर गई है लेकिन स्टिल आप विश कर रहे हो, थैंक यू. अच्छा जी, महाजबीन हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए, आपने कहा कि बैलेंस है पैकेज बट आपको सुन के ज़्यादा अच्छा लगता है. लेकिन सुन के अच्छा लगता है लेकिन कभी कभी तो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए ना. सो कभी एक बार तो कॉल करनी चाहिए. अच्छा, फातिमा नूरुल ऐन हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए, आपने कहा मुझे ये बात सुनने को मिलती है कि इतनी ओवर थिंकिंग मत किया करो और इतना गुस्सा मत किया करो. ठीक हो गया, ओवर थिंकिंग और साथ गुस्सा भी, जब इंसान ज़्यादा सोचता है तो कभी कभी उसको गुस्सा आ भी जाता है. लेकिन मेरे ख्याल से कि ये दोनों आपके केसेस जो है ना वो डिफरेंट है कि गुस्सा भी आप ज़्यादा करती हैं फिर तो आपसे कोई बात ही नहीं करता होगा. जो गुस्से वाले लोग होते हैं उनसे तो बहुत कम लोग बात करते हैं, वो कभी कभी ये भी कहते हैं और ये हर टाइम गुस्से में रहता है इसलिए इससे बात नहीं करते, तो या ये गुस्से वाला दिखता है इसलिए इससे बात नहीं करते, ऐसा तो नहीं है कहीं. तो खैर, कुछ आपकी साथ साथ कॉल्स जो है हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं हमारे साथ कॉलर कौन है, कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहा है. सलाम, पहली कॉल ली और वही ड्रॉप हो गई है, तो खैर दोबारा कॉल कीजिएगा. इतनी देर से लाइट्स ब्लिंक करी जा रही थी और समटाइम्स होता है आप कॉल उठाते हो और साथ ही ड्रॉप हो जाती है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, वालेकुम सलाम.
1: कैसे हैं भाई? ठीक है
0: जी. जी मैं ठीक ठाक हूँ. कौन कौन बात करें, कहाँ से बात करें?
1: सर, सरदार अरशद फ्रॉम अहमदाबाद.
0: सरदार अरशद फ्रॉम अहमदाबाद.
1: जी सर.
0: जी अरशद भाई, मुझे बताइए अहमदाबाद का मौसम कैसा?
1: सर मौसम बेहतर है. सर
0: बेहतर है, मतलब गर्मी से बेहतर ही पड़ रही है. इस्लामाबाद में
1: गर्मी है, यहाँ पे नहीं है.
0: कल थोड़ी मतलब दोपहर के टाइम हो जाती है, शाम को और अर्ली मॉर्निंग ठीक रहता है मौसम,
1: पर शाम तो बड़ी सवारी हो जाती है.
0: ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे?
1: तो हम शाम के टाइम ही निकलते हैं ज्यादा मोस्टली.
0: क्या कहना चाहेंगे?
1: सर एक आपने बात की ना, ये जो सीनियर है उनको मतलब आप,
0: अच्छा पहले जो
1: हमारा जो पड़ोसी बोलते हैं ना वहाँ पे तो अभी तक सीनियर चल रहे हैं.
0: अच्छा सुने जो मैंने पहले सवाल किया उसके हवाले से पहले बात कर ले.
1: हेलो
0: जी. जी जो सवाल मैंने किया उसके वाले से कुछ कहना चाहेंगे?
1: सर आपने मूवी का बोला था ना, और दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था आपको ज्यादातर कौन सा मतलब बात सुनने को मिलती है,
0: तो आपको पता है तो बोल देना. अब मेरे से क्यों बार बार रिपीट करा रहे हैं? फर्स्ट कॉलर जो होते हैं ना वो थोड़े एक्टिव होने चाहिए, उन्हें फौरन जवाब देना चाहिए, वो फिर पता पहले कॉलर होते हैं वो आगे लाइन लेके चल रहे होते हैं।
1: सर गुस्से नहीं बोल देते क्यों होती है, नहीं क्यों तैयार करते हैं। दो दो मुझे क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा तनाखियां रहते हैं और ज्यादा गुस्से नहीं।
0: अच्छा ज्यादा गुस्से गुस्सा आता है आपको ये सुनने को मिलता
1: है? जी जी जी बहुत ज्यादा।
0: ओके ठीक है, तो क्यों गुस्सा क्यों करते हैं ज्यादा, किस बात पे करते हैं?
1: सर पता नहीं मैं हो जाते
0: हैं वैसे ही हो जाता है मिजाज में। मैंने कहा मजाज में ठीक है। आप दूसरी बात करें, दूसरी बात क्या कहना चाह रहे
1: हैं? आप कह रहे थे ना जो हमारे ये रेस्ट होनी चाहिए या उनको 20-25 साल से लगी हो, तो हमारे पड़ोसी में हमने देखी वो तो उनकी 60 या अबव है, तो वो भी अभी तक स्टिल वर्क कर रहे हैं सर।
0: लेकिन उनके साथ साथ नए लोग आते रहते हैं ना
1: सर, नए लोगों की लेकिन ज्यादातर उनकी फिल्में जो कामयाब होती
0: है। नहीं उनके नए लोगों की भी कामयाब हो रही है, कितने न्यू टैलेंट है,
1: 1-2 अरब इस तरह का उनका बजट आ रहा है।
0: बजट तो आ रहा
1: है 100 अरब तक।
0: वो तो चले बजट तो जो मर्जी आ रहा है, लेकिन उनमें देखें अगर पुराने लोग भी आ रहे हैं उसमें नए लोग भी आ रहे हैं, मार्केट उनकी बड़ी है लेकिन नए लोग भी साथ साथ मार्केट में आ ही जा रहे हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो वो आते जा रहे हैं, वो कभी उनको रोकते नहीं है।
1: तो हमारे सर आ रहे हैं ना,
0: किधर आ रहे हैं? मुझे तो आप मुझे तो इतने सालों में कोई भी नजर नहीं आया
1: सर। अब असल में जो नए लोग आ रहे हैं फिल्म ज्यादा फ्लॉप हो जाती है।
0: अभी मेरे दोस्त नए आए हैं जो कि ज़ॉम्बी में विलन है, तो और तो मुझे नया कोई नजर नहीं आया चेहरा उसके। नहीं मुझे तो कोई भी नया चेहरा नहीं नजर आया, सारे
1: 2 साल पुरानी आप देखे ना तो उसमें वो काफी नई।
0: कौन सी कोई नाम ले
1: सर? एक जुवेची का बेटा है।
0: अच्छा आप देखें उनके कितने ड्रामे आ चुके हैं, उनको कब से लोग जो है ड्रामों में देख रहे हैं, देख रहे हैं या नहीं देख रहे?
1: ड्रामों में तो देख रहे हैं,
0: तो वही वो पुराना चेहरा ही हो गया ना। और ड्रामों वालों को कभी भी मूवी में नहीं आना चाहिए, मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूँ। जो मूवी वाला बंदा होता है उसे मूवी करनी चाहिए, जो ड्रामा वाला बंदा उसे ड्रामे करने चाहिए।
1: हमारे यहाँ तो सब कुछ हो रहे हैं,
0: बस वो क्योंकि थोड़े लोगों के साथ से काम करवा रहे हैं ना। ठीक है चलें अरशद भाई, थैंक यू, अब तो ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप होगी, चलें कोई बात नहीं। 051-111-111 and 051-920-2540। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुजर गई ईद भी गुजर गई, मैं कैसा हूँ ये भी बता दिया, नेक्स्ट बात करें, नाम बताएं कौन कहाँ से बात करिए और अगली बात। जी जारा क्या कहेंगे आप?
2: मेरे बारे में लोग ये ओपिनियन देते हैं और मेरी अपनी अम्मी भी यही कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत बाइखलास है और इसकी वजह से मेरी पूरा मतलब तारीफें भी होती हैं जो मेरी गैर मौजूदगी में होती हैं, और उसके अलावा ये है कि मेरी अपनी बहन के साथ लड़ाई भी हो जाती
0: है। इस बात पे क्यों लड़ाई होती है?
2: क्योंकि मैं दोस्तों के साथ देती हूँ तो जिसकी वजह से वो मुझे कहती है सब हमारे लिए तो दोस्त है और कोई भी नहीं है।
0: अच्छा
2: भाई अगर जो हक पर उसका साथ देने में कोई बुराई तो नहीं होती?
0: नहीं होती, लेकिन आपके जो जिस फैमिली मेंबर्स हैं सारी बात है वो सोचते हैं कि यार ये क्या बात हुई, ये तो एक नेचुरल सी बात है।
2: लेकिन फिर भी मुझे लगता है हक का साथ देना चाहिए चाहे कुछ भी हो।
0: देना तो चाहिए लेकिन बस वो एक नेचुरल सी बात है कि हर कोई जो है इस चीज़ को फील करता है जो आपके अपने होते हैं, ये दूसरे को सपोर्ट क्यों कर रहा है, लेकिन लेकिन बिल्कुल हक का साथ देना चाहिए।
2: जी लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अब कोई मेरा फेवरेट नहीं है या कोई मेरे मेरा नहीं मतलब मेरी फैमिली का, लेकिन वो हक पर है अगर मैं इसको सपोर्ट करूँ तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है?
0: नहीं नहीं इसके बारे में बात कर चुका हूँ, बिल्कुल उसमें कोई बुराई नहीं है। और क्या कहना चाहेंगे आप?
2: और ये कि मेरी फोटोग्राफी टेस्ट गुजरी है और मुझे उम्मीद थी कि आप नहीं आएंगे इसलिए मैंने भी नहीं ज्वाइन किया था।
0: ठीक है, एफर्ट बहुत ज्यादा थी इसलिए फिर मैं नहीं आया। मैंने कहा यार बहुत ज्यादा एफर्ट है, मैं इतनी दूर गया हुआ था, इतनी दूर से घर जाना पड़ा था, अपनी गाड़ी पकड़नी पड़ी थी, फिर वापस आना, मुझे करते करते 2 बज जाने थे।
2: और जैसे एफर्ट से इतना वो पता नहीं मजा नहीं आता, ये टेस्ट नहीं आता, ये तो शुक्र है आप हैं जिनकी वजह से मैं आ जाती हूँ और कुछ और प्रेजेंटर था, नहीं तो उनकी वजह से आती हूँ। अदरवाइज लाइफ इतनी बोर हो चुकी है कुछ समझ नहीं आता कि आप क्या करो और क्या नहीं, लेकिन फिर भी मैं खुद को आपकी स्टूडेंट हूँ तो इसलिए मैं खुद को काफी हद तक बोर होने नहीं देती, बल्कि मैं जो लोग बोर हो रहे होते हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत मोटिवेट करती रहती हूँ।
0: चले अच्छी बात है, चले थैंक यू ज़ारा, आपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया,
2: थैंक यू भाई, खुश रहना,
0: अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। और भाई जी ज़ारा थी हमारे साथ और इनको ज़्यादातर तारीफ़ सुनने को मिलती है, तो क्या बात है, आपको तारीफ़ सुनने को मिलती है और सारे आपके बारे में कहते हैं कि आप जो हैं वो बाखलाक हैं। चले जी आपके मैसेज भी साथ साथ मेरे पास आ रहे हैं और उमेर बलोच हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं डी जी खान से, और आपने मुझे ये बात सुनने को मिलती है कि आप इतने मतलब भी क्यों अच्छा, लेकिन मैं आज तक किसी से मतलब नहीं निकाला, लेकिन यार उमेर कोई कोई तो बात होगी, अगर लोग कहते होंगे कुछ तो होगा, लोग वैसे तो नहीं कहते, तो अगर अगर इर्द गिर्द के लोग या फैमिली मेम्बर्स ने कोई बात देखी होगी तो वो कहते होंगे। सो खैर ये आप बेहतर जानते हो उस बारे में, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन बड़ी बात है आपने वैसे ये बात बताई है, तो लोग तो इस तरह की बातें बताते भी नहीं है कि लोग इस तरह मेरे बारे में कहते हैं। अच्छा खैर जी, इसके अलावा हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है नानी रावलपिंडी से, आप कह रहे हैं कि मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझे कहते हैं जिनमें मेरे ज़्यादातर दोस्त हैं कि तुम खाते बहुत ज़्यादा हो, कोई बात नहीं खाना चाहिए यार, लेकिन इतना भी नहीं खाना चाहिए कि बस खाते ही रहो, बस ज़िंदगी में खाते ही रहो और कुछ करो ही ना, बाद में फिर आपको आफ्टर 40s जो है वो अपने ऊपर बहुत सारे पैसे लगाने पड़ जाएँ। ठीक है, साथ साथ कॉल्स भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो,
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम,
0: वालेकुम सलाम
3: जी, मैं लाहौर से रिमशा,
0: रिमशा फ्रॉम लाहौर जी, कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं
3: जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप भी बिल्कुल ठीक होंगे।
0: क्या कहना चाहेंगी,
3: मैं टॉपिक पे यही कहूंगी भाई, मुझे सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना वो यही कहते हैं कि तुम किसी के साथ बैठती नहीं हो, बातें नहीं करती और तुम बहुत कमजोर हो गई हो, ये सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है,
0: बातें नहीं करती इसलिए कमजोर हो गई हो,
3: नहीं नहीं मुझे ज्यादातर यही बातें सुनने को मिलती है, अगर कोई मेहमान आ जाए हमारे साथ नहीं बैठती, मुझसे बातें नहीं करती।
0: नहीं तो क्यों, मेहमानों के साथ क्यों नहीं बैठती,
3: मन नहीं करता,
0: क्यों क्या वजह है इसकी,
3: वजह ये है कि वैसे बस ना मतलब मैं जॉइंट फैमिली में ज्यादा पली रही हूँ ना, तो मुझे अकेलापन ज्यादा पसंद रहता है, शोर शराबा ज्यादा अच्छा नहीं लगता।
0: ओके ओके ठीक है,
3: और कहते हैं कि तुम बहुत कमजोर हो गई हो, खाया पिया करो,
0: तो खाया पिया करे ना, आजकल तो लोग जो है वो बहुत ज्यादा तो नहीं खाते लेकिन खाते जरूर है,
3: नहीं नहीं खाती तो हूँ लेकिन उनको लगती हूँ ना क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ ना,
0: ठीक है
3: जी, तो इसलिए कहते हैं कि तुम भी खाया करो,
0: ठीक है,
3: जो मैं खाती तो हूँ लेकिन अब खाया पिया लगता नहीं तो मेरा क्या कसूर है,
0: जो आप खा करे ना, क्या आप कमजोर हो गए हो, खाया करो, आप उनको खा जाया करो,
3: मैं उनको खा जाया करूँ,
0: हाँ
3: कैसे बात कर रहे दिमाग,
0: जो मर्जी उनको ही खा जाए ताकि वो बात ही ना कर सके,
3: हाँ ये है कि मैं उनको कहने का आप लोग पहले अपनी सेहत तो देख लो, फिर उनको ही कहने लग जाती है, मैंने कहा मुझे छोड़े, मैंने कहा आप ही तो समाती हैं, आप लोग खाए करें, मैंने कहा मुझे छोड़ दें,
0: ठीक हो गया, चले और कुछ कहेंगी आप,
3: और आपको गुजरी ईद बहुत बहुत मुबारक हो,
0: आपको
3: मई का महीना क्यों नहीं अच्छा लगता,
0: नहीं अच्छा नहीं लगता, ये इस बार मई में ऐसा हुआ है कि महीना खत्म ही नहीं हो रहा था,
3: अल्लाह नहीं वैसे ये मई का महीना बहुत अच्छा होता है, मौसम अच्छा रहा है, ठंडा ठंडा,
0: नहीं मैं मौसम की बात नहीं कर रहा, मतलब कि महीना खत्म नहीं हो रहा था,
3: ओके यानी आपको ये बहुत लंबा लगा,
0: यस मुझे ऐसा लगा पूरा साल गुजर गया मई खत्म नहीं हो रहा,
3: ये बिल्कुल खत्म हो चुके अब, और आप आपने फिर से कोर्स नहीं किया आवाज अपनी,
0: क्या नहीं किया
3: क्या, आप ठीक है,
0: मैं नहीं ठीक इसलिए इसलिए
3: आपका
0: नहीं
3: शोल्डर कैसे,
0: कुछ हद तक ठीक भी है कुछ हद तक नहीं भी है,
3: ओके चलिए आप जो अभी थोड़ा फर्क है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, और आपकी कैसी गुजरी है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक गुजरी है आपकी,
0: हाँ हाँ मैंने भी सारा
3: थकन नहीं महसूस हुई आपको इस बार,
0: नहीं बहुत ज्यादा नहीं,
3: सही है।
0: वो थकन आपको उस टाइम महसूस होती है जब आपके किसाई वाली किसाई जो है ना वो टाइम पे ना आए या टाइम ज्यादा लगाए और इस तरह के मामला हो, बस फकर इसलिए थी।
3: भाई मैंने सबसे ज्यादा सुना है कि कसाई जो है ना बहुत कम बुलाया, लेकिन लोग खुद ही कसाई बने।
0: पता नहीं उनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे नेबर्स जो है उन्होंने बस ये कमिटमेंट की थी कि सुबह 4:30 बजे स्नैन मैंने आपको कॉल करना शुरू कर देनी है, फजर के टाइम जो है। मैंने कहा क्या बात करे 4:30 बजे, और वाकई
3: तो ईद की नमाज के बाद ही होती है ना।
0: नहीं नहीं मैं दूसरे दिन की बात कर रहा हूँ। तो वो यकीन करें कि 4:30 के ऊपर उनकी कॉल मुझे आना शुरू हो गई, और मैं सोया ही 2 बजे था, तो फिर बस उठना पड़ा। बस बिल्कुल चले ठीक
3: हो गया है ना, गर्मी में ये है कि टाइम से अगर फ्री हो जाए तो फिर काम जल्दी, सुकून भी मिल जाता है, आराम भी मिल जाता है।
0: बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू रिमशा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए।
3: ओके ओके अल्लाह हाफिज।
0: अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
4: हमदा फ्रॉम जर्मनी।
0: कौन?
4: हमदा फ्रॉम जर्मनी।
0: हमना?
4: यस
0: हमना फ्रॉम। ठीक है, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं
4: अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक हूँ। टॉपिक तो मैं ये कह रहे चाहूंगी कि मुझे ये सुनने को मिलता है कि तुम खामोश बहुत है, और तुम्हारे मुंह पे जुबान नहीं है।
0: ये जर्मनी जाके सारे लोग खामोश हो क्यों जाते हैं, मुझे बताएं।
4: बस वैसे ही मेरा दिल ही नहीं करता बोलना, खामोश रहती
0: हूँ। कब से जर्मनी में कब से रह रही हैं आप?
4: शुरू से, यानी कि सारी फैमिली जर्मनी की है।
0: जर्मनी में कहाँ पे होती हैं आप?
4: दिल्ली।
0: ओके मैंने देखे मेरे जितने
4: बात की है मैंने आपको।
0: ओके
4: आपकी देर से सुन रही हूँ, मैसेज कभी भी नहीं करती।
0: ओके कब से सुन रही हैं आप?
4: मुझे 1 साल हो गया आपको सुनते।
0: ओके
4: खामोशी से सुनती हूँ, देखे आपसे भी नहीं बात करती, बोलने ही नहीं आता मुझे, बात ही नहीं करनी आती किसी।
0: नहीं क्यों, आप जब लोगों में बैठी होती हैं और लोग आपसे कहते हैं कि बोलती क्यों नहीं हो, या आप खामोश जब रहती हैं तो आप क्या सोच रही होती हैं उस टाइम?
4: बस कहती हूँ मुझे बोल ही नहीं आता, मैं ये सोचती होती हूँ मुझे क्यों कह रहे हैं बोल, बस मुझे तो मुझे चुप रहने दे।
0: चुप रहने दे बस, मुझे छेड़े ना बस। देखा जब कोई तंग करता है तो फिर ये बोलती है। फिर इनको इनके जानने वाले जान के तंग करते होंगे कि वो बोले
4: जान छेड़ती है कि तुम बोलो बोलो, जो फिर बोलती हो तो उनको छोड़ती नहीं।
0: क्या क्या क्या आपको कैसे तंग करती हैं कि आप बोलना शुरू कर दें?
4: बस इधर उधर की बातें फजूल की शुरू कर दे, की वाली जिन बातों से मुझे नफरत है वो बातें शुरू स्टार्ट कर दे, ये इधर हो गया तो इधर हो गया, मुझे गुस्सा आता
0: है। नहीं तो कभी ऐसा हुआ कि अपने दोस्तों से नाराज होकर चली जाए आप, गुस्सा आ जाए?
4: हाँ होता है ऐसा, कभी वो फिर मनाती है आके यार मान जाओ प्लीज, मेरे को मेरे जाती नहीं सकती हो आप।
0: ओके ठीक हो गया,
4: मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात, मुझे यकीन नहीं आ रहा आपसे बात हो रही है।
0: नहीं इसमें कौन से कोई बहुत ही कोई रॉकेट साइंस है कि यार मैं आपको यकीन नहीं आ रहा
4: है। आपको मैंने कभी आपका प्रोग्राम मिस नहीं किया, सुनती हूँ।
0: ओके चले ये हमें आज पता चला कि आप सुनती हैं,
4: मेरी फ्रेंड भी सुन रही है आपको।
0: मैं इसलिए तो कहता हूँ कभी 1-2 बार कॉल करके बताना जरूर चाहिए कि हम सुनने वाले हैं।
4: ये इसमें बताती नहीं हूँ, बिल्कुल मैं बताती कि मैं सुनती हूँ, मैं खामोश सुनती हूँ, मुझे बात ही नहीं जब करनी,
0: बात नहीं करनी आती। 2 मिनट बात कर लिए कह रही है मुझे बात करनी नहीं आती।
4: और मुझे बहुत अच्छा लगा आप मेरी कॉल पिक की।
0: चलें थैंक यू वेरी मच हमना, आपका ख्याल रखिए।
4: सैम भाई अनिला आप की बर्थडे है, मैं कहूंगी हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है?
0: Okay.
4: और दीमशा को भी मेरा सलाम है, ठीक है? आपके लिए बहुत सी दुआएं, थैंक यू।
0: चलें थैंक यू अल्लाह हाफिज।
4: अल्लाह
0: हाफिज। जी अनिला की बर्थडे है, अनिला हैप्पी बर्थडे एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अस्सलाम वालेकुम।
5: कितना
0: फाइन?
5: फाइन जितना भी लगा लो।
0: अच्छा सोच लो,
5: आप बोल दो, डिमांड आपकी होनी चाहिए भाई। मैंने तो कह दिया ना कि भाई सॉरी मेरे ऊपर फाइन लग गया, बस मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बोल दिए मैंने।
0: चले छोड़े, अपना नाम बताएं, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
5: मैं अफीज जामशोरों से बात कर रहा हूँ, और जो है ना क्या नाम है, बिल्कुल फिट फाट मौसम है, जबरदस्त लश प्रोग्राम कर रहे हो ना, माशाल्लाह कॉलर भी आके जबरदस्त है, लेकिन आज एक इम्तिहान में आप फेल हो गए।
0: कौन से इम्तिहान में?
5: वॉइस इंडिया में फेल हो गए। एक शख्स आपसे पूछ रहा है कि भाई महीने का मई का महीना बड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपको आपने उसकी बात समझी नहीं।
0: नहीं नहीं, मैंने क्यों नहीं समझी, मैंने बेसिकली इस सवाल का जवाब डिटेल में ना प्रोग्राम के शुरू में दे दिया था।
5: अच्छा, इसलिए मैं नहीं, असल में क्या है, ये बड़ी प्यारी कॉलर है, समझे ना, वो मई की बात आपको इसलिए समझा रही थी कि 25 मई को उसकी मंगनी हो गई।
0: अच्छा, मुझे किसी की पर्सनल लाइफ का नहीं पता होता।
5: हाँ, वो तो नहीं पता तो हमें भी नहीं, लेकिन बस जो है ना, हम बता रहे हैं ना आपको, कॉलर है, हम फैमिली चैनल है, सारे बहन भाई है, लाजमी है एक दूसरे की खबर तो रखनी चाहिए ना।
0: अच्छा नहीं, मुझे इस चीज़ का पता नहीं होता, और मैं कोशिश करता हूँ ना अपनी बहुत ज्यादा पर्सनल लाइफ के बारे में मैं ऑनर बात करूँ ना ही मैं।
5: सही बात है, किसी की प्राइवेसी नहीं हो वो करनी चाहिए जो ना, लेकिन ये है कि माशाल्लाह जो ना अच्छी बात है, अगर एक इंसान की जिंदगी अगर उसकी लाइफ अच्छी इज्जत के साथ गुजरे तो वही, इससे बढ़कर तो कोई अच्छी बात नहीं है ना।
0: चले, आप मुझे बताएं कि इर्द गिर्द के लोग या फैमिली मेंबर सबसे ज्यादा आपको क्या बात कहते हैं?
5: यार गुस्सा उस बात पे आता है जब कोई दोस्त जो है ना,
0: गुस्सा कहाँ से आ गया, गुस्सा की तो बात ही नहीं की। देखा आपने, सवाल नहीं सुना ना।
5: जी
0: नहीं सुना ना सवाल,
5: इसलिए मैं लिख पे सुन रहा था। असलम भाई, अभी चैनल जो है ना अभी ऑन हुआ है हैदराबाद का, मैं असल में अभी तक जो ना लिंक पे सुन रहा था आपको।
0: अच्छा चले, वो अगर आप सुन के कॉल कर लेते तो वो ज्यादा अच्छा हो जाता।
5: चलो इंशाल्लाह ताला, तो बस आपसे बात हुई ये भी हमारे लिए बड़ी इज्जत अफजाई की बात है। बस मेरी तरफ से जो ना अभी जो तीनों बहने आई थी उनको मेरी तरफ से जो ना सलाम, भाई जो आए थे।
0: अच्छा, सुने ना, सुने कॉल ड्रॉप। देखिए, मेरे प्रोग्राम का एक असूल है कि क्रॉस टॉक नहीं करनी, क्रॉस कमेंट नहीं करना, ठीक है? आना है, अपनी बात करनी है और चले जाना, ठीक है? और आप देखें, प्रोग्राम में रेगुलर कॉल भी करते हैं और आपको पता भी है चीज़ों का, फिर आप वही बात कर रहे हैं, इसको भी सलाम दे दो, उसको भी सलाम दे दो। देखिए, मैं मैसेंजर नहीं हूँ, ठीक है? मैं इधर प्रोग्राम करने आता हूँ, मैं मैसेंजर नहीं हूँ, ठीक है? मैं इधर का मैसेज उधर करने नहीं, बहुत सारे चार्जेस करते हैं, मुझे पता है, मैं भी ड्राइव करते हुए सुन रहा होता हूँ, लेकिन एटलीस्ट आई एम नॉट अ मैसेंजर, ठीक है? कि मैं इधर का मैसेज उधर कन्वे करूँ, इधर का उधर का, ये करने मैं नहीं आता, ठीक है? और कॉल्स आई जी, इस कॉलर को कहना मैं सलाम दे दें, लिस्टर को सलाम दे दें, उनको मेरा मैसेज दे दें, ये कन्वे कर दें, मैं ये करने नहीं आता। तो मेरे प्रोग्राम के ना मेरे रूल्स हैं, ठीक है? क्रॉस टॉक नहीं करनी, क्रॉस कमेंट नहीं करना, आपने आना है कॉल पे, अपनी बात करनी है और चले जाना। सो बुरा नहीं मनाना, लेकिन रूल इज रूल। तो एनीवेज जी, बात ये है कि सवाल मैंने आपसे किया, मुझे बताएं कि इर्द गिर्द के लोग और या आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं सबसे ज़्यादा आपको क्या बात कहते हैं। सो 051111111 एंड 051920225240 एंड साथ आप SMS सेंड कर रहे हो 101 एक्सप्रेस, मैसेज नाम शेयर करना, लिखकर चार चार साथ एक पर साथ www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर। कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है, कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम,
6: वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है
0: जी? अल्हम्दुलिल्लाह, कौन कहाँ से बात करें?
6: अब्दुल नूर हाशमी, रिवाज गार्डन लाहौर से।
0: जी हाशमी,
6: तो आपको गुज़श्ता ईद मुबारक।
0: खैर मुबारक।
6: अब टॉपिक पे आता हूँ। तो मेरी जिंदगी जो झूठ जो है ना, मुझे ये सब ना पसंद है, और मेरे बारे में लोग कहते हैं ये बड़ा फट है ये।
0: अच्छा,
6: ये मतलब दिल में बात नहीं रखता, जो होता है होता है वो बयान कर सकता है।
0: अच्छा,
6: यहाँ एक मैं बात की थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। निशान भाई का कंबाइन शो हो रहा था, प्यासर अली सैयद भी थे।
0: छोड़ देना, दूसरे शोज की नहीं बात करें ना,
6: ईद का शो।
0: अच्छा सुन लेना, दूसरे शोज की नहीं बात करें ना।
6: नहीं, यहाँ एक कॉलर आई थी ना,
0: देखिए फिर वही कॉलर,
6: जर्मनी से आई हूँ।
0: देखिए अच्छा सुन लेना, देखिए फिर वही बात हो रही है।
6: उससे एक बात भी मतलब प्यार नहीं हुई, तो रेडियो पे आके झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये अभी कॉलर आई थी ना, हम ना
0: देखिए मैं अभी कॉल ड्रॉप करूंगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा।
6: जी
0: मैंने कहा मैं अभी कॉल ड्रॉप करूंगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। यार गलत बात है ना, देखो अभी आपकी कॉल से पहले मैंने 5-8 मिनट बोला इस चीज के ऊपर, और अब नेक्स्ट कॉलर आके मतलब आप तो यार प्रोग्राम में रेगुलर कॉलर हैं आप भी, तो देखिए मेरे लिए बहुत आसान है मैं कॉल देना बंद कर दूं, ठीक है मेरे लिए बहुत आसान है, ठीक है मैं दो घंटे बोल भी सकता हूं, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं कॉल्स बंद कर दूंगा, जितने मेरे कुछ शोज रह गए हैं मैं कॉल्स के बगैर कर लूँगा, ठीक है लेकिन अगर आप बात नहीं मानेंगे फिर उन प्रेजेंटर्स के लिए प्रोग्राम में आप जाकर पार्टिसिपेट करें जो इन चीज़ों को टॉलरेट करते हैं, ठीक है और एटलीस्ट मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है कि आप दूसरे कॉलर्स के ऊपर आके बात करना शुरू कर दें, यार अपनी इंसान की इतनी बातें होती हैं, इंसान अपनी बातें नहीं करता, मैं सवाल प्रोग्राम में इसलिए रखता हूँ, मेरा जब से मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया मैं प्रोग्राम में इसलिए सवाल रखता हूँ कि जो भी कॉलर आए वो उस सवाल का जवाब दे, वो ये ना कहे यार मैं क्या बात करूँ, वो ये ना कहे यार इसके ऊपर बात करनी उसके ऊपर बात करनी, उसको एक डायरेक्शन है कि ये डायरेक्शन है इसकी इस तरफ आपने चलना है, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे करेंगे तो मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है तो आई डोंट नो आप लोग शायद जान के ये बात ये काम करते हैं, आपको मजा आता है ये करके, आप जान के कॉल करते हैं, आप कुछ लिसनर्स ऐसे हैं जो एसएमएस भी सेंड करेंगे, वो कॉल भी करेंगे, एसएमएस भी उनका पढ़ लिया जाएगा उसमें भी वही जवाब होगा, कॉल करके भी वही जवाब देंगे, तो वो मतलब कि इस तरह निज़ाम चल रहा होता, खैर क्या कह सकते हैं, और अगर अभी कोई कॉल ऐसी आई तो वहाँ पर मैंने कॉल जो है लेना छोड़ देनी है, ठीक है सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ अगर आपको आप अगर किसी चीज़ को आप इंजॉय कर रहे हो करते हुए और वो रूल्स के ख़िलाफ़ है तो मैं उस चीज़ को ही ख़त्म कर दूंगा, ठीक है तो फिर बाद में मुझे ये नहीं कहना कि नहीं नहीं ऐसा आप कॉल्स क्यों नहीं लेते, फिर वो देखें प्रेजेंटर्स अच्छे होते हैं जो नाम सुनते हैं और जैसे ही वो पता चलता है ना कि इस बंदे ने इधर उधर किया है वो कट करके कॉल ड्रॉप कर देते हैं, चाहे वो पुराना कॉलर हो चाहे नया कॉलर हो, फिर आप कहते हैं यार कितना बदतमीज़ है, वो काम मुझे आते नहीं है, ठीक है तो अच्छा है कि ना मैं आप चीज़ों को फॉलो करें, आप देखें ना 10 मिनट इसी पे ज़ाया हो गए सिर्फ किस लिए कि आप लोगों ने उस बात को माना नहीं, आप जो लोग प्रोग्राम सुनते हैं गौर से सुनते हैं हर चीज़ पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, अब वो लोग सोच रहे होंगे यार कि किस तरह के कॉलर्स आ रहे हैं, तो एनीवेज जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो वालेकुम सलाम, जी नवीद भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप,
7: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप सुनाएं सर क्या हाल चाल है, तबीयत सर ठीक है,
0: जी जी अल्लाह का शुक्र है, क्या कहना चाहेंगे
7: सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने पूछा ना सवाल पूछा तो दुनिया आपको क्या कहती है,
0: जी नवीद भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप,
7: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप सुनाएं सर क्या हाल चाल है, तबीयत सर ठीक है,
0: जी जी अल्लाह का शुक्र है, क्या कहना चाहेंगे
7: सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप

0: यकीन करें भाई लोग, जो आप मैं मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे भी कुछ बताता है तो चेकअप करवाने के लिए भी जाता हूँ, लेकिन मेरी दिल से कोशिश यही है इंशाल्लाह ताला मुझे दोबारा अल्लाह ताला सेहत याब करेगा और मैं अपनी मजदूरी करके दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होऊंगा
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
0: मैंने तो यही सोचा, मैंने कहा दुनिया में कहती रहती है कोई बात नहीं, अपने आप को मोटिवेट करो।
1: हाँ बिल्कुल, चाहे कुछ भी जिंदगी में हो जाए ना, अब मोटिवेशन कभी खत्म नहीं करनी। देखो जिंदगी किसी टाइम भी बदल सकती है, एक सेकंड लगता है, ठीक है, एक सेकंड लगता है जिंदगी अल्लामिया बदल देते हैं। और
0: हाँ तो मैं भी उनको यही कहता हूँ, ये सिर्फ दिनों का हेर फेर होता है और कुछ भी नहीं होता, ये अच्छे मोड़ दिन आते रहते हैं इंसान की जिंदगी में, नीति होता रहता है।
1: ऐसा ही है
0: तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने देश की जान से पूरी कोशिश करूंगा, मेरा दुनिया पे कोई यकीन नहीं है, मेरा अल्लाह पाक इतना यकीन है मुझे, मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला मुझे दोबारा फिर तंदुरुस्ती देंगे इंशाल्लाह।
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले थैंक यू नवीद, अपना ख्याल रखिएगा।
0: ठीक होगा सर, अल्लाह हाफिज, आप भी मेरे लिए दुआ करिएगा और सुनने वाले भी मेरे लिए दुआ करना।
1: ऑल राइट जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
1: जनाब, कौन कहां से?
2: मुंबई के राजी को बात कर रहा हूं लाहौर से।
1: चीकू फ्रॉम लाहौर, चीकू कैसे हो?
2: जबरदस्त फिट पार्ट। हाँ बताएं आप कैसे हैं? दुरुस्ताई मुबारक।
1: खैर मुबारक, क्या कहना चाहोगे?
2: बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते आपने।
1: मैंने कहा देर कर दी
2: जी, काफी शोज आपने किए हैं ना जी सर।
1: मैंने कब काफी शोज नहीं किए, मैंने सिर्फ एक शो नहीं किया, बाकी सारे तो मैंने किए। वो आप नहीं थे ना शो में?
2: फिर हो सकता है मैंने उसी दिन ट्यून किया जिस दिन आप नहीं आए।
1: बस ऐसा ही हुआ।
2: बस ऐसे ही है। तो पहली बात यह है कि लोग बड़ा कुछ कहते हैं, बट पहले जो है ना मेरे अंदर एग्रेशन बहुत था, मैं जो है ना रिस्पॉन्ड बहुत जल्दी कर देता था, जवाब देता था। बट पिछले कुछ टाइम से मे बी आई थिंक ढाई साल से मैंने जो है ना वो खामोश रहना शुरू कर दिया।
1: ओके,
2: ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता किसी की बात पे, चाहे वो अच्छी बात करे बुरी बात करे, तो उसे कहता अच्छा ठीक है यार कोई बात नहीं। तो अब आगे वो ये कहते हैं वो ठीक है, तो असर ही नहीं होता किसी गल का। मैं कहा चलो ठीक है, तो बस पे ठीक ही सही।
1: अच्छा
2: ये आप लोग खुश,
1: ये चेंज क्यों आई है?
2: चेंज इसलिए है कि बहुत एक्सपीरियंस कर लिया लोगों को।
1: क्या एक्सपीरियंस किया?
2: मतलब बना के भी देख लिया और लोगों के साथ उनका होके भी देख लिया।
1: अच्छा,
2: और मिला एंड में क्या है, सिर्फ वो जो कहते हैं ना एक रुसवाई या बेवफाई, या इवन समझ ले के कोई काम भी किया या कुछ भी किया, मिलना जुलना इवन फैमिली टर्म्स भी जिनके साथ, तो वो आगे से इस तरह के निकले हैं कि बस इधर की उधर, उधर की इधर। तो इसलिए जो है ना बहुत ज्यादा अब मैं जो है ना खामोशी इख्तियार करता हूँ, तो उसमें जो है ना मुझे बड़ा सुकून रहता है, बड़ा सुकून मिलता है।
1: तो वो सारे पूछते हैं कि खामोश क्यों?
2: पूछते हैं, लेकिन वो जो है ना क्या कहते हैं, मेरे कुछ कजन्स हैं, तो वो उन्होंने मुझे जो है ना बड़ा इस काम में मेरी बड़ी हेल्प की है कि आप कुछ भी कहते हैं ना आपको, तो आप बेहतर ये है कि आप ना कुछ जगह पे ना खामोशी इख्तियार कर लो, अगर आपको लग रहा है ना कि आप सही हो दूसरा गलत है और आपको दूसरा आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे कहो यार ठीक है भाई तू ठीक है, मैं गलत हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, माजरत चाहता हूँ, आप सही है, आप ठीक है, तुम जीते हम हारे। तो इससे ये क्या होगा, चलो उसको तो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, लेकिन आपको पता है ना कि आप कहाँ दुरुस्त हो और कहाँ नहीं। आपकी गलती भी है तो आप भी एक्सक्यूज कर लो, अच्छी बात है, नहीं भी है अगर सही भी हो तो वो दूसरा कह रहा है नहीं जी तू ही गलत है, फिर भी बेहतर यही है कि आपको नहीं ठीक है आप ठीक है मैं गलत हूँ कोई बात नहीं।
1: ठीक है,
2: चीजें मैं आपको पाया कि बहुत ज्यादा, एक तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस आया, पहले पेशेंस नहीं था मेरे अंदर, मैं बहुत ज्यादा बहुत जल्दी रिएक्ट करता था किसी भी बात पे, किसी भी काम पे एग्रेशन बहुत ज्यादा था, वो एग्रेशन को अपने अंदर से कम किया है और पेशेंस अपने अंदर पैदा की है, तो इस वजह से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है एक मेंटली भी सेटिस्फाइड और दिली तौर पर जो है ना बड़ा सुकून है। और कुछ लोग ऐसे हैं मेरे साथ जो जुड़े हैं, तो उनके साथ बैठ के तो बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छी गैदरिंग है,
1: ठीक,
2: बहुत कुछ सीखने को मिला।
1: ठीक हो गया, चलो थैंक यू चीकू प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए।
2: थैंक यू सैंडी और अनिला भी की बर्थडे, उनके लिए बेस्ट विशेस, अल्लाह ताला उनको जो है ना लंबी और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए।
1: ओके, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट जी, अभी कॉल्स हमारे पास आ रही हैं 0511111 एंड 0519202540 पर, मुझे भी एक सॉन्ग प्ले करना है और नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यू किया हुआ है अली जफर और ताउला खानी सखेल भी की आवाज में, सो ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा। मेरा नाम हुसैन रज़ा है, आप सुन रहे हैं FM 101 इंटरनेशनल सामा स्टूडियो से।

0: ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक टू एफएम मोनो इंटरनेशनल में. आप मुझे प्रोग्राम में बता रहे हो कि आपके इर्द गिर्द के लोग और आपके फैमिली मेंबर्स जो है सबसे ज्यादा आपके बारे में क्या बात कहते हैं. सो 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर आपके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं. इसके अलावा www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान और आपकी लाइव कॉल 051111111 एंड 051920254 पर. अच्छा, अमरीन का मैसेज हमारे पास. आपने कहा मेरी छोटी बहन नूर को सालगिरह विश कर दें. हैप्पी बर्थडे नूर एंड मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. अच्छा, फातिमा नूर उलैन हमारे साथ. आपने कहा कि ये जो अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं है ना, कि बात करने के बारे में लोगों को सवाल करने नहीं आते, विच इज़ बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ अवर सोसाइटी एंड आई गॉट टू नो अबाउट इट रिसेंटली इन माई लैंग्वेज कोर्स. देखो, समटाइम्स ऐसा होता है कि लोगों को सवाल करने आते हैं लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता कि वो किसी से सवाल कर सकें. एक फैक्टर ये भी होता है और एक ये भी होता है जो आप कह रही हैं कि उनको सवाल आते नहीं हैं करने. तो अब दोनों चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं, और जो सवाल करते हैं वो इतने सवाल करते हैं कि उनके सवाल ही ख़त्म नहीं होते. तो आप बेशक देख लें, इसकी एग्ज़ाम्पल जो है आप ऐसे देख सकते हैं जिस तरह आप एक क्लासरूम में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं. अब यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टीचर से सवाल पे सवाल करते हैं अगर उन्हें समझ ना आए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो सवाल करना चाहते हैं वो नहीं करते, वो उनमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि यार वो टीचर से वो सवाल कर लें. वो फिर दूसरे से कहते हैं यार तुम ये सवाल पूछ लो, और बहुत सारे फिर खामोश रहने वाले होते हैं. उनमें बिल्कुल ये क्वालिटी नहीं होती है कि वो कोई बात कर सकें. अच्छा, आयशा बतूल हमारे से लाहौर से. आपने कहा यही सुनने को मिलता है कि मैच्योर हो जाओ. ओके, आप मैच्योर नहीं हैं और आपको सुनने को मिलता है मैच्योर हो जाओ. तो हो जाए, अगर इतने आपके इर्द गिर्द सारे लोग कह रहे हैं मैच्योर हो जाओ तो मैच्योर हो जाए ना. और अच्छा जी, सना हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं रावलपिंडी से. और अच्छा, आपको सारे कहते हैं कि फजूल खर्ची कम किया करो. ओके, ठीक हो गया. चलें जी, अभी कॉल्स भी हम साथ साथ शामिल करते हैं 051111111 0519202540 पर, और आपके मैसेज जो है हम कुछ ही देर में मजीद शामिल करते हैं प्रोग्राम में. अस्सलाम वालेकुम. जी गफूर भाई, क्या कहना चाहेंगे?
1: सर ये है कि मुझे लोग कहते हैं कि आप ज्यादा खामोश रहते हैं, बातें कम करते हैं. जब से मैंने रेडियो सुनना शुरू किया सर, तो मैंने थोड़ी बहुत बातें सीख ली है.
0: अच्छा,
1: तो आपसे बहुत मैं सर मुतासर हूँ कि आप इतनी अच्छी बातें करते हैं. और क्योंकि रेडियो एक किताब की शक्ल है, एक यूनिवर्सिटी का काम कर रहा है कि जिसमें हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मिलती है मुख्तलिफ टॉपिक पर. आपके इंतजामिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. आपकी पूरी टीम जिंदाबाद. शुक्रिया शुक्रिया. थैंक यू. पाकिस्तान जिंदाबाद.
0: चलिए, थैंक यू. ऑलराइट जी, नेक्स्ट कॉलर देखते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. वालेकुम सलाम. कॉल जो है ड्रॉप होगी. आवाज बहुत दूर से आ रही थी. मेरे ख्याल से कुछ लाइन में भी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई. एनीवेज जी, दोबारा आप कॉल कर सकते हैं. आपकी कॉल जो है हम दोबारा प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. ये भी ड्रॉप हो गया. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
0: वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से?
2: मैं ना सर साजिदा बात कर रही हूँ.
0: जी साजिदा,
2: तो आपको गुजरी हुई धूमबारी को, क्योंकि आज आपका शो है बीच में नहीं था.
0: तो कैसी रही आपकी ईद? अच्छी रही?
2: आपको मिस किया जी.
0: मैंने कहा अच्छी रही आपकी ईद?
2: हाँ जी, बहुत अच्छी रही.
0: गुड. तो क्या कहना चाहेंगी?
2: जी मैं कहना चाहूंगी जहाँ जिनके खामोशी हो ना, या ज्यादा खामोशी हो या उदासी हो, तो उधर मैं ना जरा हल्ला गुल्ला कर देती हूँ. ना मैं चुप करके बैठती हूँ, ना बैठने देती हूँ, क्योंकि फनी फनी बातें करके जरा हल्ला गुल्ला करके तो एक तो अगले के चेहरे पे खुशी ले आती हूँ, और अगला खुश होता है ना तो फिर मुझे भी खुशी होती है. तो सारे जहाँ जिनकी जरा टेंशन में बैठे हो या चुप करके बैठे हो ना, ना आज तो कहते लो भाई ये आ गई है, अब इसने चुप करके नहीं बैठने देना हमें. तो मैं कहती हूँ खामोशी मुझे अच्छी नहीं लगती. आप खामोशी क्यों बैठे हो?
0: अच्छा प्रोग्राम का सवाल क्या है मुझे ये बताएं
2: जी,
0: मैंने कहा प्रोग्राम का सवाल क्या है ये मुझे बताएं।
2: आपने क्या पूछा उसका ही जवाब दे दिया
0: है। क्या सवाल है क्या मुझे बताएं,
2: यानी कि आप अपने बारे में जान जाते लोग आपके बारे में क्या कहते हैं।
0: तो मुझे
2: मैं अपना बता रही हूँ ना, मैं किसी को चुप नहीं बैठने देती और लोग यानी कि ये कहते हैं ये चुप करके नहीं बैठने देगी, क्योंकि अगर कोई रोता हो तो टेंशन में परेशान हो जब तक उसके आंसू खुशक ना हो जाए, यानी कि उसको मैं नॉर्मल ना कर दूं, मैं सही गुस्से नहीं होती।
0: अच्छा ठीक है, आप चुप नहीं होती और आप बोलती रहती हैं।
2: नहीं बोलना, एक तो बोलना और होता है
0: शुगल मेरा जिसे हम कहते हैं हंसी मजाक शुगल
2: तो मेरा। तो कर देती
0: उसका। ठीक है सही हो गया।
2: और आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं, सबके लिए बहुत ज्यादा दुआएं, अपना ख्याल रखिएगा।
0: चले थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और जी मैंने साजिदा से इसलिए पूछा था कि मुझे बताएं कि सवाल क्या है प्रोग्राम को, उसकी वजह यार सारे कॉलर्स, मैं हमेशा ये बात करता हूँ यार, सारे कॉलर्स एक ही जवाब दे, वो बातों के वाले से जवाब दे रहे हैं, कोई कह रहा है मैं ज़्यादा बोलता हूँ, कोई कहता है मैं कम बोलता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगा मैंने सवाल ही ये पूछा हुआ है कि आप ज़्यादा बोलते हैं या कम बोलते हैं। तो ये वैसे मेरा हमेशा से गिला रहा है यार, जो एक आंसर आ जाए बस सारे उसको पकड़ लेते हैं, अपना दिमाग नहीं यूज़ करना यार, दुनिया में इतनी चीज़ें यार, मैं क्या कह सकता हूँ यार। अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट जी, कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई और दिमाग की बत्तियों खोलें। अभी देखें एक लिसनर ने कहा कि फजूल खर्ची कम किया करो, ठीक है। एक लिसनर ने कहा कि सारे मुझे कहते हैं खाना बहुत खाते हो यार, डिफरेंट है ना, तो हो सकता है कोई ये भी कहता हो कि यार ड्राइव स्लो किया करो, सारे मुझे कहते हैं ड्राइव स्लो किया करो, हो सकता है कोई कहता हो कि यार कभी नए कपड़े भी पहन लिया करो, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना, बहुत सारे ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है, हो सकता है कोई कहता हो कि यार तुम पैसे खर्च ही नहीं करते, ये भी सुनने को मिलता है। तो तरह तरह की चीज़ें जो हमारी लाइफ में जो चल रही होती हैं, जिस तरह मैं आपको बताऊँ, मेरे तो फैमिली में भी और मेरे दोस्तों में भी एक कॉमन सी बात है जो सारे कहते हैं यार जी जिम लाजमी जाता है, तो मेरे पास तो डिफरेंट आंसर्स होते हैं। एनीवे जी कॉलर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
3: अनीला फ्रॉम लाहौर।
0: जी अनीला कैसी हैं, हैप्पी बर्थडे।
3: थैंक यू सो मच, और जिन लोगों ने विश किया उनके लिए भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
0: तो कैसी गुजरी आपकी बर्थडे, अभी शुरू हुई है या खत्म हो गई है?
3: नहीं
0: इसलिए तो गुजर नहीं रहा था कि आपकी सालगिरह आना आज है, लेकिन
3: इकतीस
0: नहीं ऐसे लग रहा था 131 दिन।
3: ठीक है। वैसे ना कहते हैं ना कि गर्मियों के दिन लंबे होते हैं।
0: नहीं मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं होता, मुझे ना दिन का पता चलता है ना मुझे रात की पता चलती है, लेकिन इस बार मई का बहुत पता चला।
3: इस दफा छुट्टियां कर ली होंगी, छुट्टियां हुई होंगी ना, घर बैठे होंगे ना।
0: नहीं नहीं मैं घर हूँ या ना हूँ, लेकिन बस मई के बारे में बता चुका आपको। ठीक है,
3: ये है कि गर्मियां भी हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि टाइम कितनी तेजी से गुजर रहा है, और आप कह रहे हैं कि मैं ही नहीं गुजर रहा था।
0: नहीं वो तो मैं भी
3: लंबे नहीं है इतने।
0: वो तो मैं भी कहता हूँ कि टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है, साल का पता नहीं चलता, लेकिन ये स्पेसिफिक मंथ जो है वो मेरा स्लो गुजरा, जैसा ही पता चला है कि स्लो गुजरा है। एनीवेज क्या कहना चाहेंगे आप?
3: मैं कह रही चाहूंगी कि मुझे तो कहा जाता है टिक के बैठ जाओ, मैं टिक के बैठती नहीं हूँ।
0: ओके,
3: इधर से मैं गई उधर से मैं उसकी सारी वो मिस्टेक्स दुरुस्त करना शुरू कर देती हूँ।
0: हर टाइम चलती रहती हैं आप।
3: بالکل میں چلتی پھرتی رہتی ہوں.
0: یہ رات کو سوتے ہوئے بھی اٹھ کے نیند میں چل رہی ہوتی ہوں؟
3: نہیں اب خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں, جب میں سوتی ہوں میں سوتی بہت کم, مطلب 6 گھنٹے مشکل سے میں سوتی ہوں.
0: میرے خیال سے ابھی مووی آئی ہے زومبی جو ہے, اس کے اندر کوئی زومبی والا چکر تو نہیں آپ میں؟
3: ہاں رات کو ہو جاتی ہے زومبی 2 بجے کے بعد.
0: 2 بجے کے بعد,
3: 2 بجے کے بعد میں کہیں ہو جاتی ہوں, سو جاتی ہوں تجد کی, وہ مطلب فجر پڑھنی ہوتی اس وقت جاگ لیں, لیکن یہ کہ میں سو جاتی ہوں تھوڑا بیچ میں, لیکن یا میں جاگتی رہتی ہوں.
0: اوکے,
3: تو اس لیے مشکل سے میں 4 یا 6 گھنٹے سوتی ہوں, تو اس طرح سے ٹائم ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ مجھے یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ٹک کے نہیں بیٹھتی, اب دیکھو خدا کے واسطے بیٹھ جاؤ, اب چھوڑ دو تم بچ جائیں گے. بابا چھوڑ دیں, کیا پریشانی ہے, وہ آئے گی وہ کر دے گی. ہاں ہاں نہیں, وہ کر جو گئی ہے نا, وہ کسی کام کا نہیں کر کے, میں خود ہی کروں گی. تو یہ ہوتا ہے, کبھی الماریوں کی شامت آ جاتی ہے میرے ہاتھ سے, کبھی کچن میں تو خیر آتی ہی آتی چیزوں کی, تو میں لگی رہتی ہوں کچھ نہ کچھ کرنے. اور جو کوئی رشتے دار بھی آ جائے نا ملنے, کہتے ہیں اس کے گھر اس کو ملنے آ جائے نا, تو اس کے پیچھے پیچھے کرنا پڑتا ہے.
0: اوکے, ہر ٹائم بس چل رہی ہوتی ہے.
3: ہاں دیکھیں, پتہ ہے میں سوچتی ہوں جب میں بیٹھ جاتی ہوں نا, تو مجھے لگتا ہے میں سست ہو گئی ہوں. اب میں بیٹھ گئی ہوں نا,
0: بس اب تو اللہ ہی اٹھائے.
3: کام کرنے والا کھڑے رہنا ہے اور مختلف کاموں میں نے کھڑے رہنا ہے, تو میں چلتی رہتی ہوں. پھر میں نے تھوڑا اپنا شیڈول چینج کر لیا ہوا 1 ماہ سے, کیونکہ تھوڑا میں جم چھوڑ دیا, تو میں مطلب خود واک کرتی ہوں, تو میں کم از کم 3-4 کلومیٹر دن میں نا واک کر لیتی ہوں, اور
0: آپ دیکھیں نا, ڈفرنٹ بات ہے کہ انیلا چلتی بہت ہے. السلام علیکم.
4: جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی آپ؟
0: جی جی اللہ کا شکر. نام بتائیں, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
4: محمد شہزاد شاد باغ سے بات کر رہا ہوں, لاہور سے.
0: جی شہزاد بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟
4: ہاں جی, یہ دیکھیں جی, میں تو کبھی زندگی میں کشتی نہیں کی ہے, لیکن یہ مجھے لوگ جو ہے نا وہ بولتے پہلوان, لسی پہلوان بولتے.
0: لسی پہلوان؟
4: جی
0: نہیں, وہ لسی پہلوان کیوں بولتے ہیں؟
4: ہاں جو میں ایک دن لسی بہت بانٹی تھی نا گرمیوں کے دن تھے پچھلے سال.
0: اچھا,
4: بلکہ پرانی بات ہے, تو وہ میں لسی بانٹ رہا تھا, کچی لسی نہیں ہوتی جو نمک والی, تو میں وہ بانٹ رہا تھا, تو اس نے ہمارا نام ہی ڈال دیا جی لسی پہلوان.
0: اچھا,
4: تو یہ بھی نام پڑ گیا ہمارا جی, یہ بھی کہتے ہیں.
0: نہیں پہلوان دکھتے بھی ہیں یا صرف نام انہوں نے ڈال دیا؟
4: ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جسم کا ٹھیک ہونا, کھلے کپڑے پہنتا ہوں نا لوز, تو اس لیے وہ مجھے پہلوان کہتے ہیں. تو ویسے میں نے زندگی میں کبھی کشتی نہیں ڈائی, وہ نام ہی پڑ گیا, سارے لسی پہلوان کہتے ہیں. تو یہ بات ہے جی, ہم کو تو یہ کہتے ہیں.
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے.
4: ہاں جی ویسے میں مشہور ہو گیا ہوں, سب یہی کہتے ہیں.
0: چلے کسی وجہ سے مشہور تو ہوئے نا,
4: پر مہربانی آپ کی, اللہ خوش رکھے آپ کو, بہت بہت دعائیں آپ کے لیے.
0: تھینک یو تھینک یو, اللہ حافظ.
4: اللہ حافظ, بہت ہی بہت ہی مبارک.
0: اور جی آپ کی کالز ہمارے پاس آ رہی ہیں, اور میرے بھی ایک دوست ہیں, وہ بھی اسی طرح, وہ مطلب لڑائی شڑائی نہیں کرتے, کھانے پہ ضرور کر دیتے ہیں, تو لیکن ہم بھی ان کو پہلوان ہی کہتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی, السلام علیکم. چلے بہت شکریہ آپ نے کال کیا, اور کچھ کال جو ہیں سم ٹائمز ڈراپ ہو جاتی ہیں اور آپ کی آواز جو ہے ہم تک نہیں پہنچتی ہے. اوکے جی, آپ ساتھ ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہو ایس ایم ایس میسج پر. سبا عمر باسی ماسک کراچی سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, آپ نے کہا میری ہائٹ بہت زیادہ ہے, تو ہر جگہ سب لوگ یہی بولتے ہیں کہ اتنی لمبی کیوں ہو, تو یہ تو نیچرل سی بات ہے نا, اگر کسی کی ہائٹ لمبی ہے تو اس میں کیا کر سکتے ہیں. لیکن ہاں جو دیکھو جن کی ہائٹ لمبی ہوتی ہے تو وہ اسپیسیفک نظر آتے ہیں لوگوں میں, اور ویسے ہائٹ بڑے ہونے کے بھی بڑے بینیفٹس ہیں, وہ آپ کو بتاؤں گے. एनीवेज अभी मुझे एक प्रोग्राम में ट्रैक प्ले करना है और नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है याया फरीद की आवाज में ट्रैक अपनी धुन में. सो एंजॉय कीजिएगा. मेरा नाम हुसैन रज़ा, आपको मेरा साथ रहेगा ठीक रात के 2 बजे तक.

ओके तो लिसनर्स आप वेलकम बैक एट एफएम मोरमा इंटरनेशनल। मेरा नाम हुसैन है। आपसे मैंने पूछा ये है कि मुझे बताओ कि आपके इर्द गिर्द के लोग या आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं आपको सबसे ज्यादा क्या बात कहते हैं आपके बारे में। सो आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हो 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लिखकर 4477 www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान और लाइव कॉल्स आपकी हमारे पास आ रही हैं 051111 0519202540 पर।

और जी अभी टाइम हो गया है आपसे इजाजत लेने का, और आज के प्रोग्राम में आपसे पूछा था, मुझे बताएं कि आपके इर्द गिर्द के लोग या आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं आपके बारे में सबसे ज्यादा क्या बात कहते हैं, तो अपना फीडबैक आप मुझे दे रहे थे जो आप सोचते हो, और ये कि आपका मेरा साथ रहते सिर्फ मंडे मिडनाइट रात को 12 से लेकर 2 बजे तक FM मोरवा इंटरनेशनल में, इसके अलावा आपका मेरा कोई शो नहीं होता है। सोशल मीडिया पे आप मुझे सर्च कर सकते हो मेरा नाम लिखे HASNAIN space RAZ हसनैन रज़ा, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो स्नैपचैट हो, एनीवेयर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और कोई बात करनी हो तो इनबॉक्स कर सकते हो। एनीवेयर ये भी लास्ट ट्रैक प्रोग्राम में प्ले करने जा रहा हूँ, लास्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है उमर नदीम की आवाज में। So of the day, sir, khyal rakhiyega, dua mein yaad rakhiyega. Hasan Rezai is signing off now. Take care. Allah Hafiz.